सुप्रभात। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संबत 1948 के वैशाख मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 8 मई 2026। सुबह के 5:57 हुए हैं और हमारी आज की पहली सभा के प्रसारण मीडियम वेव और FM पर एक साथ आरंभ हो रहे हैं।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

नित नित तेरे दर्शन पाऊं, पलकन अपने द्वारा झराऊं। दे दो मुझे भी कारज कोई, दास बना अब रख लो मोही। बूंद बूंद में प्रेम की चुनकर, अखियन गागर भरकर लाऊं। चरण परें जहां मनमोहन के, धो धो पल पल शीश नवाऊं।

वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाती है, उसकी रहमत हो तो तकदीर बदल जाती है। बदल जाते हैं हालात, जज्बात और इंसान ही हाँ, उसके सदके से जिंदगी ये बदल जाती है। ना हो उसकी रजा तो एक कण भी ना बदलने पाए, हो रजा उसकी तो पूरी कायनात बदल जाती है।

श्री गुरु नानक के अनुसार धन को कभी भी अपने हृदय में जगह ना दें। जब धन को हृदय में जगह दी जाती है तो जीवन से सुख शांति खत्म हो जाती है। मन में लालच और स्वार्थ जैसी बुराइयां घर कर लेती हैं।

अश्रुधार भरी आंखों से किस विधि दर्शन पाऊं माँ, मन मेरे संताप भरा है, मैं कैसे मुस्काऊं माँ। कदम कदम पर भरे हैं कांटे, ऊंची नीची खाई है, दुखों की बेड़ी पड़ी पाऊं मैं, किस विधि चलकर आऊं माँ। अश्रुधार भरी आंखों से किस विधि दर्शन पाऊं माँ।

0: अनूप जलूटा, सुखविंदर सिंह, मोहम्मद अहमद वसाथी और गोपाल सिंह रागी। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है गांधी चर्चा।
1: गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा में पहले सुनिए बापू के विचार।
1: बचपन से ही बापू की आत्मा अस्पृश्यता के खिलाफ विद्रोह कर रही थी। ऊका नाम का एक लड़का उनके घर में सफाई करने के लिए आता था। बालक मोहन को सख्त हिदायत थी कि वो ऊका को न छुए और अगर संयोग से छू भी जाए तो तुरंत स्नान करें। मोहन बहुत ही स्नेही, कर्तव्य परायण और आज्ञाकारी बालक था। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता था जिससे उसके माता पिता की अवज्ञा होती हो, लेकिन ऊका के विषय में वो अपने माता पिता से और खासकर अपनी मां से सहमत नहीं हो सका। इस घटना के बारे में बापू ने लिखा है, मैंने अपनी मां से यह कहा कि जो आप ये समझती हैं कि ऊका को छूना पाप है तो यह गलत है। अगर ईश्वर जल थल और सकल ब्रह्मांड में है तो वो ऊका में भी अवश्य होगा। पंचम या अछूत कहे जाने वालों के संबंध में बापू के साथ अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। 1915 में दक्षिण के ट्रेके बार नामक स्थान से बापू एक हरिजन बालक को ले आए। उस समय अहमदाबाद से कुछ दूर कोचरब नामक एक गांव में बापू का आश्रम था। बापू इस बालक को अपने आश्रम में ले आए। वो बालक गंदगी की एक जीती जागती तस्वीर था। बापू ने उसके सिर के बालों को मुंडवा दिया। उसके बाद उसे अच्छी तरह नहलाया गया और उसका शरीर रगड़कर अच्छी तरह से साफ किया गया। उसके नाखून जिनमें मैल भरा हुआ था काटे गए। धूल भरे उसके पांवों को धोया और साफ किया गया। उसे एक सादी धोती, बंडी और टोपी पहनने को दी गई। कुछ ही मिनटों में वो बालक इस कदर बदल गया कि वो एक संस्कृत और सभ्यांत परिवार का बच्चा लगने लगा। इस तरह की एक आध घटना प्राय रोज ही घटती थी। आश्रम में जिसको ले जाया जाता था उसे कम से कम 3 महीनों तक लगातार स्वच्छता की शिक्षा दी जाती थी। एक जगह बापू को एक लड़का मिला जिसे हल्का हल्का बुखार आ रहा था। बापू ने उस लड़के को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने कमरे में ले आए। उन्होंने अपने हाथों से उसे नहलाया, खाना खिलाया और जब तक वो अच्छा नहीं हो गया तब तक उसकी तीमारदारी की गई। अस्पृश्यता को लेकर बापू को अपने आश्रम में कभी कभी भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक बार एक परिवार, दूधा भाई, उसकी पत्नी दानीबेन और उनकी छोटी बच्ची लक्ष्मी आश्रम में आए। दूधा भाई एक शिक्षक थे। वे बड़ी खुशी के साथ आश्रम के नियमों का पालन करने को तैयार हो गए। बापू ने उन्हें आश्रम में रहने की इजाजत दे दी। जो लोग आश्रम का खर्च चलाने में मदद कर रहे थे उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने आश्रम को सहायता देना बंद कर दिया और इसके साथ ही यह चर्चा भी जोर से चल पड़ी कि आश्रम का बहिष्कार कर दिया जाएगा। लेकिन बापू इससे विचलित नहीं हुए। वे और उनके साथी इस स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। बापू ने कहा, यदि वे ऐसा करते हैं तो भी हम अहमदाबाद नहीं छोड़ेंगे। ऐसी स्थिति में हम आश्रम को छोड़ बस्ती में जाकर रहेंगे और अपने हाथों से काम करके जो कमाएंगे उससे अपना गुजर बसर करेंगे। स्थिति जल्दी ही चिंताजनक उठी। मगनलाल गांधी बापू के पास आए और बोले, बापू अगले महीने के लिए हमारे पास खर्च का पैसा नहीं है। बापू ने शांत और सहज ढंग से उत्तर दिया, ऐसी हालत में भी हम बस्ती में चले चलेंगे। इसी समय एक धनी व्यक्ति बापू के पास आया और उसने एक मोटी रकम बापू के चरणों पर रख दी और इस तरह यह संकट टल गया। बापू का विश्वास और दृढ़ हो गया।

0: इस बीच बापू ने लक्ष्मी को अपनी पुत्री बना लिया और उसे अपनी बेटी की तरह ही पाला पोसा। वे इस बात को कभी सहन नहीं कर सकते थे कि किसी व्यक्ति का किसी नीची जाति में पैदा होने के कारण अपमान या तिरस्कार किया जाए।
1: ये थे बापू के विचार और अब हम आपको सुनवाते हैं बापू का प्रिय भजन।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। आज इस कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर विनय वर्मा से एक जानकारी। विषय है कॉस्मेटिक उत्पादों का शरीर पर प्रभाव।
3: स्वास्थ्य संदेश के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, कॉस्मेटिक पदार्थों का प्रचलन बढ़ रहा है। अनेक प्रकार के ये उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं। इन उत्पादों की अपनी एक प्रकृति होती है। कुछ अधिक अम्लीय होते हैं तो कुछ अधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इनकी प्रकृति का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। कुछ कॉस्मेटिक्स या अन्य प्रोडक्ट्स पर अक्सर आपने पीएच बैलेंस के बारे में लिखा देखा होगा, पर क्या कभी उसके बारे में जानने की कोशिश

0: इसकी कि आखिर पीएच का मतलब क्या है, इसमें क्या खास बात है जो शरीर के लिए जरूरी है। पीएच का पूरा मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। हाइड्रोजन के अणु किसी भी घोल या उत्पाद में उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को तय करते हैं। आपके शरीर के किस अंग का पीएच स्तर कितना है, यह आपके आहार, व्यायाम और दवाओं के स्तर पर निर्भर करता है। हम पीएच को इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि अगर घोल में पीएच 1 या 2 है तो वो अम्लीय है, और अगर पीएच 13 या 14 है तो वो क्षारीय है। अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल है। पानी का पीएच 7 होता है, यानी पानी में अम्ल और क्षार दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। क्या है जरूरत? बॉडी में पीएच स्तर यदि असामान्य हो जाए तो इसका असर आपकी सेहत पर पड़ता है। शरीर के अंगों और एंजाइम्स को सही प्रकार से काम करने के लिए पीएच स्तर सही होना बहुत जरूरी होता है। इसके स्तर में कमी या अधिकता एंजाइम्स और मेटाबॉलिक प्रोसेस को नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, दिल की बीमारियां और अर्थराइटिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वहीं अगर इसका स्तर जरूरत से ज़्यादा हो तो व्यक्ति को थकान, मांसपेशियों में जकड़न और ऊर्जा के स्तर में गिरावट जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि एक्सरसाइज, आहार और दवाओं आदि से बॉडी में पीएच का स्तर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हमारा शरीर उसकी भरपाई कर लेता है। प्रोडक्ट में कितना पीएच होता है इसके बारे में जानकारी जरूरी है। डिओडोरेंट, पसीने से बदबू का कारण बैक्टीरिया की सड़न होती है। त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार अगर पसीने में सीबम यानी पसीने की ग्रंथियों का तैलीय स्राव का मिश्रण हो जाता है तो ये त्वचा पर एक परत बना लेता है। डॉक्टरों के अनुसार इस परत को एसिड मेटल कहते हैं, क्योंकि इसका पीएच 5 से नीचे होता है जो कि हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है। ऐसे में अगर साबुन या दूसरे उत्पादों से त्वचा को धो लिया जाए तो ये एसिड मेटल को त्वचा से निकाल देता है, जिससे त्वचा में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए डिओडोरेंट ऐसा खरीदना चाहिए जिसमें पीएच बहुत कम हो, जो त्वचा को प्राकृतिक रूप से सहज कर रखे। पानी या साबुन में पीएच 8 से 11 के बीच होता है। ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इससे चेहरा साफ करते हैं तो ये चेहरे की सारी नमी खींच लेता है। कई बार इसकी वजह से त्वचा में सूखापन, खुजली और मुहासे की समस्या होती है। इसलिए पीएच संतुलित फेस वॉश इस्तेमाल करने से चेहरे का एसिडिक मेटल बरकरार रहता है और त्वचा को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। अब हम बात करते हैं शैम्पू की। सिर की त्वचा का भी पीएच 5 से कम होता है। जब बालों को पानी या फिर किसी भी क्षारीय उत्पाद से साफ करते हैं तो इसकी वजह से बालों का नाजुक भाग, जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्षारीय उत्पाद बालों के प्राकृतिक तेल को भी नष्ट कर देते हैं, जो क्यूटिकल को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसलिए पीएच संतुलित शैम्पू ही इस्तेमाल करें। बालों को धोने के लिए सेब का सिरका भी फायदेमंद होता है। टूथपेस्ट, दांतों को स्वस्थ रखने में पीएच महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर दांतों का इनेमल टूट जाए तो उसका बनना भी पीएच पर निर्भर करता है। अगर पीएच 6 हो जाए तो कोई बदलाव नहीं होता। विशेषज्ञों के अनुसार हल्के अम्लीय टूथपेस्ट के इस्तेमाल से दांतों का स्वास्थ्य सही रहता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह पर दांतों को सही रखने वाले संतुलित पीएच वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। स्वतः इस प्रकार यदि इन बातों का हम ध्यान रखें और बाजार से कॉस्मेटिक पदार्थों को जब खरीदें तो उसके पीएच मान को ध्यान में रख करके ही खरीदें, तो फिर हम अपने शरीर को किसी भी प्रकार से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। आज की जानकारी में बस यहीं तक। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कॉस्मेटिक उत्पादों का शरीर पर प्रभाव विषय पर डॉक्टर विनय वर्मा से एक जानकारी। इसके साथ ही स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं। श्रोताओं, आइए अब हम आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में बता दें। आज 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम राग रंग, जिसमें आज आप सुनेंगे अवधेश कुमार गोस्वामी से बड़ा ख्याल और छोटे ख्याल में गायन।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे नात और कव्वाली, फनकार होंगे हसन नियाजी और साथी। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के 90 वर्ष पर विशेष रूपक आप सुन सकेंगे, ये आकाशवाणी है। आलेख डॉक्टर राहुल अवस्थी का रहेगा और प्रस्तुति असीम सक्सेना की होगी। समय याद रखिए, आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पर विशेष रूपक, ये आकाशवाणी है। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। शाम 7:31 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे रीता शर्मा के गाए कुछ भजन। शाम 7 बजे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे जीएन गोस्वामी का राग छाया में बांसुरी वादन, तबले पर इनका साथ देंगे मुन्ने खां। कृषिगत कार्यक्रम होगा रोजाने की तरह शाम 6:20 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे मिट्टी की जांच क्यों और कैसे विषय पर चर्चा। साथ ही कृषि संकट समाधान में किसानों की समस्याओं से जुड़े सवालों पर समाधान किया जाएगा। इसके अलावा कृषि संकेत के अंतर्गत आप सुनेंगे वर्मी कंपोस्ट खाद के लाभ विषय पर जानकारी। चित्रपट संगीत होगा शाम 6:10 पर। शाम 5:15 पर युवावाणी कार्यक्रम में आज के आकर्षण रहेंगे आज का सवाल कुछ खास है आज, फेसबुक लाइव आज की बात युवाओं के साथ। और हमारी दूसरी सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम।

0: खार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनहरा दौर, जिसमें आज आप सुनेंगे 2000 के दशक के सदाबहार फिल्मी गीत। दोपहर 1:30 पर कार्यक्रम होगा कुमकुम, जिसमें रीना मौर्य की वार्ता का विषय रहेगा सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और बच्चे। दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे नात और कव्वाली, फनकार होंगे मोहम्मद अहमद और साथी। दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे फरमाइशी ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम। मनभावन कार्यक्रम में 11:30 पर आप सुनेंगे एक ही शीर्षक याद से संबंधित कुछ फिल्मी गीत। और आपसे कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम अमृत कलश। सवेरे 7:31 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। आज सुनिए प्रसंग संख्या 291।
2: एपिसोड नंबर 291, 291।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 होने को है। कुछ ही देर में संस्कृत में समाचार होंगे।
1: कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना भारत सरकार की एक योजना है। इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देना है। यह योजना किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने, कृषि उपज की बर्बादी को कम करने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में मदद करती है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की जानकारी से पहले भारत में खाद्य प्रसंस्करण की स्थिति और संभावनाओं के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। खाद्य प्रसंस्करण प्राथमिक खाद्य वस्तुओं से विनिर्मित खाद्य वस्तुओं को बनाने की प्रक्रिया खाद्य प्रसंस्करण कहलाती है। खाद्य प्रसंस्करण से जहां एक ओर खाद्य प्रसंस्करण की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी तरफ ये लंबे समय तक खाने योग्य बने रहते हैं। आटे से ब्रेड बनाना, दूध से बटर या पनीर बनाना, फलों से जैम या मुरब्बे अचार बनाना, ये सब खाद्य प्रसंस्करण के ही उदाहरण हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण के कई क्षेत्र हैं, जैसे डेयरी क्षेत्र, अनाज प्रसंस्करण, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, मांस मछली एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण इत्यादि। खाद्य प्रसंस्करण भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर रहा है।
1: और भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लागू की है, जिसके कारण उन व्यवस्थाओं को निर्माण किया जाएगा जो बीज से बाजार तक किसान को हैंड होल्डिंग करेंगे, व्यवस्थाएं विकसित करेंगे और हमारे करोड़ों किसानों की जिंदगी में एक नया बदलाव लाने में हम सफल होंगे।
0: विश्व में भारत फल सब्जियों तथा खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर है। दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। जलवायु की विभिन्नता के कारण यहाँ कृषि तथा बागवानी की बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। लंबी समुद्री तटरेखा होने के कारण मछलियाँ भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती हैं। इसी कारण से भारत में खाद्य प्रसंस्करण के लिए कच्चे माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे कारक भी हैं जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की मांग को बढ़ा रहे हैं। मसलन भारत में तेजी से बढ़ती युवा जनसंख्या, नए किस्म के खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल में झिझक महसूस नहीं करती। इससे नए किस्म के खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती है, साथ ही भारत में एकाकी परिवार की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। एकाकी परिवार में ज्यादातर वर्किंग कपल हैं, जिनके पास खाना बनाने का वक्त नहीं है। इसके कारण बाजार में रेडी टू कुक डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में शहरों से बढ़ता पलायन और इन लोगों की बढ़ती आय से भी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी है। स्पष्ट है कि खाद्य प्रसंस्करण के लिए

0: कच्चे माल और उत्पादों की मांग दोनों ही दृष्टिकोण से भारत में परिस्थितियां अनुकूल हैं। इन अनुकूल परिस्थितियों के होते हुए भी भारत में खाद्य प्रसंस्करण का स्तर अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। भारत में लगभग 40% फसल प्रतिवर्ष नष्ट हो जाती है। यहाँ कुल खाद्य पदार्थों का केवल 10% हिस्सा ही प्रसंस्कृत किया जाता है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण कमजोर सप्लाई चेन का होना भी है। भारत में कोल्ड स्टोरेज की कमी, गोदामों की खराब स्थिति और कच्चे माल की आपूर्ति में अनिश्चितता सप्लाई चेन को कमजोर बना देती है। इस क्षेत्र में निवेश की कमी भी एक समस्या है, जिसके कारण भारत में ज्यादातर प्रसंस्करण इकाइयां छोटी हैं। ये इकाइयां बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर पाने के कारण इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा नहीं उठा पाती। इससे इनका लागत मूल्य बढ़ जाता है और इनके उत्पादों की कीमत बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में अधिक हो जाती है। इसके कारण भारतीय खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पिछड़कर रह जाती हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों की जांच के लिए फूड टेस्टिंग फैसिलिटी की संख्या बेहद कम है। इन सभी चुनौतियों का सामना करने और भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की समस्याओं को साकारित करने हेतु सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना।
1: पिछले 3-4 वर्षों में देश में 700 से ज्यादा एग्री स्टार्टअप तैयार हुए हैं। साथियों, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर बीते 7 सालों में काफी काम हुआ है। केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि प्रोसेस फूड का दायरा बढ़े, हमारी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो। इसके लिए किसान संपदा योजना के साथ ही PLI स्कीम महत्वपूर्ण है। इसमें वैल्यू चेन की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए 1,00,000 करोड़ रुपए का विशेष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही भारत ने UAE गल्फ कंट्रीज के साथ, अबू धाबी के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इसमें फूड प्रोसेसिंग में सहयोग बढ़ाने के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। साथियों, एग्री रेसिड्यू, जिसे पराली भी कहते हैं, उसका मैनेजमेंट किया जाना भी उतना ही जरूरी है।
0: केंद्रीय क्षेत्र योजना को कैबिनेट द्वारा मई 2017 में 14वें वित्त आयोग के चक्र के साथ 2016-20 तक की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। अब इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया है, जिसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। PM किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है, जिसका उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। यह न केवल देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि किसानों को बेहतर रिटर्न प्रदान करने में भी मदद करेगा और किसानों की आय को दोगुना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर पैदा करने, कृषि उपज की बर्बादी को कम करने, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। किसान संपदा योजना के कई उद्देश्य हैं: खाद्य प्रसंस्करण, मेगा फूड पार्कों की स्थापना, समूहों यानी क्लस्टरों और व्यक्तिगत इकाइयों के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, साथ ही प्रभावी संपर्क बनाना किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और बाजारों को जोड़ना भी है। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना का निर्माण करना। कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं इस प्रकार हैं: PM किसान संपदा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं चलाई जाएंगी, जिनमें मेगा फूड पार्क, डेयरी, मत्स्य

0: पालन आदि सहित कृषि उपज का मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करना है। प्रत्येक क्लस्टर के लिए एक स्थायी कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना, साथ ही नवीनतम प्रौद्योगिकी को शामिल करने में सुविधा प्रदान करना, प्लग एंड प्ले सुविधा प्रदान करके लघु एवं सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग उद्यमों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ मिलाकर काम करने हेतु एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना, खेत से लेकर उपभोक्ताओं तक बिना किसी रुकावट के एकीकृत शीत श्रृंखला संरक्षण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना में वित्तीय सहायता प्रदान करके बागवानी और गैर बागवानी उत्पादों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोकना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि आप इस योजना के तहत आने वाले कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर यानी कि समूह विकास योजनाओं के लिए पात्र हैं।
1: साथियों, स्वयंपूर्ण गोवा की एक बड़ी ताकत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होने वाली है। विशेष रूप से फिश प्रोसेसिंग में गोवा भारत की ताकत बन सकता है। भारत लंबे समय से रॉ फिश को एक्सपोर्ट करता रहा है। भारत की फिश पूर्वी एशियाई देशों से प्रोसेस होकर दुनिया के बाजारों तक पहुंचती है। इस स्थिति को बदलने के लिए फिशरीज सेक्टर को पहली बार बहुत बड़े स्तर पर मदद दी जा रही है। मछली के व्यापार कारोबार के लिए अलग मंत्रालय से लेकर मछुआरों की नावों के आधुनिकीकरण तक हर स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी गोवा में हमारे मछुआरों को बहुत मदद मिल रही है।
0: इसके बाद आपको MOFPI के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि पात्रता की बात करें तो इस योजना का लाभ उन किसानों, समूहों या कंपनियों को मिलेगा जो मछली, फल, सब्जियां और अन्य कृषि समुद्री उत्पादनों का प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग करते हैं। साथ ही ये योजना उन कृषि आधारित उद्योगों को सहायता प्रदान करती है जो क्लस्टर में यानी समूहों में काम करते हैं, जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग और वितरण। इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। ये सुनिश्चित करें कि आप योजना के तहत आने वाली किसी भी उपयोजनाओं के लिए पात्र हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की यदि बात करें तो पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण और आधुनिक स्वामित्व और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र और दस्तावेजों को जमा करने के बाद आपको एक पावती संख्या एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। आवेदन की जांच करने के लिए आप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं। योजना के लाभ की बात करें तो यह योजना खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधाओं के विकास में मदद करती है। इस योजना के तहत किसानों और प्रसंस्करणकर्ताओं को विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। साथ ही यह योजना बेहतर रिटर्न प्रदान करने में मदद करती है, क्योंकि यह प्रसंस्करण और विपणन यानी मार्केटिंग में सुधार करती है। साथ ही इस योजना से देश में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इस योजना की और अधिक जानकारी के लिए आप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट या विकासपीडिया पर जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, अभी आप इस विषय पर ये विशेष प्रस्तुति सुन रहे थे। इसके साथ ही अमृत कलश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप इस समय सुन रहे हैं हमारी आज की पहली सभा के प्रसारण।

0: खार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, अब से कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 7:31 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। साथ ही इसमें आज आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 साल पर एक विशेष प्रस्तुति। सुनवाएंगे हम एक महानुभाव के विचार आकाशवाणी के बारे में। सवेरे 10:10 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। सवेरे 10:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पर विशेष रूपक ये आकाशवाणी है। आलेख डॉक्टर राहुल अवस्थी का होगा और प्रस्तुति असीम सक्सेना की होगी। समय याद रखिए, आज रात 9:30 पर आकाशवाणी के 90 वर्ष पर विशेष रूपक ये आकाशवाणी है, सुनना ना भूलिए। आज सवेरे 8:45 पर आप सुनेंगे 102.9 मॉर्निंग हिट्स कार्यक्रम। इसके अलावा दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे फरमाइशी ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम। नात्र कव्वाली आप सुन सकेंगे 1:15 पर, जिसमें आज के फनकार होंगे मोहम्मद अहमद और साथी। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा सुनहरा दौर, जिसमें आज आप सुनेंगे 2000 के दशक के सदाबहार फिल्मी गीत। कुमकुम कार्यक्रम में 1:30 पर आज आप सुनेंगे रीना मोरे की वार्ता, विषय रहेगा सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और बच्चे। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:19 होने को हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा।

0: लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया जनगणना 2027 का शुभारंभ। प्रदेश भर में शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया, पहले दिन 1 लाख से अधिक लोगों ने की स्वगणना। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की 325 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, बागवानी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए गठित होगा कार्यबल। और रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने लगा रेल मंत्रालय, अगस्त माह में होगी प्रक्रिया की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में जनगणना 2027 का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रदेश भर में स्वगणना की भी शुरुआत हो गई। कल शाम 6 बजे तक प्रदेश में 1 लाख से अधिक लोगों ने स्वगणना कर ली थी। जनगणना के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल जनसंख्या की गणना भर नहीं है, बल्कि समग्र समावेशी और सुनियोजित विकास का सशक्त आधार है।
2: प्रदेश में 21 मई तक होने वाली स्वगणना के माध्यम से नागरिक स्वयं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके उपरांत फील्ड कार्य के अंतर्गत जनगणना कार्मिक घर घर जाकर सूचीकरण का कार्य करेंगे। जनगणना के पहले चरण में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। इस बार जनगणना में जाति गणना को भी सम्मिलित किया गया है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन में डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अपील की कि प्रदेशवासी जनगणना अधिकारियों द्वारा मांगी जाने वाली समस्त जानकारी पूर्ण, सही एवं तथ्यात्मक रूप से उपलब्ध कराएं।
3: जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियाँ, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्थानों के वितरण और शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा तय करने में मदद करेगी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की लागत वाली 325 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर व तकदीर दोनों बदली है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचा है।
4: प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के समग्र विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है और बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बांटा है। वंचित को वरीयता मिली है, पिछड़ों को प्राथमिकता मिली है, हर वंचित के घर तक उसकी योजना पहुंचाने का कार्य किया है और उसका परिणाम आज हमारे सामने है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयुष विभाग, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए चयनित 481 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जवाबदेही, तकनीक और पारदर्शिता के कारण यूपी देश में सबसे अधिक नियुक्तियां देने वाला राज्य बन चुका है।
5: पिछले 9 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने लगातार नियुक्ति पत्र वितरण के नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो पाएगी। प्रदेश में हम लोगों ने जो प्रक्रिया बनाई अलग अलग आयोग बोर्ड को जवाबदेही के साथ तकनीक का उपयोग करते हुए किसी भी प्रकार के

0: सीधी उस नौजवान के साथ जो योग्य है उसके साथ अन्याय न होने पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जब बाध्य किया, परिणाम है 9 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाए हैं।
1: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून को पहली फ्लाइट बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगी। यह फ्लाइट लखनऊ से नोएडा एयरपोर्ट होकर बेंगलुरु जाएगी। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के CEO राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए टिकट की बुकिंग कल दोपहर बाद से शुरू हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्यात बढ़ाने के लिए बागवानी क्षेत्र के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ काम करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाना आवश्यक है।
2: किसानों ने मांग की कि सेल्फ लाइफ बढ़े तो हम बेच पाएंगे, नहीं तो हमारा खराब ही हो जाता है। तो एक, हम सेल्फ लाइफ बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कई फलों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है और उस पर और काम चल रहा है, तो हम सेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे। विदेशों में रिजेक्शन ना हो इसलिए क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम, क्वालिटी इम्प्रूव का एक उदाहरण यही मिलेगा आपको बागवानी संस्थान में, जहां फलों की बैगिंग की गई है।
1: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत सरकार स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित कर रही है। उन्होंने बताया कि उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे 9 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक केंद्र उत्तर प्रदेश में भी खोला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में कल समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
3: भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने के मान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में यमुना नदी में नाव पलटने की घटना में कल 5 शव बरामद हुए। यह हादसा 6 मई की रात में उस समय हुआ जब एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए नाविक सहित 10 लोग नाव पलटने के कारण नदी में गिर गए थे। हादसे के शिकार 4 लोग सुरक्षित बच गए, जबकि अंतिम समाचार मिलने तक एक की तलाश जारी थी। IPL क्रिकेट में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल हुए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB की टीम को 9 रनों से हरा दिया। लखनऊ की टीम ने बारिश के कारण बाधित मैच में 19 ओवर में 3 विकेट पर 209 रन बनाए, लेकिन डकवर्थ लुइस नियम के तहत RCB को 19 ओवर में 213 रन का लक्ष्य मिला। RCB की टीम 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर कल बारिश के साथ ओले भी पड़े। कई जिलों में आज भी सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया जनगणना 2027 का शुभारंभ। देश भर में शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया, पहले दिन 1 लाख से अधिक लोगों ने की स्वगणना। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की 325 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित, कहा, बागवानी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए गठित होगा कार्यबल। और रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलेगा रेल मंत्रालय, अगस्त माह में होगी प्रक्रिया की शुरुआत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 7:31 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का इंफरटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे।

सुबह सवेरे कार्यक्रम में आप सभी को अखिलेश सक्सेना का नमस्कार। श्रोताओं, सुबह सवेरे कार्यक्रम ये वो कार्यक्रम है जो आपको जानकारी देता है, मनोरंजन भी कराता है और रोजाना इस समय हमारे साथियों से आपको रूबरू भी कराता है। हर दिन कोई ना कोई साथी अपने स्क्रिप्ट के साथ, अपनी जानकारियों के साथ, जो आपको उपयोगी लगती हैं उसके साथ हाजिर होता है, साथ में आपके मनपसंद गीत भी लेकर, और जानकारी देते हैं हम लोग उस खास दिन के बारे में जो उस दिन विशेष रूप से होता है। आज 8 मई है, आज भी विशेष रूप से एक दिन है जे जो दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन दो दिवस मनाए जाते हैं, एक है विश्व थैलेसीमिया दिवस और एक है विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विश्व थैलेसीमिया दिवस के बारे में। ये तो हमारा आप जानते हैं कि बच्चे बड़े कोमल होते हैं और ये जो थैलेसीमिया रोग है ये बच्चों में अधिकतर होता है। ये रोग के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं और ये बीमारी जो होती है वो अनुवांशिक होती है, रिश्तेदारी के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। बीमारी का जन्म शिशु के साथ होता है जो उम्र भर साथ नहीं छोड़ती। इसका सिर्फ एक समाधान है, रिश्तों में सावधानी। ये बीमारी कुछ विशेष लोगों में होती है और उन समुदायों के रिवाज ही इस बीमारी को रोक सकते हैं। इस बीमारी से ग्रस्त शरीर में लाल रक्त कण बनने बंद हो जाते हैं, इससे शरीर में रक्त की कमी आ जाती है, बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, रंग पीला पड़ जाता है। इस रोग से बच्चों में जिगर, तिल्ली और हृदय की साइज बढ़ने, शरीर में चमड़ी का रंग काला पड़ने जैसी विकट स्थितियां पैदा होती हैं। इस रोग को लेकर महिला के प्रसव से पूर्व ध्यान रखने की जरूरत होती है। एक शोध के मुताबिक भारत में प्रतिवर्ष लगभग 8 से 10 थैलेसीमिया रोगी जन्म लेते हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 2.5 लाख बच्चे थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त हैं। बच्चों में 6 माह 18 माह के भीतर थैलेसीमिया का लक्षण प्रकट होने लगता है। बच्चा पीला पड़ जाता है, पूरी नींद नहीं लेता, खाना पीना अच्छा नहीं लगता, बच्चे को उल्टियां, दस्त और बुखार से पीड़ित वो हो जाता है। अनुवांशिक मार्गदर्शन और थैलेसीमिया माइनर का दवाइयों से उपचार संभव है। इस रोग से बचने के लिए माता पिता का DNA परीक्षण कराना अनिवार्य होता है, साथ ही रिश्तेदारों का भी DNA परीक्षण करवाकर रोग पर प्रभावी नियंत्रण हो सकता है। विवाह से पूर्व जन्मपत्र मिलाने के साथ साथ दूल्हे और दुल्हन का HbA2 का टेस्ट भी कराना चाहिए। रोगी को बार बार खून चढ़ाने से शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए रोगी को हरे पत्तेदार सब्जी, गुड़, मांस, अनार, तरबूज, चीकू कम देना होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट से इसका इलाज संभव है। इलाज की ये जो प्रोसेस है बहुत काफी महंगी है, लेकिन अब साइंटिस्ट एक नई तकनीक पर प्रयोग कर रहे हैं जिसका नाम है स्टेम सेल थेरेपी। तो श्रोताओं, ये चीज जो है अगर शुरू से ही बच्चे के होने से पहले लापरवाही ना हो और सावधानी रखी जाए तो इस थैलेसीमिया रोग से बचा जा सकता है। ये बहुत ही गंभीर रोग है। बच्चे का ध्यान रखिए और उसको संतुलित आहार डाइट जरूर दीजिएगा, उसके खान पान पर, उसके स्वास्थ्य पर, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए। और जब भी कोई रोग होता है तो जाहिर सी बात है अगर लापरवाही हो जाए तो सीरियस हो जाता है और उसके लिए फिर हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट लेना पड़ता है। और ऐसे में बहुत से लोग, संस्थाएं भी ऐसी होती हैं जो बीमारों की देखभाल के लिए आगे आती हैं। भारत में भी बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं, NGOs ऐसे हैं जो बीमारों लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो एक संस्थाएं होती हैं वो भी समय समय पर रोगों की देखभाल के लिए, रोगियों की देखभाल के लिए आगे आती हैं। आज 8 मई है और आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है और ये दिन उस महान व्यक्ति हेनरी ड्यूनॉन्ट की याद में मनाया जाता है जिन्होंने रेड क्रॉस आंदोलन की स्थापना की थी। 8 मई को उनके जन्मदिन के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है मानवता की सेवा करना, युद्ध और आपदा के समय घायल और जरूरतमंद लोगों की मदद करना और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में योगदान देना है। ये दिन न केवल सेवा और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है बल्कि समाज में सहानुभूति, करुणा और एकता का भी संदेश देता है। इस अवसर पर रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सोसाइटी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं, जैसे कि रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान और मानवीय सहायता कार्य।
विश्व रेडक्रॉस दिवस हमें ये याद दिलाता है कि आपसी मदद और सहयोग से ही समाज में सच्ची मानवता का संचार हो सकता है। इस दिन रेडक्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनांट, जिनका जन्म 8 मई 1828 को हुआ था, इस उपलक्ष में मनाया जाता है। 1859 में इटली के सोलफेरिनो युद्ध की विभीषिका को देखकर ड्यूनांट का दिल कांप उठा। उन्होंने घायलों की मदद के लिए एक तटस्थ संस्था बनाने का विचार दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1863 में रेडक्रॉस की स्थापना हुई थी। और हेनरी ड्यूनांट को उनकी मानवीय सेवाओं के लिए दुनिया का पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में दिया गया था। वर्ष 2026 यानी इस वर्ष की विशेष थीम है विश्व रेडक्रॉस दिवस की, मानवता को जीवित रखना, यानी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। ये थीम इस बात पर जोर देती है कि युद्ध, प्राकृतिक आपदा और कठिन समय में भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति मानवता है। ये उन अग्रिम पंक्ति के नायकों को समर्पित है जो दूसरों के गौरव और जीवन की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वास्तव में मानवता यही सिखाती है कि अपने लिए तो जिएं, लेकिन साथ ही साथ कोशिश करें कि अपने स्तर से दूसरों की सेवा करें, सहयोग करें, और दूसरों के लिए जीवन अगर जिएं तो उस जिंदगी को जीने में अपना अलग ही मजा है।

अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जीना ही मानवता कहलाती है। और बिल्कुल कुछ ऐसा ही काम कर रहा है आकाशवाणी। जी हाँ, 1936 से बराबर बदस्तूर जारी है, आपके लिए सेवा में तत्पर रहता है आकाशवाणी। श्रोताओं, आकाशवाणी इस वर्ष अपनी 90वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 जून 1936 को इस दिन भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर अखिल भारतीय रेडियो कर दिया गया था।

0: जी हाँ, ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक सूचना प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण को दर्शाता है, जब एक ऐसी आवाज का जन्म हुआ जो पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। 7 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की तत्कालीन आधिकारिक पत्रिका द इंडियन लिसनर के पहले पृष्ठ पर दुनिया को AIR की घोषणा की गई और उस जादुई शुरुआत से ठीक एक दिन पहले की खबर छपी। समय में ठहर सा गया एक पल, एक ऐसी विरासत जो आज भी जीवित है। आकाशवाणी का साधारण सा स्टेशन एक ऐसा केंद्र बन गया जहां आवाजों को पंख मिले और इतिहास को एक माइक मिला। इन शांत दीवारों से ऐसी गूंज निकली जिसने एक ऐसे राष्ट्र को आकार दिया जो तब से लेकर आज तक कालातीत, भावपूर्ण और अविस्मरणीय बना हुआ है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्श पर खड़ा उतरते हुए आकाशवाणी तत्पर है आपकी सेवा में। और आकाशवाणी से बहुत से लोगों को, उनकी जिंदगी को प्रभावित भी किया है, बहुत से लोगों के शख्सियतों के, व्यक्तित्व के जीवन में परिवर्तन भी आए हैं और आकाशवाणी से लाभ भी हुए हैं। तो क्या क्या लाभ हुए हैं, अनुभव साझा करते हैं सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर के साथ।
1: नमस्कार, जय हिंद आपको और आपके सब सुनने वालों को। मैं आकाशवाणी का श्रोता रहा हूँ दशकों से। मेरी पढ़ाई 1960 के दशक में शुरू हुई थी और तब से आकाशवाणी की खबरें और विविध भारती सुनता है। मीडिया का बहुत ही अहम रोल है। जब पुराने समय की बात करें, 60 और उससे पहले 70, मैं तो कहता हूँ 90 के दशक के बीच में भी रेडियो ही था जिससे कि हम लोग अपने देश विदेश की खबरें, बॉर्डर से दूर क्या हो रहा है उसके बारे में सुन थे। और साथ में जो संगीत आता था वो हमें घर की याद दिलाता। तो ये जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स हैं, आकाशवाणी स्पेशली, उसका बहुत ही अहम रोल है। पुराने जमाने में जो सिग्नल था वो भी नहीं मिलता था, रात को किसी तरह से आता था क्योंकि जिसको कहते हैं आयोनोस्फीयर, वो नीचे आ जाता था। और स्पेशली जो मीडियम वेव के जो प्रसारण होते थे वो रात को ज्यादा आते। तो हम लोग वापस फ्लाइंग करके, मैं लेह में था 70 के दशक में, रात को छाया गीत लगाते थे हम लोग और छाया गीत में जो गाने आते थे घर की याद दिलाते थे। तो इस तरह से जो संपर्क का साधन था वो आकाशवाणी था। अब जो है सब जगह सिग्नल्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कई महीनों तक अगर कोई संपर्क ना हो तो मनोबल पे असर पड़ता है। जो जवान सीमा पे खड़ा है वो भी इंसान है भाई, वो जानना चाहेगा कि देश में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, घर बाहर में क्या हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स हैं वो क्रेडिबिलिटी कि ये जो बोल रहे हैं वो सच है, वो सही है, वो बहुत जरूरी है। चाहे आप अंडमान निकोबार में हो, CIN में हो, ये अब सुविधाएं मिलने लगी हैं और ये बहुत अच्छा है कि सरकार जो है इस पे ध्यान दिया है और दूर दराज के इलाकों तक 4G और 5G अब मिल जाता है तो लोग जो है अपने स्मार्टफोन पे भी ले लेते हैं और सुनाई पड़ता है। 1974 में जब हमने पहला प्रशिक्षण किया था न्यूक्लियर बॉम्ब का पोखरण में, तो मेरे को ध्यान है मैं NDA कैंडिडेट था, फोर्थ टर्म में था और जब ये खबर आई, पर वो विश्वसनीय खबर उस समय 74 में तो आकाशवाणी ही था, उसकी बात मानी गई कि ये ऐसा हुआ है। उत्तराखंड में जब फ्लड्स आए थे

0: रोड सब कट गई थी,
1: जी
0: किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं था, मौसम खराब रहता था, तो हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पा रहे थे रसद ले जाने के लिए। तो उस समय सिर्फ माध्यम जो था सूचना का वो रेडियो था। हम लोग जो है नॉर्मली मौसम की जानकारी जो आती है वो मजे के लिए सुनते हैं कि आज हमारे यहाँ बारिश होगी कि नहीं होगी, लेकिन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जब कोई साइक्लोन आ रहा है, जब कोई इस तरह की विपदा आ रही है, जब सरकारी एजेंसी इसके बारे में बताती है, तो जो खबर को फैलाना है जिस क्षेत्र में आपदा आने वाली है, तो उसके लिए ये जो ब्रॉडकास्टिंग है ये बहुत जरूरी हो जाता है। आकाशवाणी उसके बारे में स्पेशल ब्रॉडकास्ट एरिया वाइज देता है। इसी तरह से किसानों के लिए जो
1: बिल्कुल
0: मौसम की जानकारी आकाशवाणी देता है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आजकल जो इतने सारे चैनल चालू हो गए हैं उसमें शोर है, बहुत ज्यादा शोर है। अंग्रेजी में उसको कैकोफोनी बोलते हैं। जब लोगों से बात करें तो कहते हैं कि भाई अगर खबर सुननी है तो आकाशवाणी की सुनो, और खबर देखनी है तो दूरदर्शन की देखो, जिसमें कोई शोर नहीं है, आवाज नहीं है, खबर है जो आप ढूंढ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है प्रसार माध्यमों का कि वो एक लेवल हेडेड तरीके से खबर फैलाएं। तो इस समय में ये जरूरी है कि हम जो है अपना जो भी ब्रॉडकास्ट करें या जो भी हम देखें या सुने वो सही स्रोतों से। जय
2: श्रोताओं, ये थे सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर जी, जो अनुभव बता रहे थे आकाशवाणी के कि वो शुरू से आकाशवाणी के श्रोता रहे हैं, और बॉर्डर पर युद्ध के दौरान जो भी सूचनाएं मिलती थी वो आकाशवाणी के माध्यम से उनको सबसे पहले मिलती थी, और आपदा के समय में आकाशवाणी का क्या रोल रहा। 2013 में उत्तराखंड में जो आपदा आई उसका उस समय आकाशवाणी का क्या रोल रहा, ऐसे अनुभवों से हमें अवगत करा रहे थे। और वास्तव में आकाशवाणी का अहम रोल है जिंदगी में, चाहे कितनी ही हम तरक्की कर लें और चाहे कितनी ही दुनिया आगे बढ़ जाए, लेकिन एक जो बेतार यानी तारों के बिना जो माध्यम है, और अब तो इतनी सुविधा हो गई है कि आप अपने मोबाइल में न्यूज़ ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी स्टेशन को आप सुन सकते हैं, हमारा सुबह सवेरे कार्यक्रम भी सुन सकते हैं और सुन रहे हैं श्रोता। और तो और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी मन की बात कार्यक्रम अपना कहते हैं आकाशवाणी के माध्यम से आपसे रूबरू होते हैं, और उनके अपने विचार आकाशवाणी के लिए रेडियो के लिए क्या है, देखिए सुनिए।
3: साथियों, जब बात रेडियो और FM की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है, और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था।
2: तो सुना आपने, प्रधानमंत्री जी भी रेडियो को पसंद करते हैं, आकाशवाणी को पसंद करते हैं, आकाशवाणी के माध्यम से आपसे रूबरू भी होते हैं। तो वास्तव में यह है ही ऐसा माध्यम जो हमें जानकारी देता है, मनोरंजन भी कराता है, और कहीं भी किसी भी समय आप इससे अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, अपने तनाव को कम कर सकते हैंगे, और तनाव कम जब होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, ऊर्जा से भरपूर रहता है, और जिंदगी और भी आसान हो जाती है।

तो सुनते रहिए आकाशवाणी और जुड़े रहिए हमसे पत्रों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से। और पत्र लिखना ना भूलिए और आकाशवाणी हमेशा आपको ऐसी सेवाएं देता रहेगा जिससे आपका मनोरंजन होता रहे और साथ ही साथ ज्ञान वर्धन होता रहे।

और अब श्रोताओं डालते हैं एक नज़र 8 मई के इतिहास पर। 8 मई 1945 में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के समक्ष जर्मनी का आत्मसमर्पण रहा। 2000 में भारतीय मूल के 69 वर्षीय लॉर्ड स्वराजपाल ब्रिटेन के चौथे सबसे बड़े विश्वविद्यालय ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त हुए थे। 8 मई 2004 में श्रीलंका के मुरलीधरन ने 521 विकेट लेकर सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। 8 मई 1926 में प्रसिद्ध इतिहासकार तपन राय चौधरी का जन्म हुआ था और 8 मई 2013 को भारत के मशहूर ध्रुपद गायक जिया फरुद्दीन डागर का निधन हुआ। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार रहे देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का निधन 8 मई 1993 को हुआ। बंगाल के नवाब मीर कासिम का निधन 1777 में आज ही के दिन हुआ। इसके अलावा भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में से एक भाई बाल मुकुंद का निधन 1915 में आज ही के दिन हुआ था। और श्रोताओं आज जो जन्म वर्षगांठ है वो है भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी की। उन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता है। वो बनारस घराने से संबंधित रही हैं। गायकी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1972 में पद्मश्री और वर्ष 1989 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। गिरजा देवी संगीत नाटक एकेडमी द्वारा भी सम्मानित की जा चुकी हैं। 8 मई 1929 को गिरजा देवी का जन्म कला और संस्कृति की प्राचीन नगरी वाराणसी में हुआ था। उनके पिता रामदेव राय एक जमींदार थे जो एक संगीत प्रेमी व्यक्ति थे। उन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही गिरजा देवी के लिए संगीत की शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी। गिरजा देवी के प्रारंभिक संगीत गुरु पंडित सरयू प्रसाद मिश्र थे। सरयू प्रसाद मिश्र से उन्होंने संगीत सीखा। 9 वर्ष की आयु में पंडित श्रीचंद्र मिश्र से उन्होंने संगीत की विभिन्न शैलियों की शिक्षा प्राप्त की। इस अल्प आयु में ही एक हिंदी फिल्म याद रहे में गिरजा ने अभिनय भी किया था और इसके अलावा उन्होंने 1946 में अपना प्रथम प्रदर्शन आकाशवाणी केंद्र इलाहाबाद में किया। संगीत यात्रा उनकी जो है वो 1949 में आकाशवाणी से शुरू हुई और उसके बाद उन्होंने 1951 में बिहार के आरा में आयोजित एक संगीत सम्मेलन में गायन प्रस्तुत किया। इसके बाद उनकी जो यात्रा है वो अनवरत शुरू रही। संगीत उनकी रग रग में बसा हुआ था और वो ठुमरी की रानी कही जाती रही हैं। ख्याल गायन से कार्यक्रम का आरंभ करने वाली गिरजा देवी ठुमरी चैती कजरा झूला ये सभी उतनी ही तन्मयता और खूबसूरती से गाती थीं कि श्रोता झूम उठते थे। उनकी ये कजरी बरसन लगी बहुत प्रसिद्ध हुई और अपनी विशिष्ट गायन शैली के लिए गिरजा देवी को कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए। पद्मश्री 1972 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977 में, 1989 में पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2010 में, 2012 में महान संगीत सम्मान अवार्ड और पद्म विभूषण 2016 में उनको मिला। उन्होंने संगीत के लिए अपनी

0: रुचि कुछ इस तरह बयां की।
1: संगीत का मेरे जीवन में, और मैं जो और लोगों को भी बताती हूँ कि संगीत अगर करें, खुद स्वयं करें या सिखाएं या सुने, तो उसमें ये है कि इतना आनंद और शांति आती है कि आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सारे काम काज को भूले रहते हैं और देखते रहते हैं कि इसका क्या चमत्कार और क्या असर पड़ता है लोगों पर। ये मैंने कई बार देखा और हर बार मैं इस बात को बोलती हूँ कि इससे बढ़ के शांति और दुनिया में कोई चीज में नहीं मिलती। मुझे जो मेरा विचार है
2: जी।
1: तो सारे ध्यान और मेडिटेशन और इसकी खूबसूरती जो है, ये मुझे इतना महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में कि इससे बढ़ के तो मुझे और कोई चीज नहीं लगती।
0: तो सुना आपने गिरजा देवी को कि संगीत से ज्यादा उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, संगीत उनकी रग रग में बसा हुआ था। ठुमरी गायिका की रानी गिरजा देवी इस दुनिया को विदा कर गई 24 अक्टूबर 2017 को, कोलकाता में उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो संगीत एक ऐसा जज्बा है जो हमेशा बिल्कुल मुग्ध होकर तनाव को दूर करता है, और जहाँ गीत होगा वह संगीत होगा, और जहाँ संगीत होगा वहाँ गीत जरूर होगा।

श्रोता, उम्मीद है आपको आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा इस बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। हमारा पता है, आपका पत्र मिला कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन 244901। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है patramila@rampur.gmail.com। आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम समाप्त करने की अब अखिलेश सक्सेना को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
1: किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला

0: में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

0: कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी

0: से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएस इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at business forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives

अभी आपने सुना मधुवंती सचदेव और जैस्मिन की आवाज़ों में फिल्म धुरंधर का गीत, और लीजिए अब अगला गीत सुनिए। दलेर मेहंदी की आवाज़ में फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो से।

आप सुन रहे कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से और FM 102.9 MHz पर। अगला गीत फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी से, कनिका कपूर, शार्वी, वाई की आवाजों में।

अभी आपने सुना वरुण जैन, शादा फरीदी और अल्तमश फरीदी की आवाज़ों में फिल्म ज़रा हटके ज़रा बचके का गीत। और लीजिए अब सुनिए अगला गीत फिल्म पठान से शिल्पा राव और विशाल ददलानी की आवाज़ों में।

अभी आपने सुना केके को, फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यू में। और लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में गीत फिल्म नई बड़े मियाँ छोटे मियाँ से।

मस्त मलंग। अभी आपने सुना विशाल मिश्रा और अजीत सिंह को फिल्म नई बड़े मियां छोटे मियां में, और अब कार्यक्रम को अंतिम सुनिए शाश्वत सचदेव और नुसरत फतेह अली खान को फिल्म धुरंधर द रिवेंज में।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 9:15 होने को हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा।
1: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आप सुनिए वाराणसी और गाजीपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काशी दौरे के दौरान 6332.08 करोड़ रुपए की 163 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने 2464.46 करोड़ रुपए की लागत से मालवीय पुल के पास बनने वाले रेलवे रोड ब्रिज सिग्नेचर ब्रिज की आधारशिला रखी। इसके अलावा 1582.99 करोड़ रुपए की सीवरेज व जलापूर्ति योजनाएं तथा 429.36 करोड़ रुपए के कबीचौरा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल परियोजना का भी शिलान्यास किया। लोकार्पित प्रमुख परियोजनाओं में 308.09 करोड़ का एसटीपी, 144.43 करोड़ का कजाकपुरा आरओबी और सारनाथ स्थित तिब्बती संस्थान में सोवा रिंगपा मेडिकल कॉलेज शामिल है। प्रधानमंत्री का यह दौरा काशी के समग्र विकास, आधारभूत संरचना सुदृढ़ीकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सारनाथ में आयोजित भव्य बौद्ध महोत्सव श्रद्धा, अध्यात्म और संस्कृति का अद्भुत संगम बनकर उभरा। गौतम बुद्ध की 2570वीं जयंती के उपलक्ष्य में हुए इस आयोजन में देश विदेश से आए 1,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बुद्ध के पवित्र अस्थि धातुओं के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। महोत्सव का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा इंडो श्रीलंका जम्बू द्वीप बुद्ध विहार सारनाथ के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। मूलगन कुटी विहार में पवित्र अवशेषों के दर्शन के साथ श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया। इस अवसर पर विश्व शांति के लिए तथागत बुद्ध विषय पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक बच्चों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। वहीं सभी को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के दौरान धम्म देशना, विपश्यना और विचार गोष्ठियों का आयोजन भी हुआ, जिसमें वक्ताओं ने बुद्ध के उपदेशों को जीवन में अपनाने पर बल दिया। श्रद्धालुओं के लिए पूरे दिन भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें सेवा और करुणा का संदेश भी प्रसारित हुआ। इस अवसर पर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव सुमितानंद थेरो ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं लुम्बिनी में जन्म, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से जुड़ा पावन दिवस है।
3: बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया तरफ से सारनाथ में हर साल में हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मना रहा है। भगवान बुद्ध का पवित्र अस्थि ये मूलगंधकुटी महाविहार में रखा है। हम लोग को भगवान बुद्ध का अस्थि दर्शन कर रहा है।
2: उत्तर प्रदेश पुलिस की पासिंग आउट परेड वाराणसी के पुलिस लाइन मैदान में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से परेड को संबोधित किया, जिसका सजीव प्रसारण सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर किया गया। वाराणसी मंडल के विभिन्न भर्ती प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित इस पासिंग आउट परेड में कुल 3070 प्रशिक्षु आर्ची अब उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान के रूप में सेवा के लिए तैयार हो गए हैं। वाराणसी, जौनपुर एवं गाजीपुर जनपदों के प्रशिक्षण केंद्रों सहित पीएसी 36वीं वाहिनी रामनगर एवं 34वीं वाहिनी भुल्लनपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके आरक्षियों ने परेड में भाग लिया। इसके बारे में विस्तृत रूप से वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि वाराणसी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में विशेष रूप से महिला आरक्षियों को प्रशिक्षण दिया गया।
4: 491 महिला आरक्षियों ने यहां पर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण अपना कंप्लीट किया है। दीक्षांत परेड 491 महिला आरक्षियों की यहां पर हुई है। इन महिला आरक्षियों की जो लगभग 9.5 महीने की यहां पर ट्रेनिंग हुई है, इन महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ, पूरी लगन के साथ सफलतापूर्वक इस ट्रेनिंग को पूरा किया है,
2: जिसमें से 491 महिला प्रशिक्षुओं ने भी परेड में सहभागिता की। परेड के उपरांत इन सभी महिला आरक्षियों को विभिन्न थानों में तैनाती के लिए तैयार किया गया है, जहां वे महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुदृढ़ीकरण एवं जन सेवा के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसके अतिरिक्त वाराणसी परिक्षेत्र के जौनपुर एवं गाजीपुर प्रशिक्षण केंद्रों से 1390 आरक्षियों ने भी परेड में भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वाराणसी के चौकाघाट स्थित गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल में प्रसिद्धि विद्यालयों के शिक्षा मित्रों के बढ़े हुए मानदेय की चेक वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गोरखपुर के गुरु गंभीर नाथ प्रेक्षागृह से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने उत्साहपूर्वक देखा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन समन्वय मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, MLC धर्मेंद्र सिंह, विधायक सौरभ श्रीवास्तव एवं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार द्वारा दीप प्रज्वलन और माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर श्रम मंत्री अनिल राजभर ने शिक्षा मित्रों और शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताते हुए कहा कि वे देश के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने मानदेय वृद्धि को शिक्षा मित्रों के मनोबल को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया।
1: वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्री राम राय का।
5: गाजीपुर के कासमाबाद तहसील स्थित कयामपुर छावनी गांव में मगई नदी पर लोगों ने श्रमदान कर पुल निर्मित कर दिया, जिसका लोकार्पण प्रयाग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर यादव ने किया। मगई नदी पर पुल न होने के कारण लगभग 15 से 20 गांव के ग्रामीणों को लंबी दूरी तय कर जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ता था। इसके लिए ग्रामीणों ने स्वयं पहल की एवं आपस में चंदा इकट्ठा कर मगई नदी पर पुल निर्मित कर दिया। न्यायमूर्ति शेखर यादव ने कहा कि यह संकल्प शक्ति एवं अच्छी सोच का ही परिणाम है कि आज ग्रामीणों ने बिना किसी सरकारी सहायता के मगई नदी पर पुल बनाकर एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में गाजीपुर के भावरकोल ब्लॉक अंतर्गत पलिया गांव निवासी उमेश राय ने कोलकाता के चर्चित हावड़ा उत्तर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि पर उनके गांव पलिया सहित पूरे जनपद में जश्न का माहौल है। ग्रामीण एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ढोल नगाड़े बजाकर एक दूसरे को शुभकामना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब गाजीपुर में भी दिखने लगा है। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता विवेक खन्ना ने पिछले दिनों एक पावर हाउस के 10

0: ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में विभागीय संलिप्तता को देखते हुए 3 अफसरों को और 2 कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीओ प्रमोद यादव, जेई राजीव गुप्ता, जेई नीरज खरवार को निलंबित कर दिया। वहीं 2 संविदा लाइन मैन बर्खास्त कर दिए गए। पिछले दिनों गाजीपुर में करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गाँव में हुई संदिग्ध मौत के मामले में यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मृतका के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद एवं न्याय का भरोसा दिलाया। वहीं दूसरी ओर पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह तथा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी कटरिया गांव पहुंचकर मृतका के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। पिछले दिनों गाजीपुर में हुई बरसात और आंधी तूफान के कारण जहां सब्जियों को नुकसान हुआ, वहीं तेज आंधी के कारण पेड़ गिरने से 3 व्यक्तियों की मौत भी हो गई। घटना के बाद जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला मृतकों के परिजनों के बीच पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार मृतकों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। 1 मई को गाजीपुर में मजदूर दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने श्रमिकों के साथ बैठक की और उन्होंने उनके बीच मजदूर दिवस मनाया। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में गाजीपुर में 780 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया है तथा उन्हें 3.25 करोड़ रुपए भी प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अनुसार गाजीपुर में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक श्रमिक को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। पिछले दिनों गाजीपुर पुलिस ने जनपद में अपराध मुक्त वातावरण बनाने की उद्देश्य से पुलिस की 12 टीमों के द्वारा एक गैंग के 61 सदस्यों के ठिकाने पर छापेमारी की। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने बताया कि गैंग के 24 सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है तथा गैंग के कुल 90 शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। पिछले दिनों गाजीपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 1 अप्रैल से शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने राजभर समाज के आजादी की लड़ाई में योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि गोरखपुर के चौरी चौरा कांड में 26 राजभर युवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज भी राजभर समाज महाराजा सुहेल देव के चलाए रास्ते पर ही चल रहा है एवं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में लगा हुआ है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी गाजीपुर पहुंचे एवं विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के बीच भी भारतीय युवा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि आगामी 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर न्याय आपके द्वार नारे को चरितार्थ करते हुए यह लोक अदालत लगाई जा रही है। इसमें बैंकिंग तथा पारिवारिक वाद के मामले तथा अन्य विभिन्न मामलों का भी निपटारा होगा। इस लोक अदालत के माध्यम से वादकारी का समय, श्रम एवं पैसे की बचत होगी। उन्होंने गाजीपुर के लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में भागकर अपने मामले को निपटाएं। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में गाजीपुर के 6 मेडिकल फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी क्रम में पिछले दिनों 2 आरोपियों राहुल यादव एवं दयाराम सिंह ने न्यायालय में हाजिर हुए एवं उन्हें जेल भेज दिया गया। 1 आरोपी सर्वांश वर्मा की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है एवं अन्य 3 के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए कुर्की आदि के माध्यम से पुलिस लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 9:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग।

0: ये प्रेरक प्रसंग है गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से। गोस्वामी तुलसीदास जी केवल एक महान कवि ही नहीं, अद्वितीय भक्त, समाज सुधारक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। उनका जीवन भक्ति, वैराग्य और परिवर्तन की प्रेरक गाथा है। युवावस्था में तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक विदुषी स्त्री से हुआ। वो अत्यंत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। एक बार रत्नावली मायके चली गई। तुलसीदास जी उनसे मिलने के लिए वर्षा और अंधेरी रात में नदी पार कर ससुराल पहुंच गए। रत्नावली ने उनकी इस आसक्ति पर कहा, जितनी आसक्ति इस नश्वर शरीर से है, यदि उसका आधा भी भगवान श्री राम में होता तो आपका जीवन धन्य हो जाता। इन शब्दों ने तुलसीदास जी के हृदय को झकझोर दिया। उसी क्षण उन्होंने सांसारिक मोह त्याग दिया और श्री राम भक्ति में लीन हो गए। ये प्रसंग हमें प्रेरणा देता है कि सत्य का एक वाक्य भी पूरे जीवन की दिशा बदलने का सामर्थ्य रखता है। कहते हैं काशी में उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने लोक भाषा में राम कथा लिखने का संकल्प लिया। उस समय संस्कृत को ही विद्या की भाषा माना जाता था, पर तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में राम कथा लिखी ताकि सामान्य जन भी उसे समझ सके, और इस प्रकार रामचरितमानस की रचना हुई। वो ग्रंथ जो भक्ति और मर्यादा का अमूल्य ग्रंथ है, साहित्य की अनुपम कृति है। महान कार्य वही होते हैं जो समाज के हित में हो। रामचरितमानस की रचना करके तुलसीदास जी ने ऐसा ही कार्य किया। संकट मोचन मंदिर के बारे में भी एक प्रसंग है कि वाराणसी में तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए, ऐसा विश्वास किया जाता है। उसी स्थान पर बाद में संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना हुई। तुलसीदास जी की हनुमान भक्ति अद्भुत थी। उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए श्रद्धा और शक्ति का स्रोत है। यह प्रसंग दिखाता है कि सच्ची भक्ति और भय संकट को दूर करती है। जब उन्होंने लोकभाषा में राम कथा लिखी तब कुछ विद्वानों ने उनका विरोध किया, पर तुलसीदास जी ने धैर्य नहीं खोया, अपने मार्ग पर अडिग रहे। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि एक जागृति का क्षण जीवन बदल सकता है, समाज के हित में किया गया कार्य अमर हो जाता है। भक्ति और धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। वो कभी ही नहीं युग दृष्टा थे। उनका जीवन मर्यादा, समर्पण और आस्था का प्रेरणा स्रोत है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग।
2: जल के बिना तो जल जाओगे, पानी की एक बूंद बिना तुम कैसे प्यास बुझाओगे।
3: कीमत समझो पानी की अब, वरना फिर पछताओगे।
4: रिश्ते नाते पीछे होंगे जब जल की होगी मारा मारी। रुपयों से भी जल न मिलेगा, जल की होगी पहरेदारी।
3: जल है तो कल है,
4: यही चिंतन पल पल है।
5: पानी को बचाकर रखिए, इसका सदुपयोग कीजिए।
6: सच्ची कहानी है पानी जिंदगानी है, सच्ची कहानी है पानी जिंदगानी।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। पेशे खदमत है उर्दू प्रोग्राम। प्रोग्राम सुनने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आपके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आपके मेजबान फरीदुल्ला खान
2: और मारिया खुशनूद हाजिर हैं।
1: सलाम मोहब्बत कबूल कीजिए, आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। सामिन बज़्म, आज हमने अपने स्टूडियो में एक नातिया नशिस्त का इनेकाद किया है। इसमें जो शोराए किराम शामिल हैं उनके अस्माए ग्रामी कुछ इस तरह हैं: जनाब अब्दुल वक़ार साहब, जनाब मुजम्मिल हुसैन और जनाब नाजिम हुसैन। तो आइए देर ना करते हुए सबसे पहले हम दावत सुखन देते हैं मोहतरम अब्दुल वक़ार वक़ार जनेटवी साहब को कि वो आएं और इस महफिल को नूरानी बनाएं।
3: नाते पाक का मतला हाजिर खिदमत है।

0: सुभान अल्लाह सुभान
1: पहली नजर जब आँख ने रोजा देखा होगा, और ये शेर फरीद भाई बतौर खास,
0: जी आता हूँ, बैठ जी।
1: चांद सितारों तुम ही बताओ,
0: चांद सितारों तुम ही बताओ।

0: बहुत अच्छा
1: भी वहाँ नैन का सदका
0: बटता होगा पैगाम।
2: भाई शेर बतौर
0: जी जी आता हूँ।
1: जाने कबूसर कार नवाजेंगे दीदार की दौलत से।

0: क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान
1: है
0: अल्लाह।
1: किस दिन ख्वाब ये मेरा
0: पूरा होगा तैबा
1: पूरा
0: में,
1: होगा तैबा
0: क्या
1: में।
0: बात है
1: सामीन
0: सुभान।
1: आखिरी शेर हजरत
0: जी जी
1: का
0: बिल्कुल
1: दुआ
0: आता हूँ।
2: दुआ।

0: क्या बात है, बहुत अच्छे।
1: हर उलझन हर मुश्किल का हल मिलता होगा
0: तैबा
1: में। मुक्ता हाजिर खिदमत है
0: जी, अता।

0: और पढ़िए।
1: एक सोच रहा हूं कितना हसीं वो लम्हा होगा तैबा
0: क्या
1: में
0: बात।
1: पहली।

0: शुक्रिया हजरत।
1: बहुत खूब। ये थे मोहतरम नाज़िम हुसैन, बहुत ही खूबसूरत लहजे में और ख़ूबसूरत अशार के साथ इस महफ़िल को नूरानी बना रहे थे। अब सामीन, ये नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुँचती है। इसमें जो शुराए किराम शामिल थे उनके अस्माए ग्रामी इस तरह हैं: जनाब अब्दुल वक़ार साहब, जनाब मुजम्मिल हुसैन साहब और जनाब नाज़िम हुसैन साहब। और सामीन, आइए अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब। मारिया, आज हम अपने रामपुर के सूफिया इकराम की बात करेंगे।
2: जी।
1: जैसा कि हमारा रामपुर शहर और शहर क्या पूरा ज़िला ही आपसे, जो सूफिया इकराम हैं उनसे आबाद है।
2: जी बिल्कुल।
1: और यहाँ की खुशनसीबी कहें और यहाँ पर जो उनके फयूज़ बरकात हैं वो रामपुर शहर को आबाद किए हुए हैं।
2: बिल्कुल।
1: क्योंकि यहाँ स्टेट पीरियड था, रामपुर के जो नवाबीन थे वो बहुत अकीदत और उनसियत रखते थे इस रामपुर शहर से और रामपुर शहर के चाहने वालों से। और जो सूफिया इकराम यहाँ पर तशरीफ़ लाए उन्होंने उनको जगह दी यहाँ पर
2: जी
1: रहने के लिए भी, और उनका पूरा ख्याल रखते थे।
2: जी हाँ। और ये जो यहाँ सूफिया इकराम थे जिन्होंने

0: में आज हम इस प्रोग्राम में भी लेकर हाजिर हुए हैं रामपुर के सूफिया इकराम के हवाले से एक अहम तकरीर। तो मारिया, हमारी तकरीर का मौजू जो है वो रामपुर के सूफिया इकराम।
1: और इसे आपकी समातों की नज़र कर रही हैं मोहतरमा शबाना अफसर, तो समात करिए ये नशरशुदा तकरीर।
2: सूफिया इकराम और उनकी खिदमात के हवाले से चंद ऐसे बुजुर्गान दीन का जिक्र कर रही हूँ जिन्होंने इंसानी सीरत व तरबियत के तामीरी कामों को अदा करने के साथ साथ बहुत से इल्म व अदबी और तहकीकी कारहाए नुमाया भी अंजाम दिए हैं, जिनके तस्करे बहुत सी तारीखी किताबों में हमें पढ़ने को मिलते हैं। अगरचे सीरत की तरबियत और शख्सियत की तामीर इंसानी कामों में सबसे अहम और मुश्किल काम है, लेकिन इसका आसान रास्ता यही है कि कुदरत ने जिन सलाहियतों और खूबियों से नवाजा है जो मुतजाद किस्म की हैं, उनमें यकसुई और यकजहती पैदा की जाए, क्योंकि खजाना कायनात में सबसे कीमती शह अखलाकी शख्सियत ही ऐसा गिरा बहा गौहर है जिस पे फरिश्ते रश्क करते हैं, जो यकसुई और यकजहती से पैदा होता है। सूफिया इकराम ने शख्सियत की तामीर के इस काम को जिस एहतमाम, इन्हिमाक और खलूस से अपने अपने तौर पर अंजाम दिया है और लोगों की मदद और रहनुमाई की है, उसकी दूसरी मिसाल तारीख में मुश्किल से मिलती है। लिहाजा ज़रूरी है कि बुजुर्गों यानी सूफिया इकराम के हालात व वाकयात इस अंदाज से पेश करने की सआदत हासिल करें जिनसे उनकी ज़िंदगी और उनके काम की सही रूह आशकारा हो जाए और हम उन बुजुर्गों के इरादों की कुव्वत अफकार की सेहत और तरबियत की ही जान पजीरी की वसत सीरत के उन लवाजिम की झलक सामेईन तक पहुँच सके और उनके सबात कदम खुद एतमादी, जब्त नफ्स, बेलोस खिदमत और उनकी जुरअत सामने आ सके। यूं तो तमाम हिंदुस्तान में बुजुर्गान दीन और सूफिया इकराम की बेशुमार तादाद मौजूद है, जिनके हयात करामात के वाकयात से किताबें भरी हुई हैं, जिनका अहाता करना अगरचे नामुमकिन नहीं, इंतहाई मुश्किल तरीन अमर है। रामपुर में और उसके इतराफ़ की तहसीलों में भी अपने वक्त के पाए के बुजुर्ग तरीन हस्तियों के मज़ारात हैं, जिनमें ख़ास तौर से हाफिज शाह जमालुल्लाह साहब, शाह दरगाही साहब, बगदादी साहब रहमतुल्लाह अलैह के अलावा रामपुर में दीगर बुजुर्गान दीन के मज़ारात हैं। आइए अब मैं सबसे पहले अपने वक्त के ज़बरदस्त सूफ़ी जनाब शाह रऊफ अहमद मुजद्ददी तखल्लुस राफ्त का मुख्तसर तस्करा करती हूँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को इंसानी खिदमत और उनकी तरबियत, इल्म अदबी और तहकीक तलाश के कामों के लिए वक्फ कर दिया। इनके वालिद मोहतरम का नाम शऊर अहमद था। 14 मुहर्रम 2001 हिजरी को मुस्तफाबाद उर्फ रामपुर में पैदा हुए। आपके दादा ने तारीखी नाम रहमान बख्श रखा था। हजरत शाह अबू सईद अलैह रहमतुल्ला के खालाजाद भाई थे। उलूम अकली से फारिग होकर हजरत शाह दरगाही महबूब इलाही की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे ही बैत की। तकरीबन 12 साल तक इन्हीं की खिदमत में हाजिर रहे। रियाजत व मुजाहिदा बतौर जुनैद बगदादी बकदर ताकत व इम्कान किया। शाह साहब के हालात में एक मुस्तकिल किताब लिखने का इरादा जवाहर अलविया में जाहिर किया। एक मरतबा शाह दरगाही साहब दिल्ली में थे, शौक में दिल्ली पहुंचे। उसी जमानाए ज़ौक व शौक में एक मसनवी असरार गैब और गजलियात का दीवान लिखा। शाह दरगाही साहब आपसे फरमाया करते थे कि तुम्हें मैं अपने सीने में रखना चाहता हूँ। शाह साहब से नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया, साबरिया, निज़ामिया, सहरवर्दिया तरीक़ों में इजाज़त मिली। सनद मुसाफ़हे अपने खालू इमामुल मुहद्दिसीन हजरत सिराज अहमद मुजद्ददी से हासिल की और सनद हदीस भी इन्हीं से पाई। ख़त्म ख्वाजगान की इजाज़त हजरत शाह दरगाही साहब और दीगर अमाल की इजाज़त शाह अब्दुल्ला से ली। बाद इंतकाल हजरत शाह दरगाही साहब आपको हुसूल व नस्बत मुजद्ददिया का शौक हुआ और आप हजरत शाह गुलाम अली सिर्रहू की खिदमत में दिल्ली में हाजिर हुए। शाह साहब ने फरमाया, तुमने जो कुछ हासिल किया है वो मौजूद है। मुजाहिदा फरमाया, तुमने जो कुछ मुजाहिदा खूब खूब हो चुका था। नहायत जल्द दायरा सुलूक तय कराकर इजाज़त व खिलाफत अता फरमाई। आप जब सरवंच वाक़ रियासत टोंक में पहुँचे तो अपने कशफ व वजदान के मुताबिक एक रिसाला मरातिबुल वसूल नामी लिखकर हजरत शाह गुलाम अली साहब की खिदमत में भेजा और शाह साहब ने अपने ख़त में उसकी तारीफ फरमाई। आखिर में जाकर भोपाल में मुकीम हुए। भोपाल से हज काबतुल्ला को रवाना हुए। जहाज़ में 65 برس کی عمر میں ذی قعدہ کی 25 تاریخ 1240 ہجری کو یک یک انتقال ہو گیا۔ تفسیر روفی بزبان اردو 1239 میں لکھنا۔

शुरू की और 1248 हिजरी में ख़त्म की। ये बम्बई में 2 जिल्दों में तबाह हुई है। किताब दारुल मुआरिफ में मलफूजात शाह गुलाम अली साहब के जमा किए हैं और वो छप चुकी है। उर्दू फारसी कलाम का दीवान भी उर्दू शायरी में कलंदर बख्श जुर्रात से तिलमस था। नसर उर्दू में एक मिराज नामा लिखा था। मसनवी यूसुफ जुलेखा उर्दू में लिखी थी। किताब जवाहर अलविया बजुबान फारसी लिखी, जिसमें हजरत शाह गुलाम अली दहलवी कुछ सिर्रहू के हालात मुफसल और कुल सिलसिलों के मजमल लिखे हुए हैं। उनमें अपना नस्ब नामा और कुछ हालात भी लिखे हैं। एक रिसाला मरातिबुल वसूल खानकाह दिल्ली में लिखा था और हजरत गुलाम अली साहब ने उसको पसंद फरमाया। रिसाला सादिका मजदूका बजुबान फारसी रियासत रामपुर में कलमी 48 सफा का मौजूद है। सुलूकुल आरिफीन फारसी ये रिसाला 220 सफा का छोटी तख्ती पर कुतुब खाना रियासत रामपुर में मौजूद है। इस किताब को 22 फसूल और एक खात्मे पर तकसीम किया है। तरीका नक्शबंदिया के सुलूक को तफसील से लिखा है। शराब रहीक फारसी ये 14 सफा का रिसाला कुतुब खाना रियासत रामपुर में मौजूद है। इसमें नक्शबंदी कादरी चिश्ती तरीके के असकार व अशगाल लिखे हैं। अरकानुल इस्लाम 9 सफा का रिसाला मतबा निजामी कानपुर में 1297 हिजरी में शाये हुआ है। दूसरे हमारे सूफी शाह जियाउन नबी मुजद्दी हैं। आपके वालिद का नाम शाह इनायतुन नबी था। आपका सिलसिला हजरत मुजद्दी अल्फसानी सरहंदी रहमतुल्ला अलैह से मंसूब है। आपकी विलादत 1160 और 70 हिजरी के दरमियान में सरहंद में हुई। सिखों के तीसरे हमले के वक्त ये अपने खुसर मौलाना मोहम्मद मुर्शद के हमरा रामपुर आए। गुजर अवकात जिल्दबंदी से थी। नवाब नसरुल्ला खां को खास अकीदत थी। ओहदाए बख्शी उन्होंने ही दिया। उलूम रियाजी में हिंसा हयात अस्तरलाब मनाजरा का रिवाज रामपुर में शाह जियाउन नबी की वजह से ही बढ़ा। उसी कदर फरोतनी ज्यादा हुई। एक रोज हाथी पर सवार होकर जा रहे थे, किसी शख्स ने जिल्द बांधने को कहा। हाथी रोक कर किताब ले ली। कोई साहब साल में कुछ गल्ला आपको दिया करते थे। मर्ज मौत में ताकत नशिस्त बर्खास्त न थी। यकायक पलंग से उतर कर नीचे बादब बैठ गए। थोड़ी देर के बाद फरमाया कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इस पलंग को कयाम से मुशर्रफ फरमाया। वो तोशक और चादर अभी तक उनकी औलाद में मौजूद है। इस वाक़े से 17 रोज बाद 1215 हिजरी में इंतकाल किया। बड़े पीर साहब के झंडे पर मुत्तसिल दालान मस्जिद जानिब जुनूब हजीरा में दफन है। सराय पुख्ता के करीब मस्जिद और घेर आपके नाम से मशहूर है। हकीम मीर जियाउद्दीन तखल्लुस इबरत भी एक बड़े सूफी गुजरे हैं। आपके वालिद मोहतरम का नाम सैयद अलाउद्दीन था। शाहजहांबाद के रहने वाले थे मगर रामपुर में ही परवरिश पाई। हकीम हाजिक थे, मुआलिजा करते थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा खां उर्फ नज्जू खां जिनका घेर मशहूर है के पास अतिब्बा में मुआलिज थे। फन शेर में नवाब मोहम्मद खां खल्फ हाफिज रहमत खां के शागिर्द थे। पद्मावत उर्दू में मंजूम लिखना शुरू की। पूरी न होने पाई थी कि इंतकाल हो गया। मियाँ सैयद हसन शाह साहब के मुरीद थे जिनका मजार नवाब सैयद अहमद अली खां साहब बहादुर ने बनवाया है। पद्मावत में अपने पीर और जनाब नवाब सैयद मोहम्मद फैजुल्ला खान साहब बहादुर की तारीफ लिखी है। दीवान इबरत फारसी जिसमें गजलें और रुबाइयात रदीफ वार हैं। 214 सफ़े का कलमी नुस्खा कुतुब खाना रियासत में मौजूद है। इसमें एक रुबाई नवाब अबुल मंसूर की मदा में भी है। पद्मावत की तकमील मीर गुलाम अली इशरत ने 1211 हिजरी में की है और इसके दीबाचे में लिखा है कि मीर जियाउद्दीन साहब के इंतकाल को 7-8 साल हो चुके हैं। मौलवी अहमद खां का नाम भी सूफिया इकराम में बहुत अहम है। आपके वालिद मौलवी हाजी मोहम्मद अब्दुल्ला खां थे। आपने उलूम अरबी बरेली और रामपुर में पढ़ा। फिका में निहायत दर्जा शोहरत थी। मुतफर्रिकात अहमद एक फतावी अरबी में 2 जिल्दों में लिखा। इसके अलावा फारसी में रिसाला फराइज व कानून तिब मुफर्रिदात कुल्लियात और मुआलिजात भी लिखा था। निकाह नहीं किया और रामपुर में वफात पाई। कबर मोहल्ला ठोटर में मस्कन के करीब जनाब नवाब सैयद फैजुल्ला खां बहादुर के हम असर हैं। सूफिया इकराम में एक नाम मौलवी अब्दुल हक शम्सुल उलेमा का भी बहुत अहम है। आपके वालिद मौलवी फजलुल हक खैराबादी थे। दिल्ली में 1244 हिजरी में पैदा हुए। 16 बरस की उम्र में ही दरसियात खत्म कर लिए और अपने वालिद के हमरा सहारनपुर गए। चंद साल वहाँ कयाम रहा। इसके बाद अलवर चले गए और वहाँ आमाए दीन रियासत में दाखिल हो गए। अलवर में ही थे कि 1957 का गदर हो गया और आप अलवर से दिल्ली चले आए। मौलवी साहब के वालिद को काले पानी भेज दिया गया। अपने वतन से रियासत टोंक तशरीफ ले गए। फिर 2 साल बाद कलकत्ता आ गए। आप

0: प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, और उसके बाद वो रामपुर में ही मुकीम हैं और अपने बेपना शागिर्द उन्होंने पैदा कर दिए हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर शरीफ अहमद कुरैशी साहब की, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका नाम जो है, उन्होंने बेपना खिदमात अंजाम दी हैं और उनके तो बहुत से किस्से हैं। अगर हम उनसे कोई भी बात पूछा करते थे तो बहुत ही प्यार से और बहुत अच्छे अंदाज में हमें बताया करते थे मारिया। तो अब जैसे आपने जिक्र किया था रामपुर के सूफियाए इकराम का, तो यहाँ पर सूफियाए इकराम बेपना रहे हैं और उनके जो उनकी जो बेपना खिदमात हैं वो रही हैं, और उनके आज भी जो मज़ारात हैं वो मौजूद हैं रामपुर में। इसी तरह से अगर हम सूफ़ी संतों की बात करें तो ये भी यहाँ पर बेपना रहे हैं और उनकी खिदमात बेपना रामपुर में रही है। तो रामपुर एक जो है वो तहजीब का शहर है और नवाबों का शहर रहा है, तो यहाँ पर प्यार मोहब्बत आपस में घुली मिली रही है। और शख्सियात की तो जिक्र करें तो और भी बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं कि नाम अभी लेना बाकी रह गए हैं उनके,
1: एक लंबी फहरिस्त है और इनमें से ये चंद नाम हैं जो हम आपके सामने पेश कर रहे थे। हाल ही में हमारे बीच से एक बहुत ही मशहूर और मकबूल शायर ताहिर फराज साहब रुखसत हुए, जो रामपुर का, जिन्होंने आलमी सतह पर नाम रोशन किया
0: जी,
1: है
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: वो भी एक अदब की खिदमात को बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे थे।
0: जी बिल्कुल, इसी तरह आपने जिक्र किया ताहिर फराज साहब का, इसी बीच में एक और नुकसान हुआ नफीस अहमद सिद्दीकी साहब का, जो हमारे आकाशवाणी रामपुर को बेपना उन्होंने फीचर दिए हैं, स्क्रिप्ट दिए हैं और बहुत सी तकरीर उनकी मौजूद हैं यहाँ पे आर्काइव में, जो एक सजो कर रखी गई हैं, और उनकी जो उनके जो फीचर थे उनकी उस पर बहुत सारे ड्रामे बने, बहुत सारे फीचर बने, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने तकरीरें दी हैं और बहुत अच्छे अल्फाजों में अपनी बात कहते थे नफीस अहमद सिद्दीकी साहब। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन जो यकीन आया है उसे यकीनन बिल्कुल इस दुनिया से जाना भी है और आने जाने का यूं ही सिलसिला ये चलता रहेगा, और जो चले गए हैं उनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं और जो बाकी रह गए हैं उनके लिए दुआए सेहत की दुआ करते हैं और अल्लाह ताला उनको रखे, जो भी हमारे यहाँ के जो अदबी शख्सियात हैं उनको इस दुनिया में कायम व दायम रखे और सेहत व आफियत के साथ रखे।
1: ये सिर्फ चंद नाम हैं कि इस वक्त जो जहर में दाखिल हुए हैं, अगर इनका तफसील से जिक्र करें तो हमें घंटों का वक्त दरकार है, और क्योंकि सामीन आज के उर्दू प्रोग्राम का वक्त हमें इजाज़त लेने का इशारा कर रहा है, तो इस सिलसिले को यहीं ख़त्म करते हुए मैं आपकी मेज़बान मारिया खुशनू
0: और फरीदुल्लाह खान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आदाब।
2: अभ्यास समाप्त फरमा रहे थे उर्दू प्रोग्राम, ये प्रोग्राम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से नष्ट किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं, सवेरे के 10:10 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

श्रोताओं, आपके अनुरोध पर कार्यक्रम में आप सभी को अखिलेश सक्सेना का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म काजल से, और इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। बीज ने मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान। दौलतबाग मुरादाबाद से जाहर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी और साइमा नदीम। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहाँ। गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बॉबी खान, शमा खान, मिक्की खान, बुशरा खान और आसिम खान। जिला अस्पताल के पास रामपुर से गजन खान, शमा परवीन, शमशद अली अजम, गुलाब शाह, शहनाज, बाबू अंसारी, रजिया गफ्फार और हबीब अहमद इदरीसी। मौला हलवाइन शिरकोट बिजनौर से मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर। मिलक भोजपुर आशा मुरादाबाद से रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, शहजाद हुसैन, शहनाज भी और आसिया भी।

मीरगंज से कल्लू मिस्त्री, जमनीमौला इस्लामनगर से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान और इंशा खान, पुराना शहर बरेली से अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, गिब्बीद राम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोई और स्वाति मौर्य, महाराष्ट्र हिंगोली से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म काजल का ये गीत।

अगला गीत सुनिए, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। फिल्म है मेरे हमसफर, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत को पसंद किया आप सभी ने। कोटवर नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित और हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। परिमल काजगंज से आवाद खान, नवील खान, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन खान और जमीर खान। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान और नावेद खान। सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी। भटिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विर्क, जैतेक विर्क और मीका विर्क। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान और माहिरा नूर।

पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी और सईद मुख्तार अंसारी, साथ में है असद अंसारी। राजदारा रोड मीठाकुंवर रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक, रवि, अर्पित, अभय, रिया और आरुष रस्तोगी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शिवचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। मोरीगेट दिल्ली से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म मेरे हम सफर का ये गीत।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश को ही फिल्म हरियाली और रास्ता ने गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। लदावली मुरादाबाद से अजीत कसाना माया देवी ऋतिक और आदित्य कसाना। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़ दयानंद गायकवाड़ ओमकार और साई गायकवाड़। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला नसीम बेगम आयशा खान हदिया खान असमा सालिया शुएब खान साइमा खान मुस्तावा खान अफिया खान रऊफ और शहीद। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। ग्राम मुड़ेला पोस्ट लपरी जौनपुर से कुमारी चंदा चांदनी कुमारी आकाश कुमार और कन्हैयालाल साथ में रीता देवी। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार अंजुलता आदित्य और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार रोशन वंशीलाल रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि देवी दिशा और लवी श्रीवास्तव। ग्राम लोहारी खंडवा मध्य प्रदेश से राजेश कुमार धनजे राहुल कुमार धनजे विशाल शीला और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद रानी महिमा और नीतू वैद। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भत्ता नीलम नितिन पलक कर्ण गीतू निहारिका हार्दिक और वंश भत्ता। महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन मिथिलेश तारणी सूरज ज्योति रियांश और गुड़िया ठाकुर। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल राजदीप राजेश राशि राजेश और शीतल राजेश। वैष्णव कॉलोनी सनावस से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अल्तमश खत्री रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। ये पत्र हमारे पास आया है जतुका किशनपुर से आलम दिलकश शवाना नाज रिजवान राही इमरान राजा आलम शेख शवाना आलम चांदनी नास का। सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर मोहम्मद वकील राही फिरोज आलम और नाज प्रवीण। बस्तौर मुरादाबाद से अतर सिंह सैनी मुन्नी पवित्रा अजय आंचल आकांक्षा आकाश विक्की दक्ष छवि रुद्र आयुषी हमानी सिंह हीरावती देवी। ये पत्र हमारे पास आया खुर्जा से तिलकराज अरोड़ा प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा का। कछवा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी मोहम्मद फरहान इदरीसी। अफजलपुर पट्टी तहसील सदर रामपुर से राहुल गौतम दिलीप सिंह विशाल चमनलाल रूमा मंजू प्रियंका शीतल पूजा कविता और अंशु गौतम। लोनी से रजा अहमद आरिश हुसैन ईशान हुसैन मरियम और बुशरा। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर पीलीभीत से विमल वर्मा विनय वर्मा उनके परिवार के लोग। पंडित निगला बाईपास मुरादाबाद से डॉक्टर अख्तर हुसैन बहारुन्निसा असलम हुसैन और डॉक्टर महमूद हसन। बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली। तो आइए सुनते हैं आप सभी के पसंद पर कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म हरियाली और रास्ता से।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
0: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
0: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
0: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।

0: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
1: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
0: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओं, मारियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
0: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
1: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
0: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
1: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा।
0: जी,
1: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा।
0: जी
1: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
0: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
1: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है।
0: जी
1: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया।
0: जी,
1: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है।
0: जी,
1: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
0: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया, आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
1: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें।
0: जी,
1: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है।
0: जी, समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं। सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहाँ अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँच पाता है।
1: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहाँ समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुँचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहाँ पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
0: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
1: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
1: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
1: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत

0: में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब यह अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: হেমরচিত্ত পুণ্যতীর্থ জাগরে ধীরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन कीर्तन कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सॉनेट शैली में लिखे गए हैं। सॉनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल भंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांको की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
4: रविंद्रनाथ
2: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना, सुबह से पढ़ रहा हूं मैं। तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजादपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला, आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश, तोमार बाताश, आमार प्राणी बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। April 13, 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य

0: और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
1: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
2: आमादेर शांति निकेतन।
1: सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
3: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
3: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
3: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
3: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून,

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग,
3: उमंग। श्रोताओ, अभी आप ये प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजे हैं। ये समय होता है कार्यक्रम धरोहर का। आज धरोहर के अंतर्गत आपको सुनवाते हैं धारावाहिक दक्षिणी कामरूप की गाथा का 7वां भाग।

प्रस्तुत है आकाशवाणी के लिए डॉट स्पॉट प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध असमी लेखिका इंदिरा गोस्वामी के उपन्यास पर आधारित रेडियो धारावाहिक दक्षिणी कामरूप की गाथा। रूपांतरकार हैं सुधांशु गुप्ता और राजीव गुप्ता। निर्देशक हैं कैलाश भूटानी।

इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित दक्षिणी कामरूप की गाथा एक अनूठी और असाधारण अनुभव यात्रा है। तीन विधवाओं के अभिशप्त जीवन के इर्द गिर्द घूमती इस अनुभव यात्रा में 19वीं शताब्दी के आरंभिक काल से लेकर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाने तक का परिवेश दर्शाया गया है। अमरंगा सत्र का भावी गोसाई युवा इंद्रनाथ इन तीनों विधवाओं का एकमात्र सहारा है। इन विधवाओं में एक उसकी छोटी बहन है, दूसरी उसकी बुआ और तीसरी उसकी चाची है। धारावाहिक में एक ओर जहां इन युवा विधवाओं की वेदनाओं को दिखाया गया है, वहीं सत्र के अधिकारियों के विलासपूर्ण जीवन और तड़क भड़क वाले जीवन के पतन को भी चित्रित किया गया है। असमी परिवेश, मार्मिक संवाद और दिलचस्प घटनाक्रम धारावाहिक को जीवंतता प्रदान करता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है दक्षिणी कामरूप की गाथा की 7वीं कड़ी।

0: कुची से पांडुलिपि ला रही हो, क्या मैं तुम्हारे पीछे आकर तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता है?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि मुझे तो आपकी साइकिल पर बैठकर पांडुलिपि लानी चाहिए थी।
0: अरे नहीं नहीं, तुम्हारे लिए ये बैलगाड़ी ही सही है।
1: अरे अरे देखो मार्क, संभल कर आना। मेरी सहेली बता रही थी कि ये वही रास्ता है जहाँ पहले से जगन्नाथ हाथी का आतंक है। अरे अरे जरा संभल कर।
0: अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सतर्क भी, तुम चिंता मत करो।
1: अच्छा ठीक है। मार्क, वो खंडहर देख रहे हो? यही एक धनी महाराज ने अपना घर बनवाया था।
0: अरे देख रहा हूँ खंडहर, देखने में बहुत मनमोहक लग रहा है। अरे तुम गाड़ी रोक कर नीचे क्यों नहीं उतरती?
1: ओ मार्क, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? एक कोचवान
2: जी,
1: जरा गाड़ी तो रोको।
2: जी
0: कोचवान
2: जी,
0: तुम यही गाड़ी लेकर रुको, हम जरा इस खंडर में घूम कर आते हैं। आओ गिरीबाल।
2: गोसाइन, मेरी आपसे विनती है कि आप वहाँ न जाएं। आपको तो पता ही है पागल हाथी कभी भी आ सकता है।
1: तुम उसकी चिंता ना करो, तुम यही रुको।
2: जी गोसाइन।
1: चले मार्क, चलो इन खंडरों में जाकर देखे तो सही, ये कैसे लगते हैं।
0: अरे तुम तो कविता कहने लगी।
1: बस ऐसे ही।
0: अच्छा हो चलो।

0: आओ गिरिबाला, यहां बैठे।
1: हाँ ये ठीक रहेगा।
0: यहां कितना अच्छा लग रहा है ना।
1: तुम हमेशा यहां आने से बचते रहे। मैं तो तुम्हें बहुत पहले यहां लाना चाहती थी
0: गिरिबाला। तुम्हें मालूम है गिरिबाला, तुम कितनी सुंदर हो। बाला, इस खुली जगह पर जहां चारों ओर प्रकृति का विस्तार है, तुम इसमें बिल्कुल देवी लगती हो बाला।
1: मार्क, मैं तुम्हारे दिल की गहराइयों को छू नहीं सकती, लेकिन अगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं तो
0: क्या? गिरिबाला, ये क्या कह रही हो तुम?
1: मार्क,
0: देखो गिरिबाला, मेरा मकसद ये नहीं है। मैं कुछ और काम करने के लिए यहां आया हूं।
1: मार्क, क्या तुम मुझे अपना नहीं सकते?
0: तुम ये क्या कह रही हो गिरिबाला? तुम्हें मालूम है कि तुम?
1: हाँ, मुझे मालूम है कि मैं क्या कह रही हूं।
0: नहीं गिरिबाला, ये सब ठीक नहीं है।
1: क्या ठीक है और क्या गलत? तुम तो जानते हो मार्क, मेरा पति उस अफीम बेचने वाली दुष्ट महिला के चक्कर में पड़ गया था। उसके साथ वो रंगरलियां मनाता था। अब तुम ही बताओ कि जो आदमी ये सब करता हो, तो मैं उसके खड़ाओं पर कैसे पुष्प चढ़ा सकती हूँ? मुझे लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं प्रेत बन जाऊंगी।
0: नहीं गिरिबाला, ऐसा नहीं बोलते। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा।
1: मार्क, मार्क, मैं ऐसा जीवन जीना नहीं चाहती। बताओ मार्क, मैं क्या ऐसे ही घुट घुट का जीवन गुजार दूंगी?
0: गिरिबाला,
1: क्या मैं कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकूंगी? कभी नहीं।
0: गिरिबाला, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। गिरिबाला, मैं तुम्हें सांत्वना देना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ।
2: मालकिन, जल्दी कीजिए। कुछ लोगों का कहना है कि वो पागल हाथी यहीं आ रहा है और उसने एक आदमी को मार भी दिया है, जिसका नाम जमालुद्दीन है। उसकी लाश पेड़ पर उल्टी लटकी हुई है।
1: क्या? जमालुद्दीन फंदेबाज मारा गया? सत्र का सबसे बड़ा फंदेबाज मारा गया है? ये कैसा अपशकुन है?
0: गिरिबाला, चलो जल्दी चलो, वरना वो हाथी आओ। ये जगन्नाथ हाथी मेरे सामने। गिरिबाला,
1: आ गए जगन्नाथ। लो लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मैंने इस साहेब को अपनी बाहों में लिया है, इसलिए मुझे मार डालो। तुम्हारे ऐसा करने से मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर नदी पार जाती थी, तुम्हारे शरीर की झोंके निकालती थी। मैंने ही महावत के दिए धानों को तुम्हारे शरीर पर से सहलाया था और तुम्हारी पीड़ा को कम किया था। मार दो जगन्नाथ, मार दो मुझे। मैं वही पापिन हूँ जिसने मांस खाया था, जो अपने पति को लील गई। और मुझे मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो।
0: गिरिबाला, गिरिबाला, गिरिबाला, ये तो बेहोश हो गए। ये तो बेहोश हो गई। गिरिबाला उठो, गिरिबाला उठो। अरे गिरिबाला उठो, उठो गिरिबाला उठो। ए गिरिबाला, गिरिबाला।
3: कितनी बेदर्दी से मारा है बेचारे जमालुद्दीन को। लाश पेड़ पर से उतरती तक नहीं है।
4: इंद्रनाथ बाबू, कहते हैं हाथी की स्मृति बहुत ही प्रबल होती है।
3: क्या मतलब?
4: मतलब है महाराज, जगन्नाथ जब बच्चा था तो जमालुद्दीन ने इसको पकड़ने के लिए इसकी माँ को मारा था।
3: क्या?
4: बस वही स्मृति इस जगन्नाथ के मस्तिष्क में रही होगी। ये सारी घटना इसके सामने घटी थी और...
3: अच्छा ठीक है ठीक है, अब जो हो चुका है उसे भूल जाओ और इस लाश को उठाकर इसके घर ले चलो। अरे क्या हुआ, लाश को उठाने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते हो?
4: क्या बात करते हैं इंद्र बाबू, हम इसकी लाश को कैसे उठा सकते हैं?
3: देखो इन सब बेकार के चक्करों में मत पड़ो तुम लोग, जो मैं तुमसे कहता हूं वही करो। बड़े गोसाइया ने मेरे पिता ने जमालुद्दीन को इस काम के लिए भेजा था, इसलिए इसके पूरे घर तक की जिम्मेवारी हमारी है, समझे?
4: तो मालिक, इसका भी उपाय मेरे पास है, आप भोला गांव से कुछ लोगों को बुला लीजिए।
3: क्यों, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते? ठीक है, अगर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते तो मैं खुद इस काम को करूंगा।
5: मेरे भाई जान, तुम कहां चले गए? तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कैसे तुमने मेरी जान बचाई थी। जब मैंने जगन्नाथ को पकड़ा था तुम्हारे हाथ में आधे मन का जूट का फंदा था, जैसे ही वो डालने के लिए हमने तेजी पड़ती थी तभी मेरे हाथ से वो फंदा छूट गया था और तुम उस जंगली हथनी के पाँव के पास जा गिरे थे। मैंने उस दिन कितनी अफीम कारक की थी और फिर तुमने मुझे अपनी चालाकी में बचाया था। सत्र में हम ऐसा कौन सा फंदेबाज बचा है? अरे फंदेबाज ही क्यों, तुम तो इन सब का इलाज भी किया करते थे, तुमसे तो अंग्रेज लोग भी सलाह लिया करते थे। पता नहीं हाथियों की कितनी बीमारियों का इलाज तुम जानते थे, और कैसे देखेगा इन सब हाथियों को मेरा भाई।
3: बस कल्टू महावत, बस करो, जो होना था वो हो चुका, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला।
4: हाँ कल्टू, हमें मालूम है कि तुम्हारा उससे बहुत लगाव था, लेकिन अब तुम्हें संयम रखना ही पड़ेगा।
3: बस कल्टू, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देवधर, मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा,

0: तुम लोग जमालुद्दीन की लाश को उठा रहे हो या नहीं? अगर उठा रहे हो तो ठीक है, वरना आप खुद ही मैं इस काम को करूं।
1: नहीं नहीं, ऐसा ना करें मालिक। हमारे पास एक उपाय है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हम लोग बांस से चौखट नुमा अर्थी तैयार कर देते हैं और पास के गांव से कुछ लोगों को लेकर आएंगे और इसको उठवा देंगे। क्यों, ठीक है ना?
0: ठीक है, अब इस काम की शुरुआत मुझे ही करनी पड़ेगी।
2: मालिक उठा रहे हैं।

हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है? या तूने गोसाई परिवार की प्रतिष्ठा का अंत इसी तरह लिखा हुआ है? अब मेरे प्यारे जगन्नाथ हाथी का क्या होगा? इसने एक आदमी को भी मार दिया है। क्या गुवाहाटी का डिप्टी कमिश्नर जल्दी ही यह वारंट जारी करेगा कि जगन्नाथ को मार दिया जाए? उसकी उसकी लाश को गोसाई परिवार कैसे देख पाएगा? जब उसके दांत काटे जाएंगे, क्या मैं उस पीड़ा को सह पाऊंगा? मेरा प्यारा हाथी, जो हमारे परिवार का हिस्सा था, उसकी लाश अपनी निगाहों के सामने कैसे सह पाऊंगा मैं उस पीड़ा को? जगन्नाथ।

0: बिजन बात कहाँ है? अरे तुझे कुछ पता भी है कि नहीं? सारे गांव में क्या बवाल फैला हुआ है? अरे तुझे कुछ मालूम भी है?
1: अरे क्या है, काहे को इतना हल्ला मचा रही है?
0: अरे कुछ इस घर से बाहर की भी तो खबर ले लिया कर, क्या पूरा जीवन इसी घर में गुजार देने का इरादा है?
1: अरे क्या है, तूने तो आसमान सिर पर उठा लिया, क्या दो मिनट का संयम भी नहीं है तुझे? अब बताना क्या बात है?
2: पहले तू ये बता कि अंदर जीजा जी तो नहीं है, अंदर है कि नहीं वो?
1: अरे नहीं, वो अंदर नहीं है, थोड़ा बाहर की तरफ गए हैं। और ये तो बता, तू आज कैसे आ गई?
2: अरे बहन, बहुत दिन हो गए तुझसे मिले हुए, मैंने कहा कि चलो आज तुझसे ही मिला हूँ।
1: अच्छा बता, तेरे घर के हाल तो ठीक ठाक है ना?
2: हाँ हाँ बहन, ईश्वर की कृपा है, अब और क्या कहे। वैसे बहुत डरते डरते आई हूँ यहाँ तक।
1: ए? क्यों, ऐसा क्या हुआ?
2: अरे तुझे नहीं मालूम, गोसाई परिवार के जगन्नाथ हाथी ने जमालुद्दीन फंदेबाज को जहां से मार दिया है। हाँ, और पूरा सत्र इस समय दहशत में है, तुझे तो कुछ भी नहीं पता?
1: ना ना, हाथी का तो पता था, लेकिन एक आदमी को जान से मार दिया।
2: हाँ,
1: ये तो बहुत बुरा हुआ।
2: और सुन, सुना है शंभु अमीन गोसाई की मारा पीटा वाली जमीन पर गए थे, उधर कोई फैसला नहीं हो सका, क्रांतिकारियों ने जमीन छोड़ने से इनकार कर दिया है।
1: अच्छा,
2: हाँ
1: ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी।
2: अरे तुझे घर से फुर्सत मिले तब तुझे कुछ पता चले।
1: हाँ बात तो तेरी ठीक है। बहन एक बात कहूँ, अब गोसाई परिवार का भविष्य मुझे कुछ धुंधला ही नजर आता है।
2: हाँ, और गिरीबाला की तुम्हें कुछ खबर है कि नहीं?
1: गिरीबाला?
2: हाँ।
1: अरे बाप रे बाप, उसका तो बस अब ईश्वरी मालिक है। उसने तो वो काम कर दिया जो शायद ही किसी स्त्री जाति ने किया हो।
2: ऐसा क्या किया उसने?
1: तुझे नहीं पता
2: क्या?
1: अरे विधवा होकर उसने बकरी का मांस खाया।
2: क्या?
1: हाँ।
2: अरे ये तो उसने बहुत ही बुरा काम किया।
1: और क्या?
2: अरे मैंने तो सुना है कि मार्क के साथ आजकल वो बहुत घूम रही है।
1: अच्छा,
2: हाँ
1: तो ये बात तुम्हारे गांव तक भी पहुंच गई।
2: और क्या?
1: अब सारी बातें खुली गई हैं तो फिर मार्क के साथ आजकल जो खुल्लम खुल्ला रास हो रहा है ना, वो तो बताने लायक भी नहीं है।
2: हाँ बहन, सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही।

0: है। मुझे तो ये भी पता चला है कि वो खंडरों के बीच जाकर मिलते हैं। हाँ, बैलगाड़ी का कोचवान बता रहा था, जो पागल हाथी आया तो गिरिबाला मार्ग को बचाने के लिए खुद हाथी के आगे आ गई थी। लेकिन जगन्नाथ को भी मैं वफादारी कहूंगी कि उसने पागलपन में भी अपनी मालकिन गिरिबाला को कुछ नहीं कहा, चुपचाप जंगल की ओर चला गया।
1: हाँ, अच्छा सुन, ये भी सुना है कि फिर गिरिबाला बेहोशी का नाटक करके मार्ग के निकट आने का बहाना कर रही थी।
0: हो सकता है बहन वो वास्तव में डर के बेहोश हो गई हो।
1: अरे, इतनी डरने वाली नहीं है ये गिरिबाला। हाँ, अगर इतना ही डर होता ना तो ये सब कारनामे ना करती जिससे गोसाई परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती।
0: अरे, अब गोसाई परिवार की प्रतिष्ठा रही कब? जब मैंने पहली बार सुना कि गोसाइन के आभूषण दूसरी गोसाइन के घर से चोरी हो गए हैं, तो मैंने तो अपने कान बंद कर लिए। और लोग तो महीधर पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि।
1: अरे नहीं बहन, पूरा शक महीधर पर ही जाता है। हाँ मेरी मान, ये काम कोई भी गोसाई नहीं कर सकती। हाँ
0: अरे, जब खाने को लाले पड़ने लगते हैं ना, तो प्रतिष्ठा थरी की थरी रह जाती है। अब हम लोग तो कैसे भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन ये गोसाई परिवार, तुम्हें शायद पता नहीं, छोटी गोसाई की आर्थिक दशा कुछ अच्छी नहीं है। अब यूं समझो कि बस किसी तरह अपने को बचाए हुए हैं वो। हाँ, ये तो बस महीधर ही है कि जिसने अभी तक छोटी गोसाई को बचा रखा है।
1: अब कुछ भी हो बहन, हम तो ईश्वर से गोसाई परिवार के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। ईश्वर ऐसे ही इनकी प्रतिष्ठा बनाए रखे।
2: अरे अरे, ये देखते हो रानी चंपा, ये शोर कैसा है?
0: हाँ,
2: मुझे तो हाथी भगाने वालों का शोर लगता है ये।
0: मैं

0: दोस्तों मेरी बात सुनिए, मैं आप लोगों को यहाँ कुछ बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों मेरे किसान भाइयों, आप इतने वर्षों से जमीन पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जमीन तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है।
1: हमारा इस पर अधिकार कैसे हो सकता है? जमीन का पट्टा हमारे पास नहीं है और ना ये पट्टा हमारे नाम पर है।
0: दोस्तों आजादी के बाद बहुत सारे कानूनों में परिवर्तन आ गया है, आज तुम लोग चाहो तो मारा भीटा की इस जमीन को अपना सकते हो।
2: वो कैसे?
0: देखो भाइयों, जमीन अगर पानी में डूबी हुई थी तो क्या हुआ? अगर गोसाई ने उसका टैक्स दिया भी है तो उसने कोई बड़ी बात नहीं की। गोसाई को तो जमीन रखने के लिए ये टैक्स देना ही था। भाई मान लो अगर जमीन पानी में डूबी ही रहती तो क्या होता? क्या तुम उसे लेते नहीं? क्या गोसाई उस पर खेती कर पाते?
3: नहीं, वो तो नहीं कर पाते।
0: वो तो यहाँ फटकते भी नहीं। और तुम लोग यहाँ ऐसे ही जुताई करते रहते हो और अपने शरीर को तोड़ते रहते हो।
4: ये तो ठीक है।
0: मैं पूछता हूँ, आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा?
5: ये सोचने
0: बोलिए, कब तक चलता रहेगा ये सब? क्या तुमने कभी सोचा है? हमारा देश अब आजाद हो चुका है, कोई भी गोसाई किसी पर कोई अधिकार नहीं चला सकता।
6: लेकिन बेटा, गोसाई परिवार ने तो कभी हमारे ऊपर ऐसा जुल्म भी नहीं किया। बड़े गोसाई अपने हाथी पर बैठकर बड़े अच्छे तरीके से आते थे और हमें आशीर्वाद देकर चले जाते थे। हमारे ऊपर उन्होंने कभी सख्ती नहीं की।
0: यही तो बात है। अरे सख्ती अगर वो करते तो तुम लोग विरोधी हो जाते और जमीन पर काम नहीं करते, इससे तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होता ना।
2: लेकिन इससे फायदा भी तो हमें हुआ। हमें अपनी मेहनत के बदले मान और धन दोनों मिले।
0: अरे वाह मेरे भोले भाले भाइयों, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हें कितना ठगा गया है? मालूम है तुम्हें?
3: नहीं, ये तो नहीं पता।
0: नहीं।

0: मालूम,
1: नहीं मालूम,
0: क्योंकि तुम लोगों को उन्होंने मानसिक गुलाम बना लिया है, इसलिए उस सब से तुम उबर नहीं पा रहे हो।
2: तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, तुम ही कोई राय दो।
0: देखो भाइयों, गोसाई लोगों से अगर जमीन लेनी है तो उनके ऊपर वो शर्त लगा दो जिन्हें वो पूरा ही ना कर पाए।
3: भाई वो शर्त क्या हो सकती है, ये भी तो तुम बता दो।
4: बताओ भाई।
0: देखो, मैं तो तुमसे हमेशा से ही ये कहता आया हूँ कि गोसाई परिवार को यहाँ बुलाओ और उनसे कहो कि पहले इस जमीन पर हल चलाओ, तब तुम्हें यह जमीन दी जाएगी।
2: क्या गोसाई परिवार को हम लोग हल चलाने के लिए कहे?
0: क्यों भाइयों, हम उन्हें हल चलाने के लिए क्यों नहीं कह सकते? क्या उनमें कोई खास बात है?
5: अरे बाबूजी, कैसी बातें कर रहे हैं, क्या हम उनको ये सब कह सकते हैं? अरे वो तो यहाँ के मालिक हैं, उनके लिए ये सब करना बड़ा मुश्किल है।
0: देखो भाइयों, अगर जमीन पर उन्हें अपना आधिपत्य चाहिए तो उन्हें ये सब करना ही पड़ेगा।
4: अरे बाबूजी नहीं,
0: वरना
4: मुझे नहीं लगता किया गोसाइयों ने, क्या वो सब अब करेंगे?
5: बड़ी बात
0: है। ठीक है, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? वो जमीन पर हल जोतने आएंगे नहीं, तो इसलिए जमीन तुम्हारी।
3: लेकिन बाबूजी, क्या ये सब इतने आसानी से कह देना ठीक है? क्या इतने आराम से ये सब हो जाएगा?
0: अगर होगा नहीं तो करना पड़ेगा। जितना जमीन पर गोसाई का अधिकार है उतना ही तुम्हारा अधिकार है, तुम उससे अलग नहीं हो। देखो भाइयों, तानाशाही के जमाने अब चले गए।
1: अच्छा
0: मेरे भाई, अब जमाना है बराबरी का,
5: गोसाई से बराबरी का,
0: समझे तुम? इसी के चलते ये जमीन तुम्हारी है, तुम्हारी और किसी की नहीं।
2: अरे बाबूजी, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, हमारी तो समझ में नहीं आता कि हम क्या करें।
0: अरे भाइयों, यही बात तो मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाइयों, तुम अपनी अक्ल से भी सारी बातें सोचो।
4: क्या बात कर रहे हो?
0: गोसाई परिवार को भूल जाओ। गोसाई परिवार को भूल जाओ और उसी जमीन पर खूब धन उगाओ, काटो। जीवन में कोई किसी का गुलाम नहीं होगा, कोई किसी की चाकरी नहीं करेगा, सब बराबर के हिस्सेदार होंगे, सबकी जमीन होगी, कोई गोसाई बीच में नहीं होगा।
3: बाबूजी, क्या ये हमारी अपनी जमीन होगी? हम इस धरती पर अपने बैलों को जोत सकेंगे?
0: क्यों नहीं हो सकता? भाइयों, तुमने इतने सालों तक इस जमीन पर अपना खून पसीना बहाया है, इस जमीन का सीना फाड़ कर इस पर अनाज उगाया है। भाइयों, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं होता है कि किसान अपना पसीना बहाए और उसे उसके हिस्से का फल ही ना मिले।
6: सुना बाबूजी, आपने तो हमारे अंदर एक जोश भर दिया है। क्या इस गांव के सभी लोग आपके साथ हो जाएंगे बाबूजी?
0: अरे तुम औरों की बात छोड़ो, केवल अपने बारे में बताओ कि क्या तुम हमारे साथ हो कि नहीं।
7: बाबूजी, जब आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमारा भी फर्ज बन जाता है कि हम आपका पूरा साथ दें।
0: ये हुई ना बात। देखो भाइयों, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो केवल तुम्हारे लिए है, और अगर तुम ही हमारा साथ नहीं दोगे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
3: आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए बाबूजी, हम आपके साथ हैं और पूरी तरह से हम आपका साथ देंगे।
4: हम आपके साथ हैं।
0: तो फिर ठीक है, चलो शुरू करो उस जमीन पर हल चलाना।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लिए डॉट स्पॉट प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित धारावाहिक दक्षिणी कामरूप की गाथा की 7वीं कड़ी। मूल लेखिका इंदिरा गोस्वामी, रूपांतरकार सुधांशु गुप्ता और राजीव गुप्ता, निर्देशक कैलाश भूटानी, संगीत दिया है टिन्नू ने, ध्वनि मुद्रण राजेंद्र नाथ। भाग लेने वाले कलाकार हैं सुचित्रा गुप्ता, हर्ष बाला, कुमकुम जैन, श्याम अरोड़ा, कीमती आनंद, बीएल टंडन, कमल साथी, एस के बत्रा, संदीप शर्मा और बाबला कोचर। तो अब आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे दक्षिणी कामरूप की गाथा की अगली कड़ी में।
1: दक्षिणी कामरूप की गाथा, अभी आप इस धारावाहिक की 7वीं कड़ी सुन रहे थे। कार्यक्रम धरोहर अब संपन्न हुआ।

मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम मन भवन।

आवाज थी अदनान सामी की और गीत था फिल्म मुस्कान का। मन भवन में आज का शीर्षक है याद। इसी शीर्षक से अमित कुमार और अलका याग्निक का गाया एक गीत सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म नरसिम्हा से।

मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक का गाया फिल्म इज्जतदार का यह गीत अभी आपने सुना। मनभावन कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित हो रहा है और आप सुन रहे हैं एक ही शीर्षक के अंतर्गत याद शीर्षक से कुछ फिल्मी गीत। यह अगला गीत नितिन मुकेश की आवाज में फिल्म खोज।

फिल्म डिस्को डांसर में अभी आप बॉबी लहरी को सुन रहे थे। मन भवन में आज का शीर्षक था याद। कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 वैशाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज को कोलकाता।
1: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन TARA हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने TARA हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास बताया। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तोलाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने

0: कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 15 मार्च के बाद से देश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। महानिदेशालय ने बताया कि परीक्षण किट की कमी से संकट और गहरा गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 77,418 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:05 हुए हैं। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचना है। पुलिस अधीक्षक रामपुर हमें सूचित करते हैं कि अरमान शाह पुत्र उस्मान शाह निवासी ग्राम भंवर का थाना केमरी जनपद रामपुर विगत 24 अप्रैल 2026 से लापता है। इनकी आयु 15 वर्ष है। कद करीब 5 फीट, शरीर इकहरा रंग गेहुआ है। इनके संबंध में यदि किसी को कोई जानकारी हो अथवा मिले तो कृपया उप निरीक्षक थाना केमरी रामपुर को सूचित करने का कष्ट करें। गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना। महेश पुत्र केदारी छपरा पोस्ट धनारी संभल विगत कुछ दिनों से लापता है। इनका कद 5 फुट 2 इंच, रंग गेहुआ है, सामान्य मजबूत जिस्म है। इनके संबंध में किसी को यदि कोई जानकारी मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी थाना धनारी जनपद संभल, या फिर सूचित करने के लिए पता है श्री केदारी पुत्र श्री मक्खन सिंह निवासी छपरा थाना धनारी जिला संभल। फोन नंबर है 9457184996। एक बार फिर सुन लीजिए 9457184996। खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं समाप्त हुई।

राष्ट्र, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ, मातृभाषा, मातृभूमि हमको प्राणों से भी प्यारी है। शहीद, सैनिक और संस्कृति पर हम सबको अभिमान है। तिरंगे के रंगों में हर एक रंग का मान है। तिरंगे की रक्षा में तन मन धन कुर्बान है। धर्म, जाति और नाम से पहले भारतीयता पहचान है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 12:10 हुए हैं। अगला कार्यक्रम है गीत आपके नाम।

श्रोताओं को असीम का नमस्कार। हाजिर हैं आपके पसंदीदा फिल्मी गीतों को लेकर। बताएं आपको कि कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाने के लिए हमारे इन श्रोताओं ने ईमेल भेजा है। कस्बा बराड़ा अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरु शब्द सिंह राहुल, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और इनके मम्मी पापा, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान छिपा और पूजा परिहार, शेख मूसा मोहसिन सनावत के हमारे ये श्रोता, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, ये ईमेल हमें भेजते हैं। हमारे ये श्रोता रहने वाले हैं शीशगढ़ बरेली के, इलियास इदरीसी, नाजरा इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम इदरीसी और असद बाबू, पंजसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी और असद अंसारी, गाड़गेनगर यवतमाल से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे, मरारा दरवाज़ा ईटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, रशीद वारसी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से हैं मुबीन अंसारी और इनके परिवार के सभी लोग, गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, प्रशांत, प्रियम थांडी, बेबी वामिका और वाणी थांडी, टोरोवाल, नवाशहर पंजाब से आपका ये ईमेल आया है, गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार का, राजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, रूमा खान, मदीहा खान, सुभान खान और फिरोज खान का ये ईमेल हमें मिला है, मुल्लापुर दारखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन, नूर महल

सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां, तलत जहां नाज फरत जहां रिफत जहां नुसरत जहां शाहीन नाजिया नूरी नाज और इनके परिवार की सभी बहनें, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत और चेतन भगत का ये ईमेल प्राप्त हुआ है। ये ईमेल आया है तेलंगाना निजामाबाद से, शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, छत्रपति शंभाजी नगर से राजेश सबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बीबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और जी एस रामगढ़िया, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रशिदा खुराना और केशु खुराना, शेरवानी स्कूल गंज डंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का भी ईमेल इसी गीत के लिए हमें प्राप्त हुआ है। आप हैं हमारे श्रोता, आपका ये ईमेल कुछ अस्पष्ट सा है, नाम साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ईमेल है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ू कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, खेल बाजार पानीपत के हमारे श्रोता हैं। शिवाजी चौक रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का, आप सबके अनुरोध पर ये गीत फांसी के बाद, यह फिल्म का नाम, गायिका है लता मंगेशकर।

गीत आपके नाम कार्यक्रम में ईमेल भेजे हैं एयरपोर्ट रोड बंद्रा नगर इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे और स्वाति प्रयाग चौधरी, रेशमा अंसारी निशा दिल्ली से, जालंधर से सोनाली नारंग जटुलिया, करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानुगुना गोपाल, माहेश्वरी प्रवालिका विष्णुवर्धन और विघ्नेश, आर्यन वर्मा, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और राजकुमार बोडाना, खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप, मास्टर अशोक आपका ये ईमेल एक और है, आपने सनावत से हमें ये ईमेल भेजा हुआ है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोटके, दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आमना परवीन और वली भाई अंसारी, सरगुजा मेनपाड़ से अजीता पॉल, प्रभा रानी, प्रियांशी शर्मा, छत्तीसगढ़ से मिश्री देवी साहू और इनके परिवार के सभी लोग, फरह खान, आशिया खान, सरोज खान उमरखेड़ से, जालंधर से संदीप जाटव, आशु सुरेश जाटव और इनके सभी साथी, जेल रोड जलालाबाद से मीना कौर, मन्नत नूर, खंडवा से संदीप कौर और दुर्गा कौर के साथ इनके परिवार के सभी लोग, वीरमगांव राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, सहारनपुर से एसके टूकर और इनके परिवार के सभी लोग, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम रायन, अब्दुल सलाम रायन, उमरखेड़ से भाई सिराज खान, शबाना बेगम और साथ में फरदीन खान, फिल्म सिटी मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी, संदीप जटुलिया जालंधर से ये फरमाइश आई है, ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से फरमाइश करने वाले हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता।

गौड़ भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से हैं। सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना ताई गुंडा ने, हीरामणि शिंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गुंडा ने, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, ग्राम दूल्हापुर मुरादाबाद से आपका ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है। खमरिया छत्तीसगढ़ से हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार डोम, संदीप जाटव, टुक टुक जाटव और प्रभा रानी जयपुरिया का ये ईमेल आया हुआ है। मुंबई से हैं अनु बड़जात्या, शमसुल खान और साथ में हैं अनुराज बेदारा। ईमेल भेजने का सिलसिला हमारे श्रोताओं की ओर से जारी है, लेकिन अपने श्रोताओं से एक आग्रह ये करेंगे कि अगर आपने एक बार ईमेल भेज दिया है और वो कार्यक्रम में शामिल हो चुका है तो कृपया थोड़ा विराम ले लें, अन्य श्रोताओं को भी मौका दें कार्यक्रम में हिस्सेदारी का। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। पसंद है आपकी लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार का गाया फिल्म प्यार झुकता नहीं का ये गाना।

आकाशवाणी रामपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम, और इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता शामिल हो रहे हैं ईमेल के जरिए अपनी फरमाइश जो उन्होंने भेजी है उसके माध्यम से। अगली फरमाइश आप सबकी है। इंदिरा बिहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा और डब्लू अंसारी, कबीर नगर वाराणसी से देवा गुड़िया और शंकर हगुड़िया, मेन बाजार कुंडलवाली महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, वंदना कुमार और बिट्टू कुमार, ग्राम महेशपुर खेम मुरादाबाद से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा, गांव पांडरकवाड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे, साथ में इनके परिवार के और लोग भी, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, ईशप्रीत शर्मा और हरिप्रीत कौर, पदमपुर श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहरा अरोरा, ममता अरोरा, कीर्ति और भूमिका अरोरा, रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से ये ईमेल आया है। जावेद अख्तर रही, शमसुल कमर रही, बेगम रुखसार, रकीबा, शाहीन, तुबा आफरीन और शमीम अख्तर अंसारी का, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। इसी गीत को सुनवाने के लिए ये ईमेल है। नबी हसन अब्बासी, सुहेल हसन और रशीद वारसी का, एटा से आपने हमें ये ईमेल भेजा हुआ है। जॉन डिकेस्टो, रोसी डिकेस्टो, पर्ल डिकेस्टो और विलिस डिकेस्टो हमारे श्रोता हैं जनकपुरी सहारनपुर के, और ये ईमेल है। दरदेही सरगांव छत्तीसगढ़ से लिख भेजा है चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार और क्रिस्टी पटवा ने, मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज और बेटी चाहत सादिया, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से आपका ये ईमेल प्राप्त हुआ है। प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठण से सुरेश यादव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल और सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष यादव, चंदन यादव, एकनाथ।

अंकिता जाधव और जाधव परिवार के सभी लोग हरहरपुर मटकली बरेली से, शाहरुख नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोहिन अंसारी, तस्लीम अंसारी और साथ में डीजे प्रधान, धुलापुर मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इसरार, साथ में नरगिस खातून, प्रमिला सिंह, हेमा, अंतरा सिंह, गांधीनगर दिल्ली से आपका ये ईमेल आया है। आप हैं अभिजीत गोहाणकर, रही सरिता गोहाणकर, प्रिंस एकांश गोहाणकर, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, बदलापुर मुंबई से प्रणीता सिद्धांत, अर्जुन गोहाणकर टुकटुक और नागपुर से वैशाली शैलेश गोहाणकर, सुमित गोहाणकर, ध्वनि गोहाणकर परी और इनके परिवार के सभी लोग, ग्राम बमना हमीरपुर बुंदेलखंड से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और मंदूरकर परिवार के सभी सदस्य, तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद यूसुफुद्दीन और इनके परिवार के लोग, अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा का ये ईमेल इस कार्यक्रम के लिए प्राप्त हुआ है। मोहल्ला चौकुंठी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य इस गीत को सुनना चाहते हैं। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल और विनोद पुरी ने इस गीत को सुनने के लिए ये पत्र भेजा है। करणवीर हाउस भुजो कैंचिया बठिंडा पंजाब से हैं। परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करोला मुरादाबाद से अयूब खान, निरम गुड़िया और शोएब खान। हमारे इन श्रोताओं का अनुरोध फिल्म दयावान के इस गीत के लिए है। स्वर पंकज उदास और अनुराधा पोटवाल के। आपकी पसंद, आपकी नजर।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाने के लिए ये ईमेल आए हैं। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, राजकोट से प्रभा रानी, डॉली, पूजा, राधिका, अजीता पासवान, रघुवीर नगर दिल्ली से जफर मुअज्जम शेख और फिरदौस शेख का ये ईमेल है। बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि और निखिल वर्मा, बठेनापाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मिराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, नरगोड़ा, छत्तीसगढ़ से फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और जी एस रामगढ़िया, गांव फरांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष, केशु, रिधान खुराना और रचिता खुराना, पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा, प्रथमेश, पांडुरंग कुंभार, कुंभार गली कोलगांव से हमारी यशोता अपनी फरमाइश के लिए अनुरोध कर रहे हैं, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, दुर्गा कॉलोनी हांसी से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ईमेल भेजते हैं। दुबिया निवादा गाजीपुर से ईमेल भेजने वाले श्रोता हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। गंज डुंडवारा से मास्टर फरहत शेख, श्राफ रोड राजकोट से प्रेमा रानी जाटव, डॉली और सुरेश टोकर, चमनपुरा मोरबी से प्रमिला जेटली, दीपक और आशु जेटली, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और साथ में अपार ढिंगिया, गणेशपुर गंज नरवारा से एम फारूक शेख, सरफराज शेख, गुलफराज और बेबी मुस्कान, सतीश अनेजा, विमला अनेजा, चंडीगढ़ सिटी से आपका ये ईमेल आया है। विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, चेतन नाहटा मेल भेजते हैं। बोरखेड़ा पितरमल, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली का भी ये ईमेल है। पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा,

आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मंडी, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और साथ में निवान शर्मा डुमरा बिहार से आसमा परवीन, दुखना रानी, सदा फारजू और वली भाई अंसारी, फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, संबलपुर कांकेर से आपका ये ईमेल भेजा गया है। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, फौजिया रोशनी, शहना काजल, असद भाई, फिरोजा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी, राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, ग्राम हांडीखेड़ा जिला सिरसा से, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना उमाराज, दिव्या भारती गुराया जालंधर से, संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर, रमेश चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित बेबी गर्वी और हिमाक्ष, सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर से, पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या प्रियंका और वीटी वाड़ोदे, जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता जी पुफाली जिला यवतमाल के हमारे श्रोता, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा शबस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी का भी ये ईमेल, और ये ईमेल है कपासेड़ा दिल्ली से फिरोज खान, अहमद मुंगा, इकबाल मुंगा और जालंधर से संदीप जाटव और इनके परिवार के लोगों का, रविंद्र मोहनदास और आशा देवी किशनगंज बिहार से, दीपक सैनी, प्रमिला और अनुश्री सैनी कुरुक्षेत्र से, महादेव पारा से मीरा, सिमरन और योगेश कुमार राजवाड़े, आमिर हुसैन, तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान और परिवार के लोग पटियाली रोड गंज डुंडवारा के हमारे श्रोता, जिला अमरोहा नई बस्ती पतही खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद शिफान, मोहम्मद यूसुफ, अनाबिया अलीशा, शकील सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सुनने वालों का जिन्होंने अपनी फरमाइश के लिए हमें ईमेल भेजे। अब हम पूरी कर रहे हैं आपकी फरमाइश जो है फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के इस गीत के लिए गायक कलाकार कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति।

लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा, गांव खारिया धाणी सिरसा हरियाणा से सतबीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजारनिया का ये ईमेल आया है। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया स्टेशन रोड जमशेदपुर से भेजते हैं अपना ये ईमेल। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा, पहलगांव सालार कश्मीर से पीरजादा मेराजुद्दीन, नजमुद्दीन, कैसरुद्दीन और इनके सभी साथी लोग, विनय मिश्रा, ललन मिश्रा, नूतन, अमन पराशर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित, नरहन एस्टेट समस्तीपुर बिहार से आपका ये ईमेल आया है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश हैं। बहुत सारे श्रोता और भी इस गीत के लिए ईमेल भेज रहे हैं। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति और पुरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कमल, अनस रेहान, आयशा सबीहा, रिजवान खान, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से मेले आया है। पंकज उदास अनुराधा पोडवाल की आवाज़ में गीत सुनना चाहते थे जिसे हम पहले सुनवा चुके हैं, उसकी फरमाइश हमें भेजी है। कोली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओंकार गायकवाड़ और साईं गायकवाड़ ने श्रोताओं को बताया कि आपका अनुरोध इसी कार्यक्रम में पहले ही पूरा किया जा चुका है। ईमेल भेजने का सिलसिला श्रोताओं की ओर से अभी जारी है। आप हैं कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वेदिका फूलमाली, अहमदपुर खैगांव खंडवा के आप हमारे श्रोता हैं। विजय महुबिया, कविता महुबिया, सोनू मोनू और पेंटर बाबू रामगंज खंडवा से, शिवापुरम कॉलोनी से कमला देवी महुबिया, अनय अनाया और ईशु बाबू, रिजवान खान छत्तीसगढ़ से अपना ये ईमेल भेजकर

साथ में इनके परिवार के लोग। वकर साहब, नाम आपने कुछ और भी ज़रूर लिखे होंगे, लेकिन इस वक्त आपके भेजे गए ईमेल में वो नाम हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो नाम कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। गांव जाखोद से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और पूजा खटक का ये ईमेल गांव जाखोद से आया है। राधे कुमार विद्यार्थी हैं और इनके साथ परिवार के और लोग भी इस ईमेल को भेज रहे हैं। कार्यक्रम में ये ईमेल इंदिरा बिहार नई दिल्ली से, बेबी अंसारी निशा और डब्लू अंसारी का, रघुनाथपुरा श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी, कौशल्या जोशी, प्रमिला जानी, सोनाली जोशी, चंद्रनगर कॉलोनी से, शिवकोटी खंडवा से द्वारिका बाई और राकेश बाई का भी ये ईमेल है। बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब पटना बिहार से वसीम अकरम, सालिया खातून और गुड़िया खातून, तहसील स्वार पंजाबी कॉलोनी रामपुर से त्रिलोकनाथ राठौर, राजय राठौर, विजय, विकास, आकाश, शिवांशी और प्रियंका राठौर का मेल है। गांव उगाला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और इनके परिवार के सभी लोग। मधुबनी बिहार से नवीन सिंह और साथ में ज्योति सिंह। अनारकली बाजार जगरांव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, काव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह, विनोदपुरी और जयपाल यादव। नरेंद्र कुमार डोम छत्तीसगढ़ रायपुर से आपका ये ईमेल है। ये हमारे श्रोता हैं शमसुल असलम अंसारी, शकील अंसारी, राज एस डी अंसारी, जेल रोड बक्सर से, लोहारा से राधिका जाधव और डॉली जाधव। आप सभी की पसंद पर ये गीत फिल्म पिया मिलन से।

कुछ ईमेल और हैं इसी गीत की फरमाइश पर। वर्ल्ड सिंह बुलडाणा से अमूल मानकर, शोभताई मानकर, श्लोक और दीपाली बुलडाणा इस्लामपुर से, सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, साधना और सुमेघ कुमार दामोदर, लतावली से अजीत कसाना, माया देवी और साथ में ऋतिक कसाना, देवेंद्र भटकर, सुलीला भटकर और अनिकेत भटकर, मानेवाड़ा रोड नागपुर से आपका ये ईमेल हमें दिखाई दे रहा है। और ये हैं बीड महाराज से बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा।

गीत आपके नाम। आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है अब समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्रा ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबुधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्रा ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबुधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने

0: परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर के बाद दिन में 1:15 पर ना तो कव्वाली के प्रोग्राम में कलाकार होंगे मोहम्मद अहमद और साथी। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम कुमकुम प्रसारित किया जाएगा 1:30 पर। आज सुनिएगा चर्चा, सुनना भी है जरूरी। राजनीति और महिलाएं, इस विषय पर नीलम गुप्ता के साथ शिखा दीक्षित की एक भेंटवार्ता भी बहनों को सुनवाई जाएगी। ब्यूटी टिप्स दिए जाएंगे और मनोरंजन के लिए गीत भी प्रसारित होंगे। सुनहरा दौर फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज सुनिएगा 2000 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। हमारी सायंकालीन सभा शाम 5 आरंभ होगी। आज शाम कार्यक्रम के साथ युवा श्रोता युवाणी सुनते हैं 5:15 पर। आज का आकर्षण है फेसबुक लाइव, आज की बात युवाओं के साथ, कुछ खास है आज और आज का सवाल। कृषि जगत कार्यक्रम शाम 6:20 पर प्रसारित किया जाएगा, जिसमें मिट्टी की जांच क्यों और कैसे इस विषय पर चर्चा के अलावा किसानों की समस्याएं और उनसे जुड़े समाधानों पर आधारित कार्यक्रम होगा कृषि शंका समाधान। लोकगीत प्रसारित किया जाएगा और कृषि संकेत का विषय रहेगा बर्मी कंपोस्ट खाद के लाभ। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में शाम 7 आप सुनेंगे GN गोस्वामी का बांसुरी वादन। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8 कलाकार होंगी रीता शर्मा, सुनिएगा इनके गाए हुए गीत और भजन। सुगम संगीत कार्यक्रम शाम 7:31 से 8 के बीच प्रसारित किया जाएगा और रात 8 का समय होगा व्हाट्सएप फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत गाता चल का। आज रात 9:30 पर हम आपको आकाशवाणी के 90 वर्षों के संबंध में एक विशेष रूपक सुनवाएंगे। ये आकाशवाणी है, आलेख डॉक्टर राहुल अवस्थी का और प्रस्तुति असीम सक्सेना की है। रात 10 ना तो कव्वाली के कार्यक्रम में कलाकार होंगे हसनैन नियाजी और साथी। राग रंग शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम रात्रि 10:30 पर होगा। आप सुनेंगे अवधेश कुमार गोस्वामी का गाया राग मधुमास सारंग। ये था विवरण आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का।

अपने श्रोताओं को एक बार फिर बता दें, आज रात्रि में 9:30 पर आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर एक विशेष रूपक ये आकाशवाणी है प्रसारित किया जाएगा। समय याद रखिएगा, रात्रि 9

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में इलाकाई खबरें आकाशवाणी लखनऊ से नशर होंगी।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता वालों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की लागत से 325 अवामी फलाही मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत की पॉलिसियों ने मगरबी उत्तर प्रदेश के चेहरे और तकदीर दोनों को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कीमों का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के समग्र विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है और बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बांटा है। वंचित को वरीयता मिली है, पिछड़ों को प्राथमिकता मिली है, हर वंचित के घर तक उसकी योजना पहुंचाने का कार्य किया है और उसका परिणाम आज हमारे सामने है।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से मर्दमशुमारी 2027 का आगाज किया। इसके साथ ही रियासत भर में खुद मर्दमशुमारी भी शुरू हो गई। शाम 6 बजे तक कल रियासत में 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी मर्दमशुमारी मुकम्मल की। मर्दमशुमारी के आगाज के मौके पर वजीर आला ने कहा कि ये महज आबादी की गिनती नहीं है बल्कि हमजहत जामे और मनसूबाबंद तरक्की की मजबूत बुनियाद है।
2: प्रदेश में 21 मई तक होने वाली स्वगणना के माध्यम से नागरिक स्वयं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके उपरांत फील्ड कार्य के अंतर्गत जनगणना कार्मिक घर घर जाकर सूचीकरण का कार्य करेंगे। जनगणना के पहले चरण में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी जो 22 जून तक चलेगी। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। इस बार जनगणना में जाति गणना को भी सम्मिलित किया गया है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन में डिजिटल तौर पर अपनी मालूमात दर्ज करके खुद गिनती के अमल में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने रियासत के शहरियों से अपील की कि वो मर्दमशुमारी के अहलकारों की तरफ से दरखास्त करदा मुकम्मल दुरुस्त और हकायक पर मबनी मालूमात फराहम करें।
3: जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियाँ, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्थानों के वितरण और शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा तय करने में मदद करेगी।
0: वजारत रेलवे ने ऐलान किया है कि ट्रेनों को एडवांस पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में तब्दील करने का अमल अगस्त में शुरू हो जाएगा। कल नई दिल्ली में एक जायजा मीटिंग में रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि 40 साल पुराने रिजर्वेशन सिस्टम से नए निजाम में तब्दीली के दौरान मुसाफिरों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। रिजर्वेशन का निजाम 1986 में शुरू किया गया था और गुज़िश्ता 40 वर्षों में इसमें कई तब्दीलियां आई हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2024 के आदाद और शुमार से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जरायम की शरह में उत्तर प्रदेश मुल्क में 18वें नंबर पर था। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कृष्णा ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में जदीद पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं और ज्यादा चौकस एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने में खवातीन के लिए वक्फ करदा हेल्प डेस्क, कमजोर तबकात को तेज रफ्तार इंसाफ फराहम करने वाली फास्ट ट्रैक अदालतें और मुनज्जम जराइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून की हुक्मरानी कायम की है। हुकूमत ने रियासत भर में नस्ब तमाम स्मार्ट मीटरों के पोस्टपेड मोड में

0: लाने के अहकाम जारी किए। वजीर तवानाई ए के शर्मा ने कहा कि तमाम स्मार्ट मीटर्स को फौरी असर से पोस्टपेड सिस्टम में तब्दील किया जा रहा है। अब सार्फिन की बिजली इस्तेमाल करने के बाद ही बिल वसूल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सार्फिन को बिल हर माह की 10 तारीख तक SMS और व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाएंगे। वजीर तवानाई ने कहा कि स्मार्ट मीटर और बिजली के बिलों से मुतालिक शिकायत के तस्फीये के लिए 15 मई से 30 जून तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सब डिविजनल ऑफिसर के दफ्तर में खसूसी कैंप और इमदादी मराकज कायम किए जाएंगे। रियासत में सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर उसके मसावी ओहदों पर बराह रास्त भर्ती के लिए 2025 के तहरीरी इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए हैं। इस भर्ती के अमल के लिए तकरीबन 15,75,760 उम्मीदवारों ने दरखास्त दी, जो कि 4,543 असामियों के लिए मुनक्किद की गई। इनमें से 12,333 उम्मीदवार अगले मरहले के लिए कामयाब करार पाए हैं। ये इम्तिहान 14 और 15 मार्च 2026 को मुनक्किद हुआ था। रिक्रूटमेंट बोर्ड के मुताबिक दस्तावेजात की तस्दीक और फिजिकल टेस्टिंग मई के तीसरे हफ्ते में की जाएगी। की वेबसाइट पर मुकम्मल तफसीलात दस्तयाब कराई गई हैं। आज 8 मई को रेडक्रॉस का आलमी दिन है। आलमी रेडक्रॉस का दिन हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद इंसानियत खिदमत और खैरात के जज्बे को फरोग देना है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए नातों कव्वाली के प्रोग्राम में मोहम्मद अहमद और साथियों को।

नात कव्वाली इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। कलाकार हैं मोहम्मद अहमद और साथी।

मोहम्मद अहमद और साथियों के कई इस नातिया कव्वाली के साथ ही नात कव्वाली का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शहरी महिलाओं का कार्यक्रम कुमकुम।

अक्सर वो रिश्ते टूट जाते हैं जिनमें बातें कम और गलतफहमियां ज़्यादा होती हैं। सिर्फ जुबान का साथ काफ़ी नहीं, सुनने वाली कान रूह की ज़रूरत होती है। शिकायतें कम हो जाएंगी अगर हम जज्बात सुनना सीख लें, उलझने सुलझ जाएंगी अगर हम खामोशियां पढ़ना सीख लें। नमस्कार सखियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम कुमकुम, और मैं हूं आपकी अपनी प्यारी सखी रजनी। और सखियों, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं ये प्यारा सा रिश्ता, जिसमें थोड़ी नोक झोंक व हंसना हंसाना और सुनना या सुनाना सुनाना। जी हाँ सखियों, आज हम बात करेंगे कि सुनना भी है ज़रूरी। सखियो, आज सुबह जब मैं घर से निकल रही थी तो रास्ते में एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से कुछ कह रहा था, और उसके पिता फ़ोन पर इतना बिजी थे कि उस बच्चे की आंखों में वो खालीपन देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि आज की दुनिया में हम बोल तो बहुत रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि हम में से कोई सुन भी नहीं रहा है। सखियो, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सबको अपनी बात कहनी है, सोशल मीडिया पर कमेंट्स हो या फिर घर में होने वाली बहस या फिर ऑफिस की मीटिंग। हमें लगता है कि अगर हम चुप रहे तो हम हार जाएंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बोलने से हम सिर्फ वो दोहराते हैं जो हमें पहले से पता है, पर सुनने से हमें वो पता चलता है जो सामने वाला महसूस कर रहा है। सखियों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जुबान तो अक्सर झूठ बोल दिया करती है, जुबान तो अक्सर झूठ बोल दिया करती है, तुम उसकी खामोशी सुनो जो सच बोलती है। आप जानते हैं कि रिश्तों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम समझने के लिए नहीं सुनते, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। जब कोई दोस्त आपको अपना दुख बताता है, हम उसे तुरंत सलाह देने लगते हैं कि अरे भाई, कभी कभी इंसान को सलाह नहीं, सिर्फ एक एहसास, कान चाहिए जो बिना जज किए उसे सुन सके। सखियों, कभी कभी अपने पार्टनर की अनकही बातों को भी सुनना चाहिए, और कभी तो अपने बड़ों या फिर कह लीजिए कि अपने बुज़ुर्गों की बातों या फिर उन किस्सों को याद करके सुनाएं, क्योंकि उन किस्सों में उनकी यादें और अकेलेपन का सुकून उसमें छुपा होता है। और सखियों, दूसरों को सुनने से पहले क्या आपने कभी खुद को सुना है? कभी आपने इस भाग दौड़ में, नोटिफिकेशन की आवाज़ में, क्या आपने अपने मन की उस धीमी आवाज़ को सुना है जो कह रही है, थोड़ा सा रुको और सांस लो, तुम थक रहे हो। सखियो, आज रात सोने से पहले

5 मिनट सब कुछ बंद कर दीजिए, ना मोबाइल हो और ना टीवी, सिर्फ अपनी धड़कन और अपनी सांसों को सुनिएगा। यकीन मानिए, आपको खुद से बेहतर दोस्त कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सखियों, अक्सर जब हमारा कोई अपना हमसे कुछ कहता है तो हमारा दिमाग तुरंत वो सारे जवाब ढूंढने लगता है। हम उसे सही या गलत साबित करने में लग जाते हैं, पर कभी कभी सामने वाला समाधान नहीं चाहता, वो सिर्फ यह चाहता है कि कोई उसकी बात को महसूस करे। और सखियों, रिश्ते तब नहीं टूटते जब बहस होती है, रिश्ते तब टूटते हैं जब लोग एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं। सुनने का मतलब सिर्फ शब्दों को पकड़ना नहीं, शब्दों के पीछे छुपे दर्द और खुशी को समझना है। कभी आप अपने माता पिता के पास बैठिए और उनसे कुछ बात करके देखिए, पर आपके माता पिता एक ही कहानी को शायद 10 बार सुनाएंगे और हम उस कहानी को सुन के चिढ़ जाते हैं ना, पर हमने कभी उन शब्दों के पीछे के अकेलेपन को सुना है। वो आपको अपनी कहानी नहीं सुना रहे हैं, वो अपना अस्तित्व आप में तलाश रहे हैं। और वो दोस्त जो अचानक चुप रहने लगा है, उसकी खामोशी में दबी चीख को सुनना सकते हैं। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे कीमती तोहफा जो आप किसी को दे सकते हैं वो है आपकी पूरी तवज्जो। साथियों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बुज़ुर्ग से पूछा गया कि बाबा, आपकी लंबी और खुशहाल शादी का राज क्या है? तभी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब मेरी पत्नी बोलती है तो मैं उसे सुनता हूँ, और जब वो चुप हो जाती है तो मैं उसकी चुप्पी को सुनता हूँ। सखियों, सुनना कमजोरी नहीं है, सुनने का मतलब यह है कि आप हार गए। सुनने का मतलब है कि आप सामने वाले को यह एहसास दिला रहे हैं कि तुम मेरे लिए कितने मायने रखते हो। सखियों, आज की इस मीमी वाली दुनिया में किसी को अपना वक्त सुनने की, अपने कान देना सबसे बड़ी प्रार्थना है। अपनों को थोड़ा और एक खुला दिल दीजिए, फिर साथ में मिलकर उनके साथ गुनगुनाइए प्यारा सा गीत अपने पार्टनर के साथ।

0: सखियों, किसी ने सच ही कहा है, जब जब हाथ में मसाल आई है महिलाओं के, अंधेरों ने भी हार मानी है, रास्ते बदल लिए हैं। आज जब हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं तो वह आंधी आबादी के बिना अधूरा है। राजनीति अब केवल सत्ता का खेल या पुरुषों का अखाड़ा नहीं है, बल्कि यह वह मंच बन चुका है जहां आज की महिलाएं अपनी अपनी आवाज़ व बुद्धिमत्ता और अपने नेतृत्व से बदलाव की नई इबादत लिख रही हैं। पंचायत की चौपाल से लेकर सांसद की दहलीज तक आज महिलाएं सिर्फ वोट बैंक नहीं हैं, बल्कि वे विजन हैं। वे उस नीति की शिल्पी हैं जो आने वाले कल का भारत तय करेंगी। तो आइए सुनते हैं भेंटवार्ता। हमारी मेहमान नीलम गुप्ता के साथ अब बातचीत कर रही हैं हमारी बहन शिखा दीक्षित। भेंटवार्ता का विषय है राजनीति और महिलाएं।
1: श्रोताओं, किसी वर्ग विशेष की बात हो या समाज की आम जनता को अपनी बात रखने या अपनी बात से सहमत किसी विचार को फॉलो करने की, तो समाज एक नेता का चयन करता है, वो चाहे पुरुष हो या महिला। पुरुष प्रधान समाज में भी भारतीय संस्कृति में नारी सदा शक्ति का प्रतीक तो मानी जाती रही, लेकिन आज हम स्मृतियों में अगर संविधान में आ चुके हैं, महिलाओं को उचित सम्मान और अधिकारों के लिए लड़ना ही पड़ रहा है। वर्तमान में लोकतंत्र शासन प्रणाली का एक श्रेष्ठतम उदाहरण तो है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों को समान अवसर मिलते हैं उन्नति एवं विकास के। लेकिन महिला सशक्तिकरण के सुनिश्चित होने के बाद भी ये बातें बस सतही ही रह गई हैं। राजनीति में महिलाओं की सहभागिता ही इस सशक्तिकरण में सहयोगी साबित होगी। क्या है ये भागीदारी? क्यों महिलाएं अपनी स्थिति को मजबूत नहीं बना पा रही हैं? आइए इस विषय पर और बातचीत करते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद श्रीमती नीलम गुप्ता से। नीलम गुप्ता जी, स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद।
1: नीलम जी, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर आपका क्या विचार है?
2: जहाँ तक राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का सवाल है, वहाँ

0: देखने में यह आता है कि महिलाएं राजनीति में आज बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हमारी जो महिलाओं के बीच रहती हैं वो ये हैं कि जो शिक्षा है हमारी, जो राजनीतिक शिक्षा है, वो महिलाओं को पूरी तरह से प्राप्त नहीं पाती। इस चक्कर में भी वो लोग राजनीति में कम आती हैं और उनमें जन जागृति की भी बहुत ही ज़्यादा कमी है। देखिए, आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। मैं तो अपनी बात को आपसे दो लाइनों में कहूँगी कि कौशल अपना दिखलाने को हर पल वो तैयार रही, कौशल अपना दिखलाने को हर पल वो तैयार रही, पीछे नहीं हटी कभी भी, कर्म क्षेत्र में डटी रही। महिलाएं हमेशा अपने कर्म क्षेत्र में, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, उसमें हर पल आगे बढ़ के बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि हमारी सामाजिक संरचना है, हमारे पारिवारिक दायित्व हैं, और कुछ हमारी राजनीति पृष्ठभूमि ऐसी है कि हमारी मान्यता यह है कि महिलाओं को इसमें, मतलब जो आज भी समाज जिन समस्याओं से, एक तबका ऐसा है जूझ रहा है, महिलाएं सशक्तिकरण के बावजूद भी इन परिस्थितियों में रहती हैं, तो वो ये राजनीति में आने में थोड़ा हिचकिचाती हैं।
1: महिला सशक्तिकरण की जो बातें होती हैं वो सतही रूप से ही हैं। अभी अभी उनको एक अमली जामा पहनाने में थोड़ा समय लगेगा। जैसे कहते हैं कि वर्ग विशेष से जुड़े मामले को वही नेता सही तरह से समझ सकता है जो उन लोगों से जुड़ा हो, तो ऐसे ही महिलाओं से जुड़े विषयों पर सरकार का ध्यान लाने की या उनकी बात को वहां तक पहुंचाने के लिए अगर बात होगी तो इसके लिए तो महिलाओं को ही राजनीति में आना चाहिए। तो आप क्या कहेंगी, भारतीय राजनीति में महिलाओं की कैसी भूमिका रही है?
0: अगर हम पीछे जाते हैं तो देखिए कि कुछ ही महिलाएं ऐसी थीं जो भारतीय राजनीति में रही हैं, लेकिन आज के समय में जहां हम देखते हैं कि हमारा मंत्रिमंडल है भारत का, उसमें भी महिलाओं की उपस्थिति बहुत ज्यादा है और महिलाएं ही महिलाओं की बात को अच्छी तरह से रख सकती हैं। आज हम आधी आबादी होने के बावजूद भी हमारी जो सहभागिता है, हमारी जो स्थिति है राजनीति में, वो बहुत कम है। यहाँ तक कि हम 33% वहाँ पे उपस्थिति दिखाने के लिए भी एक समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन कंडीशन जब यहाँ पर यह आती है कि महिलाओं की सहभागिता है, तो इसके लिए हमारी जो महिलाएं हैं जो हमारी आज राजनीति में हैं, उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए, उनको पूरी अपनी जोर शोर से उस चीज़ पर कायम रहना चाहिए कि हम पहुँच गए हैं तो हम अपनी महिलाओं के लिए भी और उपस्थिति लाएं, और आधी आबादी को उनका अधिकार जो राजनीति में मिलना चाहिए, संसद में मिलना चाहिए, विधानसभा में मिलना चाहिए, वो उनको मिले।
1: अधिकार पाना तो कहीं ना कहीं शिक्षा पर भी एक तरह से डिपेंड करता है, मगर अगर महिलाएं आगे आएंगी तो उन्हें किसी मुकाम पर पहुंचाना भी महिलाओं से ही अपेक्षित किया जाएगा। तो भारत में महिला मतदाताओं की स्थिति कैसी है?
0: महिला मतदाताओं की जो हम देखते हैं बहुत अच्छी स्थिति है, अगर देखा जाए तो आज महिलाएं जो बहुत जागृत हुई हैं अपना वोट अधिकार देने के लिए, और क्योंकि मतदान उनका अधिकार है, वो मतदाता के रूप में अपने आप को दिखाना चाहती हैं कि हम एक अच्छी सरकार चुन सकते हैं, और ये उनका अधिकार भी है। लेकिन जहाँ तक शिक्षा की बात आती है तो उनमें थोड़ी सी राजनीतिक शिक्षा की कमी है। जैसे कि हमें उनको बताना चाहिए कि राजनीति में जाकर वो सुरक्षित हैं, क्योंकि एक माहौल बना हुआ है, एक वातावरण हमारी भारतीय परंपराओं का और उसका बना हुआ है कि महिलाएं जो है राजनीति में जाकर सुरक्षित नहीं है, और ये डर, ये माहौल ही उनको आगे बढ़ने से रोकता है। दूसरा, हमारा समाज नहीं चाहता है कि जो हमारे परिवार की महिलाएं वो राजनीति में जाएं, तो इस तरह की राजनीतिक शिक्षा उनको शुरू से देना चाहिए, और जब ये उनकी जागृति उनके अंदर आएगी, शिक्षा मिलेगी, उन्हें बचपन से इस चीज को देना चाहिए शिक्षा को, जिससे कि वो अपना अधिकार लें और वहां पर जाकर राजनीति में आकर अपनी बात रखें और अपने देश के लिए कुछ अच्छा, जैसे कि और क्षेत्र में कर रही हैं, उसमें भी जाकर देश में अपनी उपस्थिति, अपनी सहभागिता को दर्ज करा सकें।
1: कहीं ना कहीं आपकी बातों से लगा कि महिला भागीदारी में पुरुषों का हस्तक्षेप होता रहा है, ये बात आप मानती हैं? अगर इस बात को अगर आप और अच्छे से समझा सकें तो।
0: देखिए, हमारा जो देश रहा है हमेशा पुरुष प्रधान रहा है, कोई भी पुरुष ये नहीं चाहता कि महिलाएं जो किसी भी क्षेत्र में, राजनीति तो बहुत अलग चीज हो गई, मतलब किसी भी क्षेत्र में आके जो महिलाएं हमसे ऊपर आकर बैठे, तो वहां पर जो एक खींचातानी होती है, वो जो एक उनको पीछे करने की एक नीति है, वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है। तो पुरुष प्रधान देश में हमें ये मानना चाहिए कि आज अगर हम जागृत होंगे, हमें पता होगा कि हमें पुरुष के साथ काम करना है, लेकिन हमें पुरुष का सहयोग उतना ही लेना है, हम अपने बल पे काम कर रहे हैं, अपने अपनी योग्यता के अनुसार काम कर रहे हैं, तो जो योग्यता पुरुष के अंदर है उतनी ही योग्यता एक महिला के अंदर भी है, वो सिर्फ उसको जानना होगा, उसको समझना होगा। शिक्षा की एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी अपनी फिर एक पंक्तियों में, कि मेहनत से उसने अपनी मंजिल को पा लिया, भरोसे से उसने अंबर को छू लिया, कहते थे जिनको कि पढ़कर क्या करेंगी बेटियां, कहते थे जो पढ़कर क्या करेंगी बेटियां, उनका भी उन्होंने सम्मान बढ़ा दिया। आज देखिए, अगर एक माँ बाप की बेटी है, अगर वो माँ बाप रोकते हैं सामाजिक दायरे में रहकर उनको

0: पढ़ाई नहीं करने देते, शिक्षा आगे नहीं बढ़ने देते हैं। लेकिन जब वो अपनी सारी शक्ति से और अपने आगे पढ़ती है, तो जब उसका नाम रोशन होता है, तो उसके माँ बाप का, उसके परिवार का, उसके समाज का और देश का सबका सम्मान बढ़ता है। तो जो लोग उसके लिए पीछे से खड़े होते थे कि ये आगे नहीं बढ़े, वही लोगों का सम्मान बढ़ाने के लिए आज बेटियां आकाश को छू रही हैं, अपने अपने हौसले से उड़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं।
1: ये हौसला और आकाश छूने की बात अगर राजनीति में भी आ जाए तो क्या ही बात होगी। सक्रिय राजनीति में, जैसे पंचायती राज हो या भारतीय संसद में, महिलाओं की भागीदारी को लेकर आपके विचार हम जानना चाहेंगे।
0: देखिए, पंचायत राज में तो 33% आरक्षण का, जैसे हमारे कानून में भी है कि वहाँ पर और वहाँ पर जो महिलाएं सरपंच बन के आगे बढ़ रही हैं, बहुत संख्या में बढ़ रही हैं, लेकिन आज भी विधानसभा और संसद में हमारी भागीदारी कम है। जैसे कि हम अपने देश को भी लें तो वहाँ पर अगर संसद में हमारी जो भागीदारी है वो 10% है और विधानसभा में तो इससे भी कम है। तो ये भागीदारी हम तभी सुनिश्चित कर पाएंगे जब हम आगे बढ़ के अपने आप को साबित कर पाएंगे, अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। महिलाओं को आगे खुद बढ़ना पड़ेगा, एक मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, एक सामाजिक दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा। उस चीज़ को अगर आप देखें तो आज हम जो पढ़ी लिखी महिलाएं, जो इससे भी अच्छी पढ़ी लिखी और भी हमारी राजनीति में महिलाएं हैं जो शिक्षित हैं, जैसे कि आप, मैं आगे बढ़ूंगी, ममता बनर्जी को ले लीजिए, आप मायावती जी को ले लीजिए, ये सारे नाम जो हैं, जितने भी हमारे इससे पहले जो हमारे पूर्व में राजनीति में रही और आज में वर्तमान में जो हैं, वो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके इस पद को प्राप्त किया हुआ है। तो हमारे लिए सबसे पहले जरूरी होगा कि हम महिलाओं को, अपने बच्चों को, अपनी जो बेटियां हैं उनको अच्छी शिक्षा दें। जैसे कि इसके लिए सरकार ने भी आज बहुत योजनाएं बना रखी हैं, उनका भी दायरा जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दायरा है, स्नातक तक बच्चों को, लड़कियों को शिक्षा देने का दायरा है, ये सारी चीजें आती हैं। तो इस तरह से शिक्षा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अंत में मैं अपनी बात को दो लाइनों से फिर बोलूंगी कि हौसला मेरा कभी कम ना था, हौसला मेरा कभी कम ना था, किसी ने मुझको पहचाना नहीं, औरों की मैं क्या बात करूं, खुद को ही मैंने जाना नहीं। महिलाओं की खुद के जानने की जिस दिन जागृति पैदा हो जाएगी, उस दिन राजनीति में, उस दिन हर क्षेत्र में उनका परचम लहराएगा।
1: नीलम गुप्ता जी ने अपनी बात को बहुत खूबसूरती से विराम दिया। आप स्टूडियो में आई और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सखियों, अभी आप सभी ने सुनी हमारी मेहमान नीलम गुप्ता की भेंट वार्ता। बातचीत कर रही थी हमारी बहन शिखा दीक्षित और भेंट वार्ता का विषय था राजनीति और महिलाएं। सखियों, शादियों का सीजन चल रहा है, हम शादी में जाने से पहले बहुत सी तैयारी भी करते हैं कि हमें क्या पहनना है और क्या नहीं। हमें साड़ियों का कलर भी चुनना है, किस कलर की पहननी है, लहंगा पहनना है कि गाउन पहनना है। फिर आती है ज्वेलरी की बारी, ज्वेलरी भी सेट करते हैं और फिर मेकअप, मेकअप में भी हमें फेशियल, वैक्स, ना जाने क्या क्या। और फिर आती है लिपस्टिक की बारी, डार्क लगाएं या लाइट, और इसमें आउटलाइन किस कलर की सही रहेगी। तो सखियों, आज मैं बताऊंगी कि आउटलाइन से आगे लिप लाइनर कैसे लगाएं। सखियों, 90 के दशक की वो सूखी चौक जैसी पेंसिल जो कभी मेकअप किट से लगभग गायब सी हो गई थी, फिर एक बार ट्रेंड में लौट रही है। मगर साल 2026 में ये चौक जैसी पेंसिल के रूप में नहीं है, ये नए और मॉडर्न फॉर्मुलेशन, नेचुरल शेड और बेहतर वैसिलिटी के साथ वापस आई है। आजकल कम मेकअप से ज़्यादा खूबसूरती ट्रेंड में है, इसमें लिप लाइनर अहम भूमिका निभा रही है। यह होठों को भरा हुआ तथा नेचुरल प्लम्प लुक देता है और लिप लाइनर ज़्यादा देर तक टिकता है। सखियों, लिप लाइनर का सही शेड चुनना आसान है, हमेशा अपने लिए कलर से थोड़ा सा और लुक नेचुरल लगे गहरा शेड लें ताकि होठों की शेप उभरे और लुक नेचुरल लगे। फेयर स्किन पर पिंक, रोजी, न्यूड और हल्के ब्राउन अच्छे लगते हैं। मीडियम स्किन पर पीच, सॉफ्ट और ब्राउन, न्यूड, रोज सुंदर दिखते हैं। डार्क स्किन टोन पर आप डीप ब्राउन, टेराकोटा या फिर बरगंडी और प्लम शेड ज़्यादा निखरते हैं। रोजाना के लिए अपने नेचुरल लिप शेड के करीब रंग चुनना बेहतर है जो हर आउटफिट से मैच

सखियों, जब शादी की पार्टी के लिए एक पत्नी जब तैयार होती है और वो जब दूर खड़ा पार्टनर उसे निहारता है, तो मन में ये गाना गाने का मन करता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है, जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है।

0: श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
2: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
3: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
2: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ

0: लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: देवकाशो होने के नाते जो इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं, इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को

0: अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 2:30 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुनहरा दौर।

अभी आपने सुना बॉम्बे जयश्री का गाया ये गीत। फिल्म का नाम था रहना है तेरे दिल में। 2000 के दशक की फिल्म फना का एक गीत अब सुनिए, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में।

सोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

अभी आपने सुना उदित नारायण को फिल्म जहर में। इस समय आप 2000 के दशक के कुछ फिल्मी गीत सुन रहे हैं। अगला गीत गैंगस्टर से, जिसे गाया है केके ने।

और अब आपको सुनवाते हैं सुनहरा दौर कार्यक्रम का ये आखिरी गीत, ए आर रहमान और चिन्मयी की आवाजों में फिल्म गुरु से है।

सुनहरा दौर। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आपने सुने 2000 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 3 बजे हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा संपन्न होती है।

अब से लेकर शाम 5 बजे तक FM 102.9 MHz पर विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम उपलब्ध रहेंगे। शाम 5 बजे मीडियम वेव और FM दोनों चैनलों पर हमारी सायंकालीन सभा के प्रसारण एक साथ आरंभ होंगे। तब तक के लिए मीडियम वेव पर हमें यह सभा समाप्त करने की आज्ञा दीजिए।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, हौसला हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। मुश्किलें बार बार राहें रोकती हैं, लेकिन उम्मीद की किरण लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। और हर मुश्किल हो जाती है दूर जब बातें करके मन हो जाए हल्का। और बातें करने के लिए सखियों से बेहतर और क्या है, है ना? तो बस आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए, उनका मन हल्का करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी सखी से होंगी बातें बहुत सारी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बजी फोन की घंटी और देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ। आज कौन सी सखी से बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम संगीता अग्रवाल है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप संगीता जी?
1: मैं गुड़गांव मुंबई से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, मुंबई में रहती हैं आप तो?
1: हाँ जी।
0: जीवन में इन दिनों क्या चल रहा है संगीता जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ एकदम बढ़िया, जीवन भी अच्छा चल रहा है।
0: तो आप, बढ़िया बात है। और आप घर पर ही रहती हैं, गृहिणी हैं या किसी तरह का कोई काम करती हैं, क्या करती हैं आप?
1: वैसे तो गृहिणी हूँ, लेकिन थोड़ा पार्ट टाइम में मैं अपना इंडियन हैंडीक्राफ्ट का मेरा छोटा सा बिजनेस है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट मतलब कि हस्तकला, कहाँ से लेती हैं? घर पर ही कुछ बनाती हैं या कहीं से मंगवाते हैं आप, किस तरह से होता है ये सब?
1: हाँ जी, मैं मतलब थोड़ा सा ट्रेडिंग जैसे आप समझ सकते हैं उसे, जयपुर से रिलेटेड है मेरे सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम।
0: अच्छा, तो ये अच्छा, तो ये जो सामान होते हैं आप जयपुर से मंगाती हैं सारी चीजें, तो गिफ्ट आइटम्स होते हैं या इनको फिर किस तरह से बेचती हैं? और ये भी बताइए कि आप कैसे पसंद करती हैं, क्योंकि आप तो रहती हैं मुंबई और आपका अधिकतर जो सामान है वो आता है जयपुर से, तो किस तरह से ये जो चुनाव आप करती हैं कि क्या पसंद आएगा आपके कस्टमर को, ये सब कैसे होता है?
1: आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप पे सारे पिक्स आ जाते हैं हमारे होलसेलर के यहाँ से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से, तो उसमें भी सेलेक्ट करते हैं। और साल में दो बार हमारा विजिट रहता है जयपुर में।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पे सिलेक्शन करके आते हैं ज्यादातर।
0: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। और किस तरह का लोग आपके अनुभव के अनुसार किस तरह की चीजें लोग ज्यादा पसंद करते हैं?
1: मोस्टली ना जैसे पेंटिंग्स है, टेबल के ऊपर रखने के जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं, और थ्रोज वगैरह वगैरह रहते हैं, तो उस तरीके के आइटम लोग पसंद करते हैं
0: जी।
1: ज्यादातर टेबल वेयर आइटम जो रहते हैं
0: वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि आप रहती हैं मुंबई और जो आजकल का डिजिटल जमाना है इसका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं आप, और जयपुर से सामान मंगवा करके यहाँ मुंबई में बेचती हैं, मतलब आप सेल आउट करती हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: गीत तो वैसे मुझे पुराने काफी पसंद है, उसमें से एक मेरा पसंदीदा गीत है वो मेरे दिल के चैन, जो कि फिल्म है मेरे जीवन साथी से
0: जी।
1: और मुंबई की भागदौड़ में चैन तो कम ही है, इसलिए गीत सुनकर मैं थोड़ा चैन मिल जाता है
0: जी। तो आपकी पसंद का ये गीत आपको प्रस्तुत करते हैं, और लीजिए चैन के थोड़े से लम्हे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, आज किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं पूनम मंडोवरा जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: मध्य प्रदेश जबलपुर से क्या बात है? तो पूनम जी, क्या चलता है आपके जीवन में और क्या कर रही हैं आप इस वक्त?
1: शिक्षिका हूँ केंद्रीय विद्यालय में।
0: अरे वाह, आप एक शिक्षिका हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हैं। तो कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप?
1: कक्षा 6 से 10 तक मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ।
0: विज्ञान की शिक्षिका कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक?
1: दसवीं।
0: तो ये आप कितने सालों से पढ़ा रही हैं?
1: मुझे 14-15 वर्षों का अनुभव।
0: 14-15 वर्षों का, यानी कि बहुत सारा एक अनुभव आपके साथ इकट्ठा हो गया होगा। तो काफी सारा समय आपको पढ़ाने में निकल जाता होगा।
1: जी बिल्कुल। अभी नया सिलेबस भी आपने सुना भी होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो हम लोग का सिलेबस की बुक्स भी हर साल लगभग बदल रही है।
0: अच्छा अच्छा, तो इसके लिए तो आपको भी तैयारी करनी होती होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हमें भी कई वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती हैं। कई बार हमें घर से सप्ताह भर 10 दिन के लिए बाहर रहना पड़ता है। घर में भी हमें करीब 1 या 2 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है।
0: जी देखिए, सब जानते हैं कि पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना होना या शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी तो है ही, लेकिन हमेशा लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। तो आप फिर खुद भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैसे ये सब चीज आप मैनेज करते हैं?
1: जी सहेली, आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमें ना समय का प्रबंधन बड़े अच्छे से करना पड़ता है।
0: जी ये बात तो बिल्कुल सही कही।
1: अपने दोनों बच्चों पर भी ध्यान देना है, साथ ही मुझे विद्यालय के बच्चों पर भी बराबरी से ध्यान देना है। तो मुझे समय का प्रबंधन बड़े सकुशलता से करना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल सही
1: कहूँ तो मैं कुछ टीवी वगैरह ज्यादा मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ। बस आपकी विविध भारती के गाने और विविध भारती की जो मुझे न्यूज है
0: जी जी
1: वो बड़ी अच्छी लगती है, तो अपने रिक्रिएशन या अपने एंजॉयमेंट के लिए वो जरूर मैं सुनती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं या किसी और भी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सब पसंद करते हैं भाग लेना?
1: हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला, मेरे दोनों बच्चे चेस के बड़े शौकीन हैं।
0: चेस खेल की शौकीन है, क्या बात है। घर में खेला जाता है या स्कूल में ही सिखा रहे हैं आप बच्चों को?
1: नहीं, स्कूल में सिखाते हैं, साथ में मैं उन्हें बाहर चेस क्लब मैंने ज्वाइन करा रखा है। और अभी रिसेंटली वो दोनों रीजनल चेस स्पोर्ट्स मीट में गए थे।
0: जी
1: वो दोनों का सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हुआ है।
0: क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। पूनम जी बताइए, इस बात पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे यादों की बारात मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म और चलिए देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: बड़ौदा से।
0: बड़ौदा से? बड़ौदा से कौन से की बात कर रही है? क्या नाम है आपका?
1: बड़ौदा से रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: बड़ौदा से रमीला बेन? कैसा है बड़ौदा रमीला बेन?
1: बड़ौदा तो बहुत बड़ा है, मगर हम तो बड़ौदा में छोटा सा गाँव है सुंदरपुरा, वहाँ से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, ये बड़ौदा से पास में है सुंदरपुरा?
1: सुंदरपुरा गाँव है
0: जी। तो इन दिनों तो बहुत गर्मी होगी वहाँ?
1: बहुत सारी गर्मी है, रहने को भी कहाँ जाए कहाँ जाए, ऐसा लगता बर्फ गिरे तो अच्छा है
0: लेकिन आम के भी तो मजे ले रहे होंगे आप?
1: हाँ हाँ, आम हमारे पास में बगीचे है बहुत सारे, आम जा सकते नए नए कितने भी सारे आम है।
0: अच्छा,
1: मेरी शादी हुई थी 1990 में, अभी 36 के उतर के सारा देश में हो जाएगी।
0: 36 वर्ष पूरे हो गए आपके शादी के? तो ये तो बहुत बड़ा एक साथ आपका आपके पति के साथ है, तो इतने सालों का क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे सखियों को?
1: हमारे 3 बच्चे हैं।
0: 3 बच्चे? अरे वाह। तो बहुत सारे जी।
1: और प्रियंका।
0: अच्छा, तो जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इतने सालों में?
1: अरे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं।
0: आपके आने वाले जिंदगी में सुखद और खुश भरे दिन आए, ये शुभकामना करते हैं। रमीला बहन, आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे पति को तो क्रांति पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो क्रांति फिल्म का एक गीत आपके लिए, ये हम विविध भारती की ओर से सुनिए।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का दीपा जी हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: जी आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने हमारा नाम तो पहचान लिया।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदा नाका इंदौर से।
0: हसीना भी तो बताइए क्या हाल है इंदौर के? और इंदौर का तो जो भोजन है, खाना वहाँ का बहुत मशहूर है, सराफा, 56 दुकानें।
1: जी जी, बहुत मशहूर है मैडम यहाँ पर, और साफ सफाई में नंबर वन है।
0: जी हाँ, ये तो नंबर वन है हमारे देश का साफ सफाई में इंदौर शहर। तो क्या चल रहा है इन दिनों आपके जीवन में?
1: अभी तो जॉब पर थे मैडम, तो आपको कॉल कर रहे थे। और गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी।
0: जी तो आप जॉब करती हैं?
1: जी जी, सिलाई करते हैं।
0: सिलाई का काम करती हैं, तो घर से करती हैं या कहीं जाती हैं आप?
1: दुकान पे जाना पड़ता है।
0: अच्छा, इन दिनों में आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सर पे कपड़ा वगैरह बांध के निकलती हैं ना आप?
1: हाँ, 9 बजे निकल जाते हैं, इतनी ज्यादा 9 बजे इतनी गर्मी नहीं देती है, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ ये बात तो सही है। और जब काम से आप फुर्सत पाती हैं तो आप क्या करती हैं अपने फुर्सत के
1: क्षणों? अधिकतर सुनते हैं मैडम, रेडियो के बिना तो हम लोग एक पल नहीं रह पाते। कहीं पर भी फोन इन का भी काम आता ना, सब दूर लगाते रहते।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए आज आपका कॉल लग भी गया, तो आज हसीना भी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: सुनता नाम है अपना बना लो, और गाने के बोल है, इस दिल का नहीं कोई, इस दिल से प्यार करना, देखो कोई प्यार न करना, मरना लेकिन प्यार न करना, ये सुना दीजिए।
0: चलिए लीजिए, पेश है आप ही की पसंद का गीत विविध भारती की ओर से।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किस सहेली से बात हो रही है हमारी?
1: साधना प्रतापगढ़ से।
0: साधना जी प्रतापगढ़ से, कैसी है साधना जी?
1: बहुत अच्छी, अपना सही है।
0: बस हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा चल रहा है मौसम प्रतापगढ़ में?
1: बहुत ही अच्छा मौसम है, कुदरत का मौसम है।
0: अच्छा
1: जी, आज मुझे गाना सुनना है।
0: हाँ बताइए, कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मिलन फिल्म का गाना है।
0: तो चलिए सुनते हैं पिया मिलन का गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। देखते हैं किस सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका? कौन से सिटी से बात हो रही है हमारी?
1: हमारा मेरी नाम है ग्राम बैठू पोस्ट सुकरिया जिला सिंदौली से।
0: जिला सिंदौली से जी। कौन से बड़े शहर के पास पड़ता है इमरती जी?
1: ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में सिंदौली शहर पड़ता है।
0: अच्छा, तो वहाँ से बात कर रही हैं। क्या करती हैं इमरती जी?
1: मैं घर में रहती हूँ मैम, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, आप देख नहीं सकते, घर पे रहते हैं तो।
1: लेकिन मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा मैं रेडियो पे।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो
1: और आप लोग आते हैं सबकी सहेली में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग हंसते भी तभी अच्छा लगता है।
0: तो मुस्कान आप ही सबके लिए होती है और जो बातें होती है हम सब सखियों के लिए तो होती है। जो बात आप लोग लिखते हैं, जो संदेश हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, तो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़े, कुछ नया सीखे, है ना?
1: हर विषय पे आप लोग जानकारियां देते हैं, हर विषय की जो बातचीत आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा
0: जी
1: जानकारियां भी मिलती है रेडियो के जरिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इमरती जी बताइए, आज कौन सी फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: श्रीलंका इतना मैं चाहूँ तुझे, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में गीत है, बहुत अच्छा गीत लगता है मुझे। मेरे पुराने सभी तरह के गीत अच्छे लगते हैं रेडियो पे, जैसा भी गाना बजता है वो सभी गाने अच्छे।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रजनी रावत बोल रही हूँ।
0: रजनी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं एमपी भिंड जिले से बोल रही हूँ।
0: एमपी भिंड से। रजनी जी, क्या करते हैं आप? गृहिणी हैं या कुछ किसी तरह का काम करते हैं?
1: जी, वैसे तो मैं गृहिणी ही हूँ और घर में ही काम करती हूँ, जो कुछ करना है। बाकी फिल्मी गाने सुनने का बहुत शौक है, पुराने गीत
0: जी।
1: और आपके प्रोग्राम सुनने का शौक है पूरे विविध भारती के।
0: क्या बात है, विविध भारती के आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: विविध भारती का एक गीत मालिका है
0: जी,
1: सबसे अच्छा लगता है मुझे छाया गीत
0: जी। हाँ,
1: और वो कम से कम मैं 15-20 सालों से मतलब वो कार्यक्रम सुन रही हूँ। मैं छोटे से मतलब मैंने विविध भारती सुना है बचपन से, और मेरी उम्र मतलब लगभग 45 साल हो गई
0: जी।
1: मैंने कम से कम 20-25 साल हो गए विविध भारती सुनते सुनते।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: और सखी सहेली सुनती यही मैं, सखी सहेली तो बहुत बाद में शुरू हुआ था प्रोग्राम।
0: तो आज रजनी जी कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी, मुझे आशा भोसले के बाद में तीसरी कसम फिल्म का गाना है, पान खाए सैया हमारे।
0: तो आशा जी को याद करते हुए सुनते हैं ये आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम झनकार बोल रहे हैं, मुंबई से।
0: झनकार मुंबई से, क्या बात है! आपकी तो आवाज में ही एक झनक सुनाई दे रही है झनकार जी।
1: जी बहुत धन्यवाद।
0: तो क्या करती हैं झनकार आप?
1: आजकल तो मेरी एक कथक

0: टीचर है और श्रीमती नितिन पटवर्धन, मैं उनको असिस्ट करती हूँ, बच्चों को कथक सिखाती हूँ उनके साथ।
1: क्या बात है, तो आप कथक सिखाती हैं, इसका मतलब है कि आपने भी पहले सीखा होगा।
0: मैं बहुत साल से उनके साथ हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी विद्या है जो चलती रहती है, हम कभी कह नहीं सकते कि हम परांगत हो गए हैं, तो अभी उनके साथ सीख ही रही हूँ, कुछ आया नहीं है ज्यादा, पर हाँ ये उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरी हेल्प करो, साथ में असिस्ट करो, तो मुझे तो बहुत गौरव महसूस हुआ, तो मैं उनके साथ बच्चों को आजकल कथक थोड़ा सिखाती हूँ।
1: बहुत सुंदर बात है,
0: शायद आपको पीछे घुंघरू सुनाई पड़े होंगे क्योंकि मैं उसी क्लास में हूँ।
1: अच्छा, आप उसी क्लास में हैं और सिखा रही हैं?
0: सीख रही हूँ इस वक्त, तो
1: सीख रही हैं
0: अपनी।
1: अच्छा, बहुत सुंदर बात है। और जब सिखाती हैं आप, आपने जो सीखा उसी तरीके से आप सिखाती हैं या अपने आपने कोई अपना ही एक तरीका अपनाया है बच्चों को सिखाने?
0: नहीं, शास्त्रीय संगीत भी सीखती हूँ मैं और कथक में भी, एक हम गुरु जो प्रणाली होती है शिष्य, हम उसी को फॉलो करते हैं, तो इसमें आपको अपना बिल्कुल नहीं डालना होता है
1: जी।
0: ये बहुत संभाल के दी गई विद्याएं होती हैं जो गुरु से शिष्यों में जाती है, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और अपने को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है।
1: ये बात आप
0: कुछ भी करते हैं सिखाते हैं, हमको हमारे दिमाग में पता है दीपा जी, मैं आपको बात कर रही हूँ, मैं जब बोलती हूँ ना बच्चों के साथ है, तो मेरे दिमाग में मेरी ताई की आवाज होती गुरु की।
1: क्या बात
0: कि
1: है,
0: वो जैसे बोलती थी ताई जोर से मारो तक लगाओ, तो वो अपने आप मेरे अंदर से मेरे गुरु ही बोल रहे होते हैं, वो ही कोशिश करती हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा,
0: तो अपूर्णता है थोड़ा तो है, तो गलती होती होगी, लेकिन ये हम वैसे ही चाहते हैं जैसे है, कम से कम पहले थोड़ा आ जाए तब हम शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं
1: जी। बिल्कुल
0: पर
1: सही,
0: योग्य हो जाए तब कर सकते हैं, अभी मुझे नहीं लगता मैं उस योग्य हूँ।
1: देखिए, गुरु शिष्य परंपरा की यही खूबसूरती है कि कभी भी जो सीखता है विद्यार्थी हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही समझता है और कहीं वो अहम या अहंकार की भावना पनप ही नहीं पाती।
0: इसलिए हमारे यहाँ पे शुरू में नमस्कार किया जाता है
1: जी,
0: जिस जगह हम हैं उस जगह को अपने गुरु को सबको नमस्कार करके ही हम क्लास शुरू करते हैं
1: जी। तो आप कोई छोटा सा तोड़ा टुकड़ा अगर इस वक्त आपको याद है तो बोल के बताएंगी?
0: कोशिश कर सकती हूँ
1: जी,
0: और चलिए मैं आपको एक टुकड़ा बोलती हूँ
1: जी,
0: जो तीन ताल में है और मैं बोलती हूँ, तो तीन ताल में 16 मात्रा होते हैं और मैं वो आपको टुकड़ा बोलती हूँ। तत् तत् थुन थुन टिकदा दिक टिक थई, तत् तत् थुन थुन टिकदा दिक टिक थई, टिकदा दिक टिक थई, टिकदा दिक टिक थई, ता थई, तत् तत् थई, तत् तत् थई, तत् तत् थई। इसे सादा तोड़ा बोलते हैं और कथक में जो कई अंग होते हैं जैसे ठाट है, आमद है, तोड़े हैं, टुकड़े हैं, परन है, तो ऐसा ही ये एक सादा तोड़ा है और ये बहुत ही शुरू में 2-1 साल बच्चे जब सीखते हैं तो फिर उनको सिखाया जाता है।
1: क्या बात,
0: और आपने एकदम से बोला तो बस मेरे को ये मैंने बोल दिया
1: जी। तो देखिए, लेकिन आप क्योंकि हमेशा सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, तो आपको वो मूल जबानी अच्छे से याद है। तो बताइए शंकर जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैं वो एक स्वामी पिक्चर का है, पल भर में ये क्या हो गया, मुझे
1: जी,
0: बहुत
1: जी,
0: अच्छी
1: जी, जी, जी, जी, बहुत सुंदर गीत है, तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम सीमा है।
0: सीमा जी कहाँ से बात कर रही हैं सीमा जी?
1: ये उज्जैन, उज्जैन के पास गांव है पान बिहार।
0: अच्छा सा नाम है, पान बिहार, है ना, सुनने में
1: इस अच्छा और बड़ा भी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या करती हैं सीमा जी आप?
1: कुछ नहीं मैडम, मैं तो खेती का काम करती हूँ।
0: खेती का काम? तो ये कोई छोटा काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण भी है ना।
1: महत्वपूर्ण भी, मतलब खेत पे ही शुरुआत खेत से ही होती है हमारे तो सुबह की।
0: तो किस तरह का काम आपका खेत पे रहता है? कोई
1: निंदाई खुदाई है, तो कोई चारा वारा डालना है
0: जी,
1: इसमें पानी देना है।
0: तो वहाँ पे पशु भी है?
1: हाँ है ना,
0: क्योंकि आपने चारे की बात की ना, तो वहाँ पे पशु भी है
1: ना। है
0: क्या है वहाँ पर पशुधन में? भैंस है। कितनी भैंसे हैं?
1: दो भैंसे हैं और दो गाय हैं।
0: दो गाय दो भैंसे, तो भाई इन्हें भी बहुत ध्यान से रखना होता है ना, बिल्कुल अपने परिवार अपने बच्चों की तरह।
1: बच्चों की तरह रखना पड़ता है उनको, टाइम से पानी पिलाना।
0: जी तो इन दिनों गर्मी भी बहुत है, तो उनके भी चारा देने का,
1: उनको छाया की व्यवस्था भी की है ना।
0: जी अच्छा, बहुत सुंदर बात कि उनके, आप खुद का तो ध्यान रख ही रही हैं, उनके लिए भी छाया की एक अलग से जगह बनाई है जहाँ पे वो छाव में रह सके, बैठ सके।
1: बंदे रहते हैं और उनको चारा पानी है, पानी वाली टाइम टाइम से खिलाते हैं।
0: जी तो थककर जब शाम को घर पे आती हैं, फिर से आपको भोजन बनाना होता
1: है? वहाँ पे घर रहे, उसमें घर में अंदर बांध के खिला देते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सीमा जी। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आज?
1: जी मैडम, मेरे को वो सुनना है, माँ तो कितनी अच्छी है कितनी भोली है।
0: तो कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत। तो कितनी

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैम, मैं मनीषा कौशल इंदौर से बात कर रही हूँ।
0: मनीषा जी इंदौर से। मनीषा जी, जी क्या कर रही थी अभी आप फोन लगाने से पहले?
1: मैम, मैं अभी ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, सिलाई का काम करती हूँ।
0: सिलाई का काम करती हैं।
1: खुशी इतनी हो रही मुझे कि मेरी कॉल लग गई, पहली बार कॉल लगा मेरा।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना।
1: क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलते थे कि एक बार मैं लगा के रहूंगी, क्योंकि वो हमेशा सखी सहेली सुनते हैं। दिन भर उनका प्रोग्राम चलता रहता है, उनको मतलब शौक है रेडियो सुनने का। तो वो वेडिंग का काम करते हैं, तो वो मतलब चलता रहता है उनका डेली का। तो वो बोलते लगा के देखना, एक बार तो लग ही जाएगा तेरा। वो
0: कि बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, आज आप आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: मैम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, सलम वाला गाना सुनवा दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: और दीदी आज मेरा 7 सालों बाद कॉल लगा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
1: 7 सालों के बाद?
0: जी दीदी।
1: बहुत बहुत बधाई आपको प्रेमलता जी, तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको।
0: हाँ दीदी बहुत खुशी हो रही है।
1: रेडियो तो सुनती हैं, इसके अलावा आपको क्या पसंद है?
0: दीदी मेरे को तो रेडियो सुनना पसंद है, और मतलब कहीं अपन मतलब कोई मतलब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ना
1: जी,
0: उसमें जाना पसंद है मुझे।
1: बहुत अच्छी बात है, तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए हम?
0: दीदी फिल्म का नाम है गाइड, पिया तो से नैना लागे रे।
1: तो चलिए सुनते हैं गाइड फिल्म का पिया तो से नैना लागे रे, आप ही की पसंद का गीत।

0: करते हैं।
1: हेलो सहेली में बातों का सिलसिला आज बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 02240002462, अंग्रेजी में 02240024662। इसके अलावा 02228670288 यानी 02228670288 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सहेलियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें ताकि अन्य हमारी सहेलियों को एक अवसर प्रदान हो सके। आज की हेलो सहेली में सहयोग दिया संपादन में नम्रता टिकोड़े ने, तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार।
2: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका इंतजार। इसकी लेखिका है ममता सिंह और वही आपको ये कहानी सुना रही है।
1: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल

और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलसकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना, अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हां में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली, दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हां कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भराए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उसे एक पल

मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, मां के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती मां का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण मां से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और मां विदा हो गईं। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी मां की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। मां के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही, कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

लौटकर मां ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही मां जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहां रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, मां के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा, हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भराया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की। सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तब घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।

उस रोज अनुष्का ने मुझे पहली बार मां कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी, मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की

पतली सी आवाज में गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बेहद सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थी जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए और करीब गए। अरे ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा है, ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और उसमें नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी मां ने यहां उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस मां का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नजदीक पहुंचे। हाथों में ग्लव्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं मां बन गई हूं। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरव के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

उस फूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल, मां की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ में लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा, उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आधमकेगा, फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहां तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्ची हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बांझ हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे? ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरो, उस बच्ची ने कांटों सी जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थी। कागजों से बड़ी हैं उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुंदी आंखें अपनी मां को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूं। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें,
नन्ही नरम हथेलियां, उसकी निर्बल सांसें, उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई। मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या मां बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? मां बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं, दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन सब बातों के लिए? जज ने अपने फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को मां का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर

अखबार में नोटिस निकाला गया। यदि किसी को इस बच्चे पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साये में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्चे का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरो, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था। मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरो चुपचाप खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसकी रोनी और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

कितना अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था, ये बच्ची मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई। इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती, थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है, हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि मां बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताजी महक फैली हुई थी, पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजा कर बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी, उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली मां हूं, मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर यह अचानक ये मुसीबत कहां से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूं कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली।

और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला। जन्म देने वाली मां को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए। अनुष्का की जन्मदात्री मां भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ देह हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थी। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। उसमें भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थी। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी मां के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहां जा रही है वही उसकी असली मां है। मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था। नीरव निर्विकार भाव से इस नियति को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने मां पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एक पात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपनी सुविधा अनुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी मां के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं। फिर जब वो रुका तो उसकी सूनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी। ऐसे कसकर लिपट जाती जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली मां हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, मां तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच मां की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रखकर रोई थी और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां चौखट से ढीली हो गईं। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई। उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं, जहां पहले मां ने तस्वीर टांगी थी। तस्वीर अब वहां नहीं थी, सिर्फ कील बाकी थी। वो कील मानो उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक थी, अधूरा खाली इंतजार करता हुआ कील। उसकी आंखें भर आई, पर ये आंसू मातृत्व की

स्वामी के नहीं थे बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने अपनी मां की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, मां तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया, फिर लौटकर मुझे पाया और खो दिया, लेकिन मैं अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती, मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनुष्का के शब्द हवा में गूंजे मानो घर की दीवारें भी सुन रही हो। अनुष्का की पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं। कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की परतें टूटकर बिखर गई हों। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ पलटकर देखा। वही चौखट जो उसकी अनचाही शुरुआत की गवाह थी, अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक मां की बेटी हूं। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा। अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था। एक नई शुरुआत का उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही है हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर अभी तक आप विविध भारती मुंबई के प्रसारण सुन रहे थे। शाम के 5 बजे हैं हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण मीडियम वेव और FM पर अब एक साथ आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम।

सफर में कभी खुशी मिलती है, कभी मुश्किलें आती हैं, तो कभी नई यादें बनती हैं। लेकिन असली मजा तब आता है जब हम हर पल को खुलकर जीते हैं। सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम नहीं है, सफर हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब हम यात्रा करते हैं तो नए लोगों से मिलते हैं, नई बातें सीखते हैं और नई जगहों को देखते हैं। कभी ट्रेन की खिड़की से खेत और पहाड़ देखना, कभी बस में दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, तो कभी परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जाना, ये सब यादें जिंदगी भर साथ रहती हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सफर का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। सबको जल्दी रहती है कि कब मंजिल आए, लेकिन दोस्तों सिर्फ मंजिल ही जरूरी नहीं होती, रास्ते भी बहुत खास होते हैं। कई बार रास्ते में मिलने वाले छोटे छोटे पल हमें बहुत बड़ी खुशी देते हैं। सफर हमें धैर्य भी सिखाता है। कभी रास्ता लंबा होता है, कभी ट्रैफिक मिलता है, कभी ट्रेन लेट हो जाती है, लेकिन इन सब के बीच मुस्कुराते रहना ही असली मजा है। सफर हमें यह भी सिखाता है कि हर परिस्थिति में खुश कैसे रहा जाए।

हम बात कर रहे हैं सफर की। पुराने समय में लोग बैलगाड़ी, साइकिल या पैदल सफर करते थे। तब सफर लंबा जरूर होता था, लेकिन लोगों के पास समय और अपनापन था। आज साधन तेज तो हो गए हैं, लेकिन लोगों के पास वक्त कम हो गया है। इसलिए जरूरी है कि हम सफर के हर पल को महसूस करें। और कभी कभी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा वही होता है जो रास्ते में मिलता है। किसी ढाबे की चाय, बारिश में भीगे रास्ते, पहाड़ों की ठंडी हवा या दोस्तों के साथ गाया गया कोई पुराना गीत, यही तो सफर का असली मजा है। आइए साथियों, हम ये तय करें कि जिंदगी के हर सफर को खुशी और सकारात्मक सोच के साथ जिएंगे। मंजिल तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन रास्तों का आनंद लेना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए साथियों, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जिंदगी के हर सफर का मजा लेते रहिए। और दोस्तों, आकाशवाणी के ये 90 साल आपके साथ इस सफर में पता ही नहीं चले कि कब बीत गए। इसलिए मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज शाम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं नतांश अग्रवाल और मेघा ठाकुर।

0: 90 वर्षों से गूंजती एक चिर परिचित आवाज जो आज भी हर भारतीय के दिल की धड़कन है।
1: आकाशवाणी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का अटूट सेतु है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, 9 दशकों से विश्वास और शुद्धता का पर्याय बना हमारा अपना रेडियो। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे और आज सुन रहे होंगे अपना कार्यक्रम। और आज आपके साथ हूं मैं, आपकी रेडियो साथी मेघा ठाकुर,
0: और साथ हूं मैं आपका रेडियो साथी नतांश अग्रवाल। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए जानते हैं आज का सवाल। और आज का हमारा सवाल है, उदयन किला किस राज्य में स्थित है?
1: दोस्तों, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, उदयन किला किस राज्य में स्थित है?
0: इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको लॉग इन करना होगा फेसबुक आईडी और सर्च करना है आकाशवाणी रामपुर का फेसबुक पेज, और आज की अपडेट पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने अपने अपने जवाब।
1: और सही जवाब देने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों के नाम हम बताएंगे कार्यक्रम के एंड में।
0: मेघा, आज 8 मई है, और पता है आज से संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इसका मकसद क्या है?
1: हाँ, मैं बताती हूँ, इसका असल मकसद है कि इस बार की जो फोकस है हैशटैग रीथिंक मोबिलिटी पर है। इसका मतलब कि हम अपनी सड़कों को केवल कारों के लिए नहीं बल्कि पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए भी सुरक्षित बनाना है।
0: और हाँ, आपको बता दें, WHO का लक्ष्य है साल 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को लगभग 50% तक कम करना है।
1: और इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा भी प्रमुख कदम उठाए जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, हाल ही में शुरू की गई कैशलेस उपचार योजना यानी कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, जिसके तहत सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, ताकि पैसे की कमी के कारण किसी की जान ना जाए।
1: और इन लोगों का क्या जो मदद करना चाहते हैं पर पुलिस स्टेशन के चक्करों से बचना चाहते हैं,
0: उनके लिए है राहवीर योजना। इसके तहत गुड समेरिटन यानी नेक मददगार को अब लगभग 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, ताकि लोग निडर होकर घायलों की मदद कर सकें।
1: ये तो नतांश बहुत अच्छी पहल है, लेकिन मैंने गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग के बारे में भी सुना है, वह क्या है?
0: सेफ्टी रेटिंग, उसे भारत NCAP कहते हैं। ये भारत का अपना खुद का सुरक्षा मानक है। अब ग्राहक कार खरीदने से पहले उसकी 1 से लेकर 5 स्टार तक रेटिंग देख सकते हैं, जिससे कंपनियां सुरक्षित गाड़ियां बनाने के लिए प्रोत्साहित होती हैं।
1: और सड़कों की बनावट, ब्लैक स्पॉट को ठीक करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए।
0: हाँ मेगा, सही कहा, उसके लिए भी सरकार ब्लैक स्पॉट सुधार कार्यक्रम चला रही है। ब्लैक स्पॉट वे जगह होती हैं जहां बार बार दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं होती हैं, जैसे टेढ़े मेढ़े मोड़ ठीक करना या चेतावनी बोर्ड लगाना।
1: अच्छा, मतलब तकनीक, बुनियादी ढांचा और मानवीय मदद, तीनों को मिलाकर ही हम सड़क सुरक्षा को हकीकत बना सकते हैं।
0: सही कहा मेगा, अंततः हमारी सावधानी और इन योजनाओं का लाभ उठाकर ही हम सड़कों को सुरक्षित बना सकते हैं। और अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट का प्रयोग करना, 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट को जरूर लगाना, और वाहन चलाते समय फोन का प्रयोग नहीं करना, ये सभी शामिल है।
1: दोस्तों, इसी जागरूक सोच के साथ सुरक्षित रहिए, और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के उस पार जानेंगे आज बहुत कुछ खास।

0: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम युववाणी में। इसके साथ बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर, और जानते हैं क्या है कुछ खास।
1: कुछ ख्वाबों की बात, कुछ अपनों का साथ, नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे कह रहे हैं बहुत कुछ आज। वाकई कुछ खास है आज, कुछ खास है आज।
0: दोस्तों, आज का दिन दुनिया भर में उन हीरोज को समर्पित है जो बिना वर्दी के, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ मानवता की सेवा में 24 घंटे तैनात रहते हैं।
2: जी हाँ दोस्तों, आज 8 मई है। आज इस दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस डे यानी विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज का दिन ये क्यों मनाया जाता है?
0: तो दोस्तों, आज के दिन रेड क्रॉस के संस्थापक यानी हेनरी डुनेंट का जन्म हुआ था। सन 1859 के सोलफेरेनो युद्ध की तबाही देखकर इस शख्स का दिल पसीज गया और उन्होंने एक ऐसी संस्था की नींव रखी जिसका धर्म सिर्फ और सिर्फ इंसानियत है।
2: साथियों, आज 2026 में भी युद्ध हो, महामारी हो या प्राकृतिक आपदा, रेड क्रॉस का वो सफेद झंडा और लाल निशान हमें भरोसा दिलाता है कि मदद पहुंच रही है।
0: इस साल वर्ल्ड क्रॉस डे 2026 की थीम है मानवता को जीवित रखता, यानी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव।

0: और भारत में भी रेड क्रॉस ने पिछले 100 से अधिक सालों में लाखों जिंदगियां बचाई हैं।
1: दोस्तों, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप्स हो या फर्स्ट एड ट्रेनिंग, रेड क्रॉस ने हमें सिखाया है कि हमें एक दूसरे का हाथ थामकर ही आगे बढ़ना है।
0: दोस्तों, मानवता कोई बड़ी चीज नहीं है, बस किसी की आंखों के आंसू पोंछ देना ही मानवता है। और जब सब कुछ बिखर रहा हो, तब सिर्फ करुणा और निस्वार्थ सेवा ही इंसानियत को बचा सकती है।
1: उन लाखों स्वयं सेवकों को सलाम जो बिना किसी भेदभाव के, बिना ये पूछे कि आप कौन हैं, कहां से हैं, संकट के समय सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते हैं।
0: तो आज हमारा एक आपसे छोटा सवाल है, आखिरी बार आपने कब किसी अनजान की मदद की थी?
1: आज रेड क्रॉस डे पर चलिए एक संकल्प लेते हैं, पास के रेड क्रॉस सेंटर जाकर रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन का संकल्प लें और आप भी बन सकते हैं एक हीरो।

0: आज का दिन और भी खास है क्योंकि आज 8 मई के दिन ही हर साल की तरह आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस।
1: दोस्तों, ये दिन सिर्फ एक बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए नहीं है बल्कि उन लाखों लोगों के संघर्ष, हिम्मत और उम्मीद को सलाम करने के लिए भी मनाया जाता है जो थैलेसीमिया जैसे गंभीर बीमारी से जीवन जी रहे हैं।
0: दोस्तों, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक यानी जेनेटिक रक्त विकार है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जब इसकी कमी होती है तो व्यक्ति को बार बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है।
1: दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि थैलेसीमिया कोई छूने से फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से आती है, इसलिए इसके प्रति जागरूकता और समय पर जांच बहुत जरूरी है।
0: दोस्तों, विश्व थैलेसीमिया दिवस 2026 की थीम है हिडन नो मोर, फाइंडिंग द अनडायग्नोस्ड, सपोर्टिंग द अनसीन, यानी अब और छिपा नहीं, अनदेखे लोगों की खोज, अनदेखे लोगों का समर्थन।
1: ये थीम हमें याद दिलाती है कि समाज, परिवार, डॉक्टर, सरकार और युवा सभी मिलकर ही थैलेसीमिया से लड़ सकते हैं।
0: दोस्तों, हमारे देश भारत में भी हर साल हजारों बच्चे थैलेसीमिया के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि थोड़ी सी जागरूकता इस बीमारी को काफी हद तक रोक सकती है।
1: अगर शादी से पहले या परिवार बढ़ाने से पहले थैलेसीमिया टेस्ट कराया जाए तो आने वाली पीढ़ियों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है और एक छोटा सा टेस्ट किसी बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकता है।
0: और दोस्तों, थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है रक्तदान। कई मरीजों को हर 15 से 20 दिन में खून की जरूरत पड़ती है।
1: तो अगर आप स्वस्थ हैं और रक्तदान कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि याद रखिए, आपका एक यूनिट रक्त किसी की पूरी जिंदगी में उम्मीद भर सकता है।
0: दोस्तों, आज के दिन हमें ये समझना होगा कि थैलेसीमिया से लड़ रहे लोगों को सिर्फ दवा नहीं बल्कि प्यार, सम्मान और सहयोग की भी जरूरत होती है।
1: तो आइए आज इस विश्व थैलेसीमिया दिवस पर हम सब ये संकल्प लें कि हम जागरूक बनेंगे, दूसरों को जागरूक करेंगे और जरूरत पड़ने पर रक्तदान भी करेंगे,
0: क्योंकि एक जागरूक समाज ही स्वस्थ समाज बन सकता है। साथियों, ये था हमारा आज का दैनिक सेगमेंट कुछ खास है आज।
2: कुछ ख्वाबों की बात, कुछ अपनों का साथ, नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने और उन पर नीले स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
3: वाकई कुछ खास है आज,
2: कुछ खास है आज।

0: दोस्तों इसी गीत के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सेगमेंट साइंस नामा की ओर, और चलते हैं उसके पहले सब सेगमेंट विज्ञान हस्ती की ओर।
1: दोस्तों आज के हमारे सब सेगमेंट साइंस हस्ती में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी की, जिनका जन्म 9 जनवरी 1922 को तत्कालीन भारत के पंजाब प्रांत के रायपुर गांव में हुआ था,
0: जो आज पाकिस्तान में स्थित है। साधारण परिवार में जन्म लेने वाले खुराना जी ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि बड़े सपने देखने के लिए बड़ी सुविधाओं की नहीं बल्कि बड़े हौसलों की जरूरत होती है।
1: दोस्तों उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाँव में ही प्राप्त की। उस समय संसाधनों की कमी थी लेकिन शिक्षा के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। आगे चलकर उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और फिर उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए।
0: दोस्तों विज्ञान की दुनिया में उनका सबसे बड़ा योगदान था, जैसे जेनेटिक कोड को समझना। उन्होंने ये पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि हमारे शरीर की कोशिकाएं किस प्रकार डीएनए के संदेश को पढ़ती हैं
1: और प्रोटीन का निर्माण करती हैं। ये खोज आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी और अनुवंशिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित हुई।
0: उनकी इसी महान उपलब्धि के लिए वर्ष 1968 में उन्हें शरीर क्रिया विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था।
1: और दोस्तों डॉक्टर खुराना केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि प्रेरणा के प्रतीक भी थे। उन्होंने ये संदेश दिया कि यदि इंसान में सीखने की ललक और मेहनत करने का जज्बा हो तो वह किसी भी ऊंचाई को छू सकता है।
0: आज जब युवा नई नई तकनीकों और शोध की ओर बढ़ रहे हैं, तब डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जीवन हमें प्रेरित करता है कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है।
1: आइए हम भी उनके जीवन से प्रेरणा लें और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ें। साथियों अब आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: तो इसी गीत को सुनने के बाद अब हम हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट साइंस नामा के सब सेगमेंट साइंस आइए जानते हैं कि और चलते हैं। आज बहुत गर्मी है और मुझे ठंडा पानी पीना है। मैं फ्रिज में ठंडा पानी लेने जा रही हूँ।
1: लेकिन मेगा, फ्रिज ही क्यों? ठंडा पानी तो मटके से भी लिया जा सकता है।
0: मटके से? लेकिन वो कैसे?
1: बताता हूँ। हम प्यास बुझाने के लिए अक्सर सीधा फ्रिज की तरफ भागते हैं, पर क्या कभी ध्यान दिया है? फ्रिज का पानी सिर्फ गला भिगोता है, रूह को तृप्त नहीं करता। असली सुकून तो मिलता है उस मिट्टी के मटके के पानी से, जिसकी सौंधी खुशबू ही आधी प्यास बुझा देती है।
0: पर क्या आप जानते हैं कि बिना किसी बिजली कंप्रेसर के साथ एक साधारण सा मटका पानी को इतना शीतल कैसे बना देता है? चलिए आज इसकी इंजीनियरिंग समझते हैं।
1: दोस्तों, मटके की बनावट में ही सारा जादू छिपा है। मटके के घड़े की सतह पर हजारों सूक्ष्म छेद यानी माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। मटके के अंदर का पानी लगातार इन छेदों से रिस कर बाहर आता रहता है।
0: जैसे ही पानी मटके की बाहरी सतह पर पहुंचता है, बाहर की गर्मी से भाप यानी वेपर बनाकर उड़ा देती है।
1: अब यहाँ आता है साइंस का असली कमाल। जब पानी भाप बनकर उड़ता है तो उसे गर्मी की जरूरत होती है। ये गर्मी वो मटके के अंदर वाले पानी से सोख लेता है। इस प्रक्रिया में मटके के अंदर के पानी की गर्मी होती है। इस प्रक्रिया में मटके के अंदर के पानी की गर्मी कम हो जाती है और वे धीरे धीरे कुदरती तौर पर ठंडा हो जाता है।
0: इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पसीना आने के बाद जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। मटका भी बिल्कुल वैसे ही खुद को ठंडा रखता है।
1: तो दोस्तों, मटके का पानी न सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि ये शरीर का पीएच लेवल भी बैलेंस रखता है और गले को खराब होने से बचाता है।
0: तो इस गर्मी फ्रिज के प्लास्टिक और गैस वाले पानी को थोड़ा आराम दीजिए और मिट्टी के साथ देसी फ्रिज को अपनाइए। डुम डुम डुमक डम डम डमक डुम डुम डुमक डम डम डमक डुम डुम डुमक डम डम।

0: दोस्तों, ये था सेगमेंट साइंस नामक का सब सेगमेंट। आइए जानते हैं, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट सब सेगमेंट साइंस न्यूज की ओर और जानते हैं क्या है हमारी पहली न्यूज।
1: दोस्तों, हमारी पहली खबर आ रही है पर्यावरण के क्षेत्र से, प्लास्टिक से। मई 2026 की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक का प्रदर्शन किया जो सूर्य की रोशनी का उपयोग करके प्लास्टिक कचरे को हाइड्रोजन ईंधन में बदल देती है। ये प्रदूषण और ऊर्जा संकट दोनों का समाधान है।
0: इसी क्रम में हमारी दूसरी न्यूज है अंटार्कटिका जल संकट के बारे में। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि गहरे समुद्र का गर्म पानी अंटार्कटिक की बर्फ को परतों के करीब पहुंच रहा है, जिससे समुद्र के स्तर में तेजी से वृद्धि होने का खतरा बढ़ गया है।
1: दोस्तों, पर्यावरण के क्षेत्र में ही नई उपलब्धि हासिल की गई है। 6 अप्रैल 2026 को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की गई है। 6 अप्रैल 2026 को कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित भारत के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रिगेडर रिएक्टर PFBR ने क्रिटिकलिटी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हासिल की है।
0: अगला समाचार है हीट वेव और जलवायु रिपोर्ट का। इसके अनुसार स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2026 में भीषण गर्मी के कारण भारत की GDP में लगभग 4.6 की गिरावट आ सकती है। मई में उत्तर भारत में तापमान लगभग 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है।
1: दोस्तों, हमारी अगली खबर स्वास्थ्य से जुड़ी है। डेंगू का टीका भारत के पहले स्वदेशी डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा TAK003 को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जो इस बीमारी से निपटने में एक बड़ी उम्मीद जगाता है।
0: अगली खबर है भारत विस्तार से लेकर बजट 2026-27 के तहत घोषित इस बहुभाषी AI टूल को लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। ये किसानों को उनकी स्थानीय भाषाओं में फसलों, कीटों और बाजार की सटीक जानकारी देता है।
1: दोस्तों, बात की जाए अंतरिक्ष और तकनीक के क्षेत्र से जुड़ी, तो प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च 3 मई को 2026 बेंगलुरु में स्टार्टअप प्राइवेट सैटेलाइट गैलेक्सी में मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया है। ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है।
0: अब बात करें गगनयान अपडेट की, तो इसरो ने गगनयान मिशन के लिए IADT02 एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके साथ ही लद्दाख की ऊंचाइयों पर मिशन मित्रा के तहत अंतरिक्ष यात्रियों का कठोर प्रशिक्षण चल रहा है।
1: भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के माध्यम से चिप निर्माण और डिजाइन में आत्मनिर्भर बनने के लिए बजटीय सहायता बढ़ाई है, ताकि भारत को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक हब बनाया जा सके।
0: एजेंटिक AI का चलन मई 2026 में पड़ा है। ये ऐसे ऑटोनॉमस सिस्टम है जो सिर्फ निर्देशों का पालन नहीं करते बल्कि खुद निर्णय लेकर कार्यों को पूरा करते हैं।
1: दोस्तों, हमारी साइंस न्यूज आखिरी न्यूज है 4 मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च IIMR ने सिफारिश की है कि दैनिक आहार में कम से कम एक समय मील में मिलेट्स यानी श्री अन्न का सेवन जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि पोषण और स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, इसी के साथ हमारे सब सेगमेंट साइंस न्यूज में आज बस इतना ही। लेके लाएंगे आपके लिए और नई विज्ञान से जुड़ी जानकारियां, और आपको अब सुनवा रहे हैं ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट साइंस नामा। अब वक्त है हमारे आज के आखिरी पड़ाव का, यानी स्टार्टिंग में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने का। हमारा सवाल था, उदयन किला किस राज्य में स्थित है? और इस सवाल का सही जवाब है उत्तर प्रदेश।
1: सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता साथी हैं आप सभी, आकाश रस्तोगी, शारनू रंसारी, धर्मेंद्र छिपा, जॉन डी कैस्ट्रो, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलावेन शाह, राजेंद्र जी शाह, अभिजीत गवाकर, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, इमरान शेख, दीपेश वर्मा, दुर्गाराम साहू, अजीत कसाना, चौधरी राजवीर सिंह, नजमुल हुडा जावेद, दिनेश कुमार वर्मा, मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, रियासत हुसैन सिद्दीकी, ताज मोहम्मद अंसारी, बुद्धदेव बनर्जी खोकन, मसरूर हसन, अजीत भवसार, मास्टर विट्ठल सुरोचे, सोहन जोशी, दिग्दर्शन गौड़, कविता गौड़, रामकुमार रेवाड़, विमल सक्सेना भारती, विनोद मूरत, लालगिरी गोस्वामी रघुनाथपुरा, मोहम्मद जाहिद अली सैफी, हनुमंत शिंदे, जगदीश धाकड़ नायमा, उत्तम कुमार भगत, मुकेश कश्यप, कमल बालूजा, बलवंत कुमार वर्मा, भीरूलाल वाक्तर्य धाकड़, नबी हसन अब्बासी, मिजबा शमशी, सुरेश जायसवाल, सिद्धार्थ गोंडने, निसार सलमानी, मोहम्मद अफजल ताज, सोमेंद्र यादव, राधेश्याम पांडे, गुरमीत सिंह मीता, रवि कुमार राहुल, हाजी गफार खान, संजय डिंगिया, मोहम्मद फरमान, लाडला जी चौबे, इरशाद अहमद अंसारी, फागुराम यादव, मोहम्मद सईद अब्बासी, राजपाल गजभैये, रवि रस्तोगी, देवशंकर तमूरिया, सुरेश गगनेजा, अरविंद कुमार, प्रवीण चौहान, मोहम्मद यासीन अंजन, जयपाल यादव महोवा, राजू मिगलानी, लाल मोहम्मद अंसारी, जीशान वारसी, धीरज भाई राबरी, मोहम्मद दाने सिद्दीकी, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, विजय सुरलकर, आफ्ताब अंसारी, शाहजी बोटके, गजननीय दरियापुल भावली, नारायण प्रधान और नितेश कुमार देवांगन। आप सभी को सही जवाब देने की बहुत बहुत बधाई।
0: साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताना ना भूलें हमारे इस पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी आई है युववाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन संख्या 244901।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है patramila@rampur.gmail.com। इसी के साथ आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपना संदेश भेज सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876।
0: चलिए आपको अब सुनवाते हैं प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। अब आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वितरिक कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और

0: सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों की निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

राष्ट्र, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ, मातृभाषा, मातृभूमि हमको प्राणों से भी प्यारी है। शहीद, सैनिक और संस्कृति पर हम सबको अभिमान है। तिरंगे के रंगों में हर एक रंग का मान है। तिरंगे की रक्षा में तन मन धन कुर्बान है। धर्म, जाति और नाम से पहले भारतीयता पहचान है।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से।

कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में पेइंग गेस्ट फिल्म से।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न हुआ।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: आबो आबो प्रवीण भैया, राम राम।
1: राम राम जसविंदर भैया, और संग संग हमारे सभी किसान भाइयों को हम दोनों की
0: राम राम। प्रवीण भैया।
1: हाँ भैया,
0: कैसे हैं आप?
1: भैया देखो, हम तो ठीक हैं, और आप अपने और अपने परिवार के सुनाओ।
0: देखो प्रवीण भैया, हम भी ठीक हैं और हमारे परिवार में भी ठीक हैं, और हम जय आशा करते हैं जो हमारे किसान साथी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं, वे भी सब ठीक होंगे और समय रहे तो जो भी खेती बाड़ी के काम हैं वो कर रहे होंगे।
1: और भैया देखो, जब हम सब ठीक ठाक होंगे ना, तभी अपनी खेती बाड़ी को काम कर सकेंगे। और जय हमारी ईश्वर से प्रार्थना रहती है कि हमारे सभी किसान भैया खूब अच्छी तरह से स्वस्थ रहें और खूब मन लगा कर अपनी खेती बाड़ी को काम करें। और भैया देखो, अपनों कार्यक्रम में खेती बाड़ी की जानकारी देते हैं, लेकिन बात से पहले आज हम देख रहे हैं आपके हाथ में कोई कागज तो है भैया?
0: भैया कागज है, और बहुत महत्वपूर्ण कागज है हमारे किसान साथियों को, जो बतान के लिए कि हमारे कार्यक्रम में कुछ बदलाव करे गए हैं। बाकी बारे में अगर हमारे किसान साथियों को पहले से सूचना हुई ना, तो वे अपने पत्र भी हमारे कार्यक्रम तक भेज सकते, फोन कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमारे साथ सम्मिलित हो सकते हैं।
1: तो भैया देखो, जो बदलाव है ना, ये मई महीना से ही शुरू है, यानी कि जय महीना से, और पहले बुधवार को महीना के सफल कृषक से करी गई बातचीत हम अपने किसान भाई उनको सुनवाते हैं,
0: और उसी क्रम में हर महीना के दूसरे बुधवार को सफल महिला कृषक से करी गई भेंटवार्ता सुनवाते हैं,
1: और तीसरे बुधवार को हम सुनवाएंगे किसान भाइयों को मासिक कृषि गोष्ठी,
0: और चौथे बुधवार को प्रवीण भैया हम सुनवाएंगे अपने किसान साथियों के लिए सफल कृषि स्टार्टअप,
1: और भैया अगर पांचवो बुधवार महीना में आओ तो हम सुनवाएंगे किसान भाइयों को सफल कृषक से करी गई बातचीत।
0: बिल्कुल प्रवीण भैया, इसी प्रकार से पहले और तीसरे गुरुवार को हम सुनवाएंगे हर महीना के आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष कार्यक्रम, और दूसरे और चौथे गुरुवार को सुनवाएंगे कृषि पत्रिका खेत खलियान,
1: और भैया अगर पांचवो गुरुवार आओ तो फिर सुनवाओ जाएगा आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष कार्यक्रम।
0: बिल्कुल।
1: और भैया शुक्रवार की बात करें तो भैया देखो, पहले और तीसरे शुक्रवार को आपके मनपसंद कार्यक्रम जो लोक मंजरी ना, फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित सुनवाओ जाएगा।
0: बिल्कुल। और भैया अगर हम बात करें दूसरे और चौथे शुक्रवार की, तो कृषि शंका समाधान, यानी कि हमारे किसान साथियों की जो समस्याएं हैं या उनसे जुड़े जो समाधान हैं, वो हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से करावेंगे। लेकिन
1: भैया देखो, जो सुनवांगे, और आज आप देख रहे हो का दिन है।
0: बिल्कुल भैया, आज दिन है शुक्रवार को, और वो भी
1: दूसरा शुक्रवार है, तो आज हम अपने किसान भाइयों को लोक मंजरी कार्यक्रम की जगह जो है कृषि शंका समाधान सुनवाएंगे, थोड़ी ही देर में शुरू होएगा। लेकिन अगर भैया महीना में पांचवो शुक्रवार आएगा तो किसान भाइयों को हम सुनवाएंगे लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम।
0: और प्रवीण भैया देखो, हमारे कार्यक्रम से जुड़न के लिए हमारे किसान साथी हमारो नंबर नोट कर लें, ताकि वे हमें डायरेक्ट फोन भी कर सकते हैं, और फोन करने के लिए हमारा फोन नंबर है 0595-23-24-326।
1: इस नंबर पर हमें आप फोन करेंगे तो आपकी जो खेतीबाड़ी संबंधित समस्या होगी उसका समाधान करने का पूरा पूरा प्रयास करा जाएगा। साथ ही साथ जब भैया लोक मंजरी कार्यक्रम होगा तो वे हमें फोन करेंगे, तो उनकी जो फरमाइश होगी लोकगीत सुनने की, नौटंकी सुनने की, रसिया सुनने की, आला सुनने की, तो वो भी उनको सुनवा हो जाएगा।
0: बिल्कुल भैया, और अगर SMS करना चाह रहे हैं हमारे किसान साथी, तो बाकी लिए नंबर अलग है हमारो 94107876।
1: भैया एक बार फोन नंबर जो है दोबारा से लिख लें व्हाट्सएप और SMS के लिए 94100878776।
0: बिल्कुल। और भैया अगर हमारे कुछ किसान साथी जो पढ़े लिखे हैं और वे ईमेल करना चाह रहे हैं, तो उनको हम बता दें अपने ईमेल को पता, पत्र मिला AIRRampur@gmail.com। इस पे ईमेल कर सकते हैं और अपनी समस्या या फिर अपनी जो भी फरमाइश है वो भेज सकते हैं।
1: और भैया जो सोशल मीडिया पर हमारे किसान भैया हैं, वे अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, आकाशवाणी रामपुर के पेज पे भी जुड़ के हमसे बात कर सकते हैं।
0: बिल्कुल प्रवीण भैया, जो तो ही हमारे कार्यक्रम में कुछ बदलाव हैं उनसे
1: संबंधित जानकारी। और देखो भैया, अब हम किसान भाइयों से कर लें खेती बाड़ी की बात।
0: बिल्कुल,
1: तई बाकी बाद में शुरू करेंगे कार्यक्रम कृषि शंका समाधान। तो भैया देखो, खेती बाड़ी में अब जो मुख्य रूप से ना आपने देखी, गेहूं की फसल तो गई कट, और गेहूं की फसल की कड़ाई के बाद में जो खेत खाली है ना, वे अब खाली है।
0: बिल्कुल भैया, और सबसे ज्यादा जरूरत का होती है ना, हमारे किसान साथी इस समय एक गलती कर देते हैं, अगर खेत खाली है तो वे सोचते हैं अब तो कोई काम ना आए हमारे।
1: और भैया इस समय जो है एक महत्वपूर्ण काम करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपने देखी है ना कि आजकल रात कहाँ है कि कि अच्छा रामू भैया ने एक कट्टा डालो यूरिया को धान में, हम तो डेढ़ कट्टा डालेंगे।
0: बिल्कुल भैया,
1: और एक दूसरे की होल रहती है, जाना देखते हैं कि बाकी खेत में का तत्व की कमी है, काय की पूर्ति करनी है, हमारे खेत में किस तत्व की पूर्ति करनी है, जब आपको अनुमान उन्हें बिल्कुल ना होता है और अंधाधुंध जो है वे खाद डालते हैं।
0: भैया देखो एक चीज को और हमारे किसान साथी ध्यान रखें, जैसे आपने जो बात करी ना कि रामू भैया ने तो डेढ़ कट्टा डाल दो, हम दो कट्टा डाल रहे हैं, तो देखो भैया अगर उन्हें अपने खेत की मिट्टी की जाँच करा ली है तो वे तो दे रहे हैं बाकी हिसाब से अपने खेत के लिए उर्वरक खाद और या फिर जो भी चीजें हैं उनको दे रहे हैं, लेकिन हम दे रहे हैं उनकी देखा दूनी, तो ये गलत बात है भैया। देखो उसके लिए आपको भी अपने खेत की मिट्टी की जांच कराना बड़ा जरूरी है।
1: अब वो बात जाती है जसविंदर भैया कि हमारे किसान भैया सोच रहे होंगे कि हम कैसे मिट्टी की जांच करा, और भैया जो मन में आ रही होगी क्यों करावे और कैसे करावे, कई तरह के सवाल जो है उनके दिमाग में घूम रहे होंगे, तो एक एक करके उनके जो भी दिमाग में सवाल घूम रहे हैं ना उनको समाधान कर देते हैं।
0: देखो भैया जो आपने बात करी ना क्यों कराना चाहिए, तो क्यों को जवाब तो हम अपने किसान साथियों के लिए बता दें कि देखो जब हमारे खेत में कोई तत्व कम हो जाता है हमें तो पता ना होती है, लेकिन अब कौन से तत्व कम है कौन से तत्व की अधिकता है जो तो हमें पता चलेगी तब जब हम करेंगे अपनी खेत की मिट्टी की जांच,
1: या भैया जब फसल खेत में खड़ी भी होगी और फसल के जो बढ़वार है किस तरीके से कर रही है, कौन से लक्षण भी प्रदर्शित कर रही है, वहां से हम अपने अनुमान लगा सकते हैं कि जल तत्व की कमी है, लेकिन जांच कराने से पहले ही पता लग जाती है कि किस तत्व की कमी है, और बाकी अगर हम समय रहते पूर्ति कर देते हैं तो भैया जो पौधा में जो आपने देखे ना बदलाव आते हैं, पौधा बढ़ ना रहा हुआ या फल फूल ना दे रहा हुआ, तो ये समस्या ना आएंगी और हमारी फसल से अच्छी पैदावार मिल सकेगी।
0: आपने देखी हुई भैया देखो हमारे जो किसान साथी है ना वे कहते हैं कि हमने लागत तो बहुत लगाई लेकिन हमारी जो फसल है बासा उत्पादन हमको अच्छा ना मिल पाया, कारण जय होता है कि हम लागत जो दे रहे हैं अपने किसान साथी हमारे खेतन में अंधाधुंध दे रहे हैं, यानी कि बिना सोचे समझे दे रहे हैं और लगातार यूरिया एनपीके डीएपी को प्रयोग कर चले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें जब पता ना होती है कि हमें इस समय देने का है।
1: भैया अगर हम किसान बहन को एक उदाहरण के रूप में समझावें तो आपने देखे ना

0: धान की फसल हम लगाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: अगर धान की फसल में जिंक तत्व की कमी ही जाए तो भैया जहां तत्व की कमी होगी ना वहां तो ऐसा लगेगा वो फसल हमारी उल्टी बढ़ रही है, यानी कि जमीन में को बढ़ रही है और जो दूसरी फसल है वो ऊपर को बढ़ रही है। तो ये भैया ऐसी समस्या है कि किसान भैया घबरा जाते हैं।
1: लेकिन घबराने ना है आपको, जो अब खाली समय है या खाली समय ना है बल्कि हमारे जो खेत खाली है, जरूरत है इस समय अपने खेत की मिट्टी की जांच कराने की। अब बात आती है भैया के हमारे किसान साथी कब करावें, तो देखो जब फसल कट जाती है ना तो उस समय सबसे अच्छा समय होता है कि हमारे खेत की मिट्टी की जांच हम करा लें।
0: और इस समय फसल कटी भी है, समय रहते हैं हमारे किसान भैया करा सकते हैं, क्योंकि धान की फसल हमें लगाने हैं बा में अभी समय है और जांच कराने में हमें 15-20 दिन लग जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस समय हमारे किसान भैया अगर एक एकड़ खेत है तो बा में 5-6 जगह से हमें मिट्टी को नमूना लेने होते हैं। जेड आकार को जो नमूना है ना बाई हिसाब से लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है। जो हमारे खेत के चारों कोना है ना उनको थोड़ा अंदर से मिट्टी के नमूना हमें लेने हैं और एक बीच में से लेने हैं। लेकिन भैया नमूना लेने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान रखने पड़ेगा जिससे कि जो हम नमूना ले रहे हैं वो सही हमें प्राप्त ही सके।
1: जैसे भैया
0: जैसे आपने देखी ना कि खेत अगर हमारा एक जो है एक अगले हुए तो बामा हम बीच में नरुआ बना लेते हैं और वह नरुआ में से क्या होता है पानी हमें गुजारने पड़ते हैं तो बामे जो है जो हमारे तत्व हैं वे कम ही जाते हैं, तो वहां से मिट्टी का नमूना ना लेना चाहिए।
1: बिल्कुल भैया।
0: इसके अलावा अगर हमारे खेत के पास में खाद का गड्ढा है तो वहां से भी हमें मिट्टी का नमूना नहीं लेना, क्योंकि वहां से क्या होता है कि जो खाद है ना वो छिटक के इधर उधर पहुंचते हैं तो वहां से उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल।
0: इसके साथ साथ जब आपने देखी होगी ना खेत में मेड़ डाल देता हम, तो जब हम रासायनिक खाद बखेरते हैं तो खाद जो है वहीं पर जाकर टकराता है
1: जो मेड़ होती है
0: और मेड़ के बराबर में इकट्ठे ज्यादा ही जाते हैं, तो वहाँ उर्वरा शक्ति थोड़ी ज्यादा होती है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा।
1: भैया जाके अलावा एक चीज को और ध्यान रखें, आप देख लें कि आपको खेत जैसे कहूँ ऊंचो नीचे तो ना है, आपने कहूँ ऊंचे स्थान से वो ले लो आपने नमूना तो वो भी गलत है। इसके अलावा अगर आप जैसे आपने बताई ना कोनन पे ले रहे हैं तो कोनन के आसपास कहूँ पेड़ खड़े हुए हैं और उनकी छाया वहां तक पहुंच रही है तो भैया ऐसे स्थान पर ना लेने। जाके अलावा कुछ चीजों को और ध्यान रखने हैं, जहां पर पानी भरा ज्यादा है वो तो वहां पर भी आपको नमूना न लेने। इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे और नमूना ठीक से लेंगे ना तभी आपके खेत की मिट्टी की जांच सही से हो भाई।
0: अब जब पता लग गई हमारे किसान भाई को कहां-कहां से नमूना लेने, अब नमूना लेते समय हमें कुछ बातों को ध्यान रखने पड़ेगा। एक तो जाके जहां से हमें नमूना लेने पहले बात सतह जो है वो साफ कर लें,
1: बिल्कुल
0: कूड़ा कबाड़ हटा दें, बाकी बाद हम बी आकार को गड्ढा बनाएंगे, एक खुरपी इधर से और एक खुरपी उधर से जब मारेंगे तो गड्ढा बी आकार को बन जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: बाकी मिट्टी सब निकाल देंगे और जो गहराई अगर हमें धान लेने हैं तो 6 इंच गहराई करनी है।
1: बिल्कुल।
0: और बाकी बाद में हमें करने का ऊपर से नीचे तक एक उंगली के बराबर मोटी परत जो है लेने है, जाना कि ऊपर से मिट्टी भरकर ले आया और बात ही गई
1: ऊपर से लेकर नीचे तक लेने हैं
0: और वह इकट्ठी करनी है और सभी जगह से इस तरीके से हम जो है मिट्टी को नमूना ले लेंगे। लेकिन नमूना लेते समय हमारे किसान भैया गलती क्या कर देते हैं कि पता लगे खाद हम कहीं बखेरने जा रहे हैं तो भाई खाद के कट्टा में भर के लिया है मिट्टी को नमूना,
1: देखो भैया जो ना करना है।
0: तो इस तरीके से हमारे किसान भैया मिट्टी का नमूना ला के घर पर लाएंगे, बारीक करेंगे और छायादार स्थान में सुखाएंगे अगर गीलू है, बाकी बाद बाग को मिला के 4 हिस्सा करेंगे, आमने सामने घटा देंगे और फिर उनको मिलाएंगे फिर 4 हिस्सा करेंगे। ऐसी प्रक्रिया जब तक करनी है जब तक हमारे पास आधा किलो मिट्टी ना रह जाए।
1: बिल्कुल।
0: बाकी बाद में हमें मिट्टी को नमूना कृषि विभाग के तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर या भैया अगर आपके पास में कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पर या कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर आप मिट्टी का नमूना जमा कर सकते हैं और वहाँ से आपको मिट्टी की जांच की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। बाई के हिसाब से आप अपने उर्वरक जब देंगे तो आपकी लागत भी कम होगी, साथ ही साथ आपकी फसल से आपकी बढ़वार भी बढ़िया होगी और उत्पादन अच्छा होगा, तो भैया बाकी बात ही अलग है।
1: बिल्कुल। देखो प्रवीण भैया जो तो ही हमारी बात कुछ कि हमारे किसान साथी मिट्टी की जांच क्यों कब और कैसे करावे,
0: समझ गए होंगे हमारे भैया।
1: बिल्कुल भैया, देखो हमने इस तरह से अपने किसान साथियों के लिए बताई ताकि वे आसानी से जो भी नमूना है वाको लेकर और मिट्टी की जांच करा लेंगे और आगे से ध्यान रखेंगे कि भैया जो चीज की कमी है वही अपने खेत में देंगे और फसलों को देंगे तो उनकी जो लागत है वो भी कम हो सकती है और भैया उनकी जो उत्पादन है वो भी बढ़ सकते हैं।
0: भैया देखो बातें तो अपने काफी कर ली और आज जैसे आपने पहलू कई किसान भाई को बताओ कि हम आज कार्यक्रम कृषि संघ का समाधान लेकर आएंगे, तो भैया आओ शुरू करते हैं कृषि संघ का समाधान कार्यक्रम।

0: हम शुरू करते हैं कृषि शंका समाधान पत्रोत्तर कार्यक्रम। और जाके अंतर्गत सबसे पहलो पत्र हमें मिलू है जिला बदायूं सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर 1 से, और लेखन वाले हैं धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, ध्यानपाल कश्यप, संजय कश्यप, अनमोल कश्यप, अंश कश्यप, कुमारी करिश्मा कश्यप, कुमारी मुस्कान कश्यप। और भैया जाई समस्या से संबंधित एक पत्र हमें और मिलू है ग्राम बा पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से, लिखन वाले हैं सहारनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान।
1: और भैया इनने समस्या लिख भेजी है कि इन्होंने 5 बीघा भिंडी लगाए रखी है और वहां में सफेद रंग को कीड़ा दिखाई देता है
0: बिल्कुल,
1: और जिससे भिंडी खराब ही रही है। तो देखो भैया भिंडी की फसल में कीड़े की समस्या ज्यादा रहती है क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि कभी नमी ज्यादा है, कभी भैया गर्मी ज्यादा है, तो ऐसे में कीड़ों की बढ़वार अच्छी तरीके से होती है। समय रहते देखभाल करें, साथ ही साथ जो काने फल ही रहे उनको तो भैया तोड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें।
0: अच्छा भैया,
1: सबसे बड़ी गलती तो हमारे किसान भैया यहाँ पर जय करते हैं कि फल तोड़ते हैं और खेत के कोना पर डाल दें।
0: बिल्कुल भैया,
1: वहां से होता है कि वहां से सूंडी लेकर के बाको जो साइकिल है ना, जो चक्र है वो चलते रहते हैं, वो खेत में दोबारा आ जाती है। तो उसको जो है चक्र को तोड़ने के लिए जितने भी हमारे काने फल हैं उनको तोड़ के और आप जो अगर दबा देंगे ना मिट्टी में तो वो चक्र उनको टूट जाएगा,
0: यानी कि खेत से बाहर कर दें तो और बढ़िया बात है, और किसी मिट्टी में दबा दें।
1: इसके अलावा भैया देखने में जब आती है ना कि जब हम फल तोड़ देंगे तो बहुत कम मात्रा में जो है सूनिया जो है खेत में रह जाएंगी।
0: बिल्कुल,
1: तो सबसे पहले तो हम यही कहते हैं किसान भाइयों से कि नीम का तेल का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे होता यह है कि हमारे किसान भाइयों को जो हम दवा लगा रहे हैं उसका ज्यादा असर नहीं पड़ता है और अच्छी तरीके से कीड़ों की रोकथाम हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अगर हम रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करेंगे ना तो उससे होता यह है कि हम कुछ समय तक फलों की तोड़ाई नहीं करनी चाहिए और रासायनिक दवाओं का फसलों पर कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: इसके साथ साथ जो कुछ कीड़े रोकने के लिए ना भैया ट्रैप आते हैं उनको ट्रैप को लगा सकते हैं, या भैया हमारे किसान भैया समस्या को समाधान ना ही पा रहे तो रासायनिक दवाओं को भी इस्तेमाल करने पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: तो देखो भैया सब्जी हमारी है भिंडी की फसल, इसके लिए एक दवा आती है नोमाब्लुरान प्लस इमामेक्टिन नाम की, जाकि 2 ml दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर हमारे किसान भैया स्प्रे करेंगे तो भिंडी में जो समस्या है ना कीड़ों की वो समाप्त हो जाएगी और हमारी भिंडी जो अच्छी तरीके से बढ़वार करेगी। लेकिन एक बात जरूर बता दें किसान भाई इनको,
0: वो का भैया
1: स्प्रे करने के बाद कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन तक भिंडी ना तोड़े तो ही ज्यादा बढ़िया रहेगा।
0: मतलब अगर उनके खेत में फसल तैयार है तो भाई भैया पहले ही निकाल लें, यानी कि वो पहले ही तोड़ के और बाजार भेजन को काम करें, और जो हमारे प्रवीण भैया ने बातें बताई उस हिसाब से अगर हमारे किसान साथी जो समस्याएं हैं उनकी उनको समाधान हो सकता है। और प्रवीण भैया देखो जो अगलो पत्र मिलू है हमें चटरा कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से, लिखन वाले हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही मौर्य और स्वाति मौर्य। जाके अलावा एक और पत्र मिलू है हमें
1: जो पत्र भैया
0: ग्राम मेघा नगला जदीद से, लिखन वाले हैं सतीश, राधेश्याम, राजीव, मोहनलाल, धर्मवीर, प्रमोद, मुनीस, धर्मपाल, श्यामपाल, रामोतार, कृष्ण गोपाल, मनोज और देवकी नंदन, चुन्नीलाल महेंद्र। और भैया इनकी जो समस्या है वो है गन्ने के खेत में सूढ़ी लग रही है और जो पत्तियां है ना वे भैया ऊपर से झुलस रही है, और जाके साथ साथ जो भैया खेत है बामे दीमक की भी समस्या देखने को मिल रही है, कृपया सुझाव दें, हम सभी जो किसान हैं वो बड़ी दिक्कत में हैं।
1: भैया देखो दो समस्याएं इन्हें बताई, एक तो कीड़ा लग रहा है गन्ने की फसल में और दूसरी समस्या बताई कि पत्तियां जो है झुलस रही हैं ऊपर से। तो देखो भैया जो पत्तियां झुलस रही हैं आपने देखी पीछे अब गर्मी काफी ही गई,
0: बिल्कुल,
1: और अगर सिंचाई समय से ना करी होगी तो जो है पत्तियां झुलसेंगी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अब बरसात पड़ गई आसपास के क्षेत्र में तो वो पत्तियां झुलसन वाली समस्या तो लगभग हमें उम्मीद है कि वो खत्म ही गई होगी, लेकिन कीड़ों की समस्या जो है वो अभी भी होगी। और इन्होंने कीड़े भी बताया भैया 2 तरह के, एक तो बताई इन्हें कि दीमक की समस्या है, तो देखो दीमक की समस्या के लिए तो हमारे किसान भैया इमिडाक्लोपिड नाम की दवा जो आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या क्लोरो नाम की दवा तो हमारे किसान भाई सभी जानते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इमिडा का इस्तेमाल करेंगे ना तो दोनों तरह के कीड़े जो हैं उनकी रोकथाम हो जाएगी।
0: अच्छा भैया,
1: 2 ml दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर हमारे किसान भैया स्प्रे करेंगे तो इस तरीके से इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन भैया अगर तब भी ये समस्या का समाधान ना हो तो दीमक की समस्या का समाधान हो ही जाएगा, तो भैया एक दवा जो है प्रोपोनाफॉस प्लस साइफरमेथेन आती है, ये 500 ml दवा प्रति एकड़ के हिसाब से अगर इस्तेमाल कर देंगे ना तो जो सूंडी की समस्या है ये जरूर खत्म हो जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: और इसके बाद में हमारे जो गन्ने की फसल है वो अच्छे तरीके से बढ़वार कर सकेगी।
0: प्रवीण भैया देखो, जो अगलो पत्र हमें मिलू है ग्राम भैंसोड़ी शरीफ तहसील मिलक विकासखंड मिलक जिला रामपुर से, लिखन वाले हैं रामेश्वर दयाल, ओमकार परमेश्वरी उर्फ बबलू, विनोद प्रेम शंकर, चरण सिंह और अदनान। जाके अलावा एक पत्र हमें और मिलू है कस्बा जादोपुर तहसील बरेली ब्लॉक भोजीपुरा जिला बरेली से, लिखन वाले हैं दीपक मौर्य, टेकचंद, पातीराम, खूब करण लाल, रोहित छत्रपाल और अंकित। जाके अलावा भैया एक पत्र हमें और मिलु है और बामे भी लगभग सेम समस्या है, ग्राम रामपुरा तहसील मीरगंज जिला रामपुर जिला बरेली से, लिखन वाले हैं राम कुमार वर्मा, गंगा देई और दीन दयाल।
1: तो इनके भैया का समस्या है जा तो बताओ।
0: भैया इनकी समस्या है पॉपुलर की बगिया है और उसमें दीमक लग रही है, कुछ पेड़ ऊपर से सूख रहे हैं यानी के ऊपर तक चढ़ भी गई है और ऊपर से सूख रहे हैं, क्या करें ताकि जो है उनकी जो समस्या है उसको समाधान हो जाए, और जाके अलावा पेठा की फसल करना चाह रहे हैं तो कब और कैसे लगावें।
1: देखो भैया इनने दो ही समस्या बताई, एक तो पॉपुलर की बात बताई। देखो भैया पॉपुलर में करने का है कि पॉपुलर के इनने जाना बताया कि पौधा कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो देखो भैया पॉपुलर की पौधा से अगर हमारे दीमक की समस्या आ रही है तो समाधान करने का तो जय है कि वहां पानी करें, सिंचाई करें, सिंचाई के साथ में भैया चाहे हम वो क्लोरोपाइरीफास नाम की दवा लगा दें या भैया क्या नाम है वो जो हमने बताया था ना उनको कि इमिडाक्लोपिड
0: उसका भी हाँ, कर सकते हैं,
1: तो उसकी भी अगर वो दवा का इस्तेमाल करेंगे तो आराम से उनकी जो दीमक की समस्या वो खत्म हो जाएगी। और भैया जो पेड़ पर लग गई तो इतनी जल्दी खत्म ना होती है, हम दवा लगा रहे हैं नीचे, तो इस्तेमाल करें स्प्रे करें तो ज्यादा बढ़िया रहता है और अच्छी तरीके से उनकी जो फसल है वो जो पॉपुलर की खेती है वो बढ़िया रहेगी, और समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। जब अन्य पौधे रहते हैं ना खेत में तो ज्यादा समस्या रहती है।
0: अच्छा भैया एक चीज और हमारे किसान साथी करते हैं, क्योंकि जो पॉपुलर करने वाले किसान साथी हैं अगर उनके पेड़ पर दीमक चढ़ जाती है और देख लेते हैं कि हमारी इतनी आसानी से बाकी समस्या को समाधान ना हो पा रहा, तो किसी चीज की सहायता से भी पहले बाको छुटा देते हैं यानी कि गिराए देते हैं नीचे और आसानी से गिर भी जाती है क्योंकि ऊपरी साइड में लगती है, और फिर बाकी बाद में उन पर कोई छिड़काव या फिर दवाई लगा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं हमारे किसान साथी।
1: देखो भैया ये एक समस्या है दीमक की, अगर ऊपर है लेकिन भैया दीमक जो है नीचे जड़ से लगती है अब वो ऊपर को बढ़ती है, जब जड़ ही खराब हो जाएगी तो भैया पौधा का काम करेगा।
0: बिल्कुल,
1: तो इसलिए हमारे किसान भैया यही कर रहे हैं अगर ज्यादा समस्या है तो वहां जो है वो पौधों को हटा दें, नए पौधे लगा दें, और समय समय पर इमिडाक्लोपिड या क्लोरोपाइरीफास नाम की दवा जो आती है उसका इस्तेमाल करते रहें, और लगाते समय पौधों को जरूर से जरूर नीम की खली और क्लोरोपाइरीफास नाम की दवा जो लगावें तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
0: और भैया अगर ये इनने लिखी होती कि हमारे पौधा कितने समय के हैं तो इनकी समस्या को समाधान और अच्छी तरीके से करो जा सकते हो, क्योंकि अभी उनकी जो दवाई की मात्रा है वाको हम प्रॉपर न बता सकते हैं, क्योंकि पता ना उनके पौधा जो है वो कितने समय के हो चुके हैं, तो उस हिसाब से भी थोड़ी सी उनकी समस्या जो है लगभग हम समझ रहे हैं कि समाधान हो जाएगा।
1: और भैया इनके एक समस्या और इनने कही कि पेठा लगाने की सोच रहे हैं, तो देखो भैया पेठा लगाने का सही समय जो है फरवरी मार्च होता है।
0: बिल्कुल,
1: और अब जो है बरसात के समय में जून जुलाई में हमारे किसान भाई जो लगा सकते हैं, पेठा लगाने से अच्छी आमदनी हमारे किसान भाई को मिल जाती है, क्योंकि जैसे आपने देखी ना पेठे की मिठाई बनती है और जो अपने बरेली में भैया बहुत अच्छी तरह से बनती है।
0: बिल्कुल भैया,
1: अच्छी मांग है, हमारे किसान भैया इसको कर सकते हैं अच्छी तरीके से, अगर करेंगे तो उम्मीद है कि अच्छी उनको पैदावार मिलेगी और अच्छा मुनाफा उनको मिलेगा। भैया देखो जे तो हमारे किसान भाई की समस्या को समाधान को ही। लेकिन भैया हम देख रहे हैं अभी आपके पास और भी पत्र हैं, और हम अपने किसान भाइयों से ये भी कहेंगे कि जो हमारे किसान भैया कार्यक्रम में अभी जुड़े हैं वे अगर हमें फ़ोन करके भी जुड़ना चाहते हैं तो वह हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0595-2324-326। इस नंबर पर हमें फ़ोन करके वो अपनी खेतीबाड़ी संबंधी समस्या जो है उसका समाधान करा सकते हैं।
0: बिल्कुल प्रवीण भैया, लेकिन देखो जो अगले कुछ पत्र और हैं उनकी भी समस्या को समाधान हम अपने किसान साथियों को करवा दें। ग्राम धनेली उत्तरी मिलक रामपुर से लेखन वाले हैं हेतराम, सोमपाल, छत्रपाल, सतीश, जतिन बसाथी, और जाके अलावा एक पत्र और मिलू है ईश्वरपुर

0: बिलासपुर रामपुर से। लिखन वाले हैं जयेंद्र कुमार, सूर्य प्रकाश, छत्रपाल, सुनील, भानु, गुड्डू और परिवार वाले।
1: इनके भैया समस्या का है,
0: इनकी समस्या है भैया धान की खेती करते हैं जी और अच्छी पौध तैयार हुए उसके लिए क्या करें।
1: देखो भैया बहुत ही अच्छी बात इन्होंने पूछी है, क्योंकि जैसी हमारी पौध तैयार होगी वैसे ही हमें उत्पादन मिलेगा। देखने में आती है ना हमारे किसान भाई करत कहा है कि पौध जब डालते हैं ना तो बहुत घनी डाल देते हैं, भाषा होत का है पौध जो है वो पतरी ही जाती है और फिर हमारे जो लेबर है जो पौध लगाती है वो आपने देखी है ना कि वो एक पौधा ही लगाती है
0: बिल्कुल,
1: जबकि हम लोग कहते हैं कि दो या तीन पौधा लगाओ। देखो भैया हम लोग तो कहते हैं लेकिन लेबर है ना लगा पाती है
0: भैया, देखो बे करते हैं जल्दी क्योंकि उन्हें कम समय में और ज्यादा काम करने
1: तो हैं। इसलिए हमें पौध जब तैयार करें तो अच्छी पौध हो मोटी हो तो एक पौधा लग जाए तो भैया अच्छी तरीके से बढ़वार करते हैं
0: बिल्कुल।
1: तो सबसे पहले हमें जो काम करने हैं कि पौध की जो जगह है वो कम ना रखनी है, वो ज्यादा ही रखने हैं, साथ ही साथ अच्छी उन्नत प्रजातियों का बीज लें और प्रमाणित या भैया आधारीय बीज लें तो ज्यादा बेहतर है
0: बिल्कुल।
1: हमारे किसान भाई करत कहा है कि आसपास की दुकान से ले आते हैं, भैया हम तो यही कहेंगे कि आप जो है किसी विश्वसनीय सूत्र से लें, कृषि विभाग में बीज आता है वहां से लें, या जो सीड प्लांट हैं जिन पर आपको भरोसा ज्यादा है उनसे लें, आधारीय बीज लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा।
0: और हमारे कुछ किसान साथी तो जो करता ना कि अपने घर को ही बीज बोन को काम करता है,
1: लेकिन भैया घर को बीज लेते हैं तो बामे जमाव कितना होगा, बामे कितनी बीमारी लगाएंगे इस बात की पता ना चलती है, क्योंकि आपने देखी ना धानों में बीमारी की समस्या बहुत ज्यादा है। तो हमारे किसान भैया अच्छे बीज लें, साथ ही साथ बीज को उपचार जरूर करें
0: बिल्कुल।
1: बीज उपचार करेंगे तो समस्याएं कम होंगी और जब भैया बीज की पौध डालें तो पहले जवाई अच्छी तरीके से बनावें और जवाई डालने के बाद में कहत जाए हमारे किसान भैया कि अगर 15 बीघा में आपको धान बोने हैं लगाने हैं मतलब तो 1 बीघा में पौध जरूर से जरूर डालें। अब हमारे किसान भाई करत का हियर कर लेते हैं लालच, बाय जो आध बीघा में डाल देते हैं,
0: कम खेत को चयन करते हैं यानी कि थोड़े से एरिया को वो चुनाव करते हैं और बाद में पौध डाल लेते हैं।
1: तो हमारे किसान भैया यही करें, इसके अलावा समय समय पे जो पौध है उसको तैयार करते रहें, देखभाल करते रहें और पौध की रोपाई करने से पहले एक स्प्रे दवाई का जरूर करें जिसमें नीम का तेल है। अगर नीम के तेल का स्प्रे करने के बाद 2 दिन बाद अगर हम पौध उखेड़ कर रोपाई करते हैं तो आपने देखी होगी ना कभी हमने आज ही पौध लगाई और भैया 2 दिन बाद हमें कीड़ा दिखाई देने लगता है
0: बिल्कुल,
1: तो वो होता कहा है कि वो पौध के संग जाते हैं। और नीम का तेल एक ऐसा तेल है जो वो सुणियों को मारते हैं, अंडों को मारते हैं
0: बिल्कुल भैया।
1: तो अगर पत्ती के संग में अंडा जा रहे हैं पौधा के संग
0: या जो कीट जा रहे हैं
1: तो उन दोनों को वो नष्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो रोपाई करोगे खेत होएगा बामे एकदम कीड़ा ना लगेंगे और हमारी फसल जो है अच्छी तरीके से बढ़वार कर सकेगी। इसके साथ साथ एक गलती और करते हैं
0: वो का भैया,
1: वो ये है कि जब हमारे किसान भैया पौध डालते हैं तो नीचे जो है एनपीके नहीं डालते हैं हम, जबकि कहते हैं किसान भाइयों से नीचे जो है एनपीके खाद जरूर दें, क्योंकि पौध जो है जब जड़े अच्छी बढ़वा करेगी तभी जो है जब हम रोपाई करेंगे तो अच्छी जड़ें होंगी तो अच्छा विकास करेंगी, इस बात का भी हमारे किसान भैया ध्यान रखें
0: बिल्कुल। प्रवीण भैया अगर इस तरीके से हमारे किसान साथी काम करेंगे तो हमें उम्मीद है जो उनकी धान की फसल जो भी ले रहे हैं बस अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और भैया देखो जो अगलो पत्र मिलू है हमें ग्राम पिपौली पोस्ट नगरिया शेरगढ़ बरेली से, लिखन बारे हमारे किसान भैया हैं लाला राम शर्मा, वीरेंद्र पाल, तोताराम, संजीव, दुली राम, लेखराज बसाथी। ग्राम कमुआ मकरुका अटामांडा बरेली से लिखन वाले हैं सुरेंद्र पाल गंगवार, शिशुपाल गंगवार, संतोष, अंशी, चिंकी, अरु और इनके मम्मी पापा। भैया इनकी भी समस्या लगभग ऐसी ही है कि इनने नींबू के पेड़ लगाए हैं, नींबू के पेड़ जो है वो इनके 3 से 4 साल के हो चुके हैं और काफी अच्छे फल भी आते हैं लेकिन भैया फल रुक ना पाते हैं।
1: देखो भैया फल ना रुकते हैं उसके कई वजह हैं, एक तो हमारे किसान भाई करत कहा है कि जब घर पे लागू होता है ना तो बार बार सिंचाई करते हैं, उससे होता है कि फूल और फल जो है झड़ते हैं, समय रहते सिंचाई ना करने हैं हमारे किसान भाई, जाना कि सुबह को उठे तो सिंचाई कर दी, संजा को उठे तो सिंचाई कर दी।
0: देखो भैया जब जरूरत हुआ पौधा में सिंचाई तभी करना चाहिए।
1: इसके अलावा एक बोरोन तत्व की कमी होती है तब भी फल और फूल गिरते हैं, उसका भी हमें इस्तेमाल करना है, बोरेक्स नाम की दवा जो आती है उसको लेके हमारे किसान भैया इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा घर के आसपास में आपने देखी ना कि पोषक तत्व की कमी हो जाती है और पोषक तत्व कम होते हैं तब भी जो है फल फूल गिरते हैं, तो इसके लिए हमारे किसान भैया जो देसी गूरा है इसको डाल सकते हैं या बर्मी कंपोस्ट खाद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस्तेमाल करने का है कि जड़ के आसपास की जो मिट्टी बाय दे हटाए और वहां पर जो हमारा देसी गूरा है या जो बर्मी कंपोस्ट खाद है उसको लगा दें, बाकी

0: बाद में हल्की सिंचाई करें, साथ साथ जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनका मिक्सचर आता है बाजार में, उसको लेकर थोड़ा अगर जड़ों के आसपास मिला देंगे और सिंचाई 3-4 दिन बाद करेंगे तो उनके जो फल हैं अच्छे रहेंगे और अच्छी तरीके से बढ़वा करेंगे। लेकिन भैया एक समस्या और भी आती है,
1: वो कौन सी भैया?
0: कि फल हमारे कभी कभी होता क्या है कि माहू कीट लग जाता है, या भैया आजकल आपने देखी ना मिलीबग जो सफेद रंग की कीड़ा होता है, वो भी हमारे फलदार पौधों को लग रहा है और उसकी वजह से जो फल हमारे गिर रहे हैं।
1: भैया एक चीज और देखी जाती है कि हमारे पौधा कौन सी जगह पर लगे हुए हैं, कैसी जगह पर लगे हुए हैं और किस साइड से लगे हुए हैं, कभी कभी इन चीजों को भी प्रभाव पड़ता है। और दूसरी चीज यह है कि हमारे जो किसान साथी हैं, अगली बार अगर ऐसी कोई समस्या है हमारे किसान साथी की, तो वे जरूर लिखें कि उनके पौधा किस जगह पर है, खेत में है, घर में है, या फिर किसी दीवार के सहारे लगे हुए हैं, या फिर कैसी जगह पर लगे हुए हैं, इन चीजों को जरूर लिखें। और जो पेड़ को आकार है उसको भी लिख सकते हैं, कभी कभी हमारा पौधा 3-4 साल को तो ही जाता है लेकिन बढ़वार बहुत अच्छे तरीके से ना कर पाता है तो भी हमें समस्या देखने को मिलती है। और हम जो दवाई बताते हैं भैया वो कभी कभी ज्यादा लग जाती है या फिर कम रह जाती है, तो बस चीज को भी ध्यान रखें।
0: देखो अगर घर पर पौधा लगा हुआ है तो हमारे किसान भाई दवा के चक्कर में ना पड़े, सबसे अच्छा तरीका है कि जो अपने देखी ना मोटर वाली टंकी होती है स्प्रे मशीन जैसे हम कहते हैं, तो बाग को जो है प्रेशर बढ़ाए गए और ऐसे ही अगर खाली पानी को या ज्यादा हो तो सरफ डाल लो वहां में थोड़ा सा और ऐसे ही स्प्रे करोगे ना तो जितना कीड़ा है
1: फल
0: वो सब नीचे गिर जाएगा
1: बिल्कुल।
0: और बाकी बात थोड़ी झाड़ू मार दे, साफ सफाई करते जाए
1: और भैया कीड़े को दूर फेंक दो,
0: तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन भैया अगर ज्यादा बड़ी मात्रा में अगर है तो जो है हमें दवा लगानी पड़ती है। लेकिन हमारे हमारे अगर 4-5 पौधा है तो इस तरीके से भी हम रोकथाम कर सकते हैं।
1: देखो भैया पत्र तो हैं बहुत सारे लेकिन इन पत्रों को हम करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में शामिल। और भैया देखो कृषि संघ का समाधान कार्यक्रम आज को बस यहीं तक।

0: जसविंदर भैया,
1: हाँ प्रवीण
0: देखो
1: भैया,
0: हमारे किसान भाई ने जितने पत्र भेजे ना, सब तो हम शामिल ना कर पाए, लेकिन हमने कोशिश करी ज्यादा ज्यादा पत्र शामिल सकें और उनकी जो समस्याएं उनको समाधान तो दो कर। और जब समस्या को समाधान जाता तो क्या होता है
1: भैया, देखो मन ही जाता खुश
0: और खुशी के मौके पे मन करता है मनोरंजन को।
1: बिल्कुल, तो भैया आबो जा लोकगीत के माध्यम से अपनों और अपने किसान साथियों को करवा देते हैं मनोरंजन।

0: प्रवीण भैया
1: देखो हमारे किसान साथियों को लोकगीत के माध्यम से मनोरंजन होगा हमें उम्मीद है और अब आगे कुछ बात करें, बात से पहले सुन लेते हैं जो संदेश।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: और प्रवीण भैया देखो, अब कार्यक्रम में समय है कृषि संकेत को।
3: और भैया देखो, आजकल आप देख रहे हो ना कि हमारे किसान भैया खेती बाड़ी में लागत बढ़ाते जा रहे हैं और उत्पादन तो बढ़ ना रहा है लेकिन लागत बढ़ती जा रही है, जैसे हमारा शुद्ध लाभ जो है वो कम होता जा रहा है।
2: भैया देखिए, कई कारण है। एक तो कारण जो है कि हम लगातार अंधाधुंध रासायनिक खादन को, दवाइयों को प्रयोग कर चले जा रहे हैं,
3: और दूसरा भैया जो है कि हम फसलों को हेर फेर करना बो रहे हैं, लगातार गेहूं धान ही लगाते चले जा रहे हैं।
2: बिल्कुल।
3: इसके अलावा देसी घूरो और बर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और खेत की परती छोड़ना, ये चीजें हमने सब दही भूल।
2: देखो भैया, बाको एक कारण और हुआ है, क्योंकि अब हम पर बहुत दबाव है। आप देख रहे हो कि आप कोई भी खेत हुआ, आपने अगर एक फसल ली तो हमारे किसान साथी मुश्किल से 5 से 10 दिन के अंतराल को ही अंतर देते हैं दूसरी फसल लगाने में, और तुरंत ही बामा अगली फसल की तैयारी कर देते हैं।
3: और दूसरी बात जो है कि जो हम देसी घूरो पहले देते हैं ना, अब हमारे यहाँ जानवर कम ही गए तो देसी घूरो ही ना पा रहे, लेकिन बाकी जगह हमारे किसान भैया अगर वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर लें और वो दे दें तो बा के मुकाबले बा में ज्यादा उर्वरक होते हैं, ज्यादा तत्व होते हैं और हमारी फसलों को कम मात्रा में अच्छे उत्पादन हमें मिल सकते हैं।
2: और भैया एक और जाको अच्छो वो है, लाभ है कि अगर हम वर्मी कंपोस्ट खाद को प्रयोग कर रहे हैं तो जो हम लगातार कह रहे हैं ना कि हम रासायनिक खादन को प्रयोग कम करें, रासायनिक दवाइयों को प्रयोग कम करें, तो अगर लगातार हम वर्मी कंपोस्ट खाद देंगे अपने खेतन के लिए तो बाको प्रयोग ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा।
3: भैया अब जाको बनाने के लिए हमारे किसान भैया करने का है कि एक हफ्ता पुराना गोबर जो है हमारे किसान भैया 3x7 के गड्ढा में लाड़ दें और बाकी बाद में जो केंचुआ है ना उनको डाल दें।
2: और भैया
3: केंचुआ जो है ना, आप जो है विदेशी तो है ही, लेकिन जय गोपाल नाम के

0: कंकड़ पत्थर, जो पन्नी उन्नी ये चीज़ें ना होती हैं खेत में, ना पड़ती हैं खेत में,
1: बिल्कुल।
0: किसी प्रकार को कोई भी प्रभाव ना पड़ता है।
1: और एक चीज़ और है भैया, इन चीज़ों को अगर हमारे किसान साथी ध्यान रखेंगे तो हमें उम्मीद है कि बर्मी कंपोस्ट से बनाए के अपने खेत में जब बाको प्रयोग करेंगे तो लागत तो कम होगी है, उत्पादन भी उनको अच्छा मिलेगा।
0: हम तो किसान भाइयों से यहाँ पे ये कहते हैं कि आप इसको थोड़ी मात्रा में बनाना शुरू करें और सब्जी वाली फसलों में लगावें और बाकी बात सब्जी खा के देखें तो
1: बिल्कुल
0: देखो
1: भैया,
0: कितना अंतर दिखाई देगा।
1: बिल्कुल भैया। देखो जो तो ही कुछ बात बर्मी कंपोस्ट खाद के लाभ, और अब देखो कार्यक्रम में बहुत अधिक समय ना है लेकिन चलत चलत हम बता दें कि कल के कार्यक्रम में काका तो कल चर्चा को विषय होगा हरी खाद मिट्टी के लिए वरदान।
0: और एक जानकारी करवाई जाएगी जिसका विषय होगा गर्मियों में दुधारू पशुओं की देखभाल, इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर मनीषा रानी।
1: और साथ ही सुनवाएंगे एक प्यारा सा लोकगीत, और कृषि संकेत के अंतर्गत जो विषय होगा वो होगा गर्मी में गहरी जुताई के लाभ।
0: तो ये सारी कार्यक्रम में हमारी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा भैया आप समय ही चलोगे कि किसान भाई इनको मौसम को हाल बता दो जाए।
1: देखो भैया कल अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना व्यक्त करी जा रही है,
0: वायुमंडलीय आर्द्रता 41%,
1: और
0: हवा
1: हवा
0: की दिशा जो है पूर्व उत्तर पूर्व दिशा से हवा बहने की संभावना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा।
1: बिल्कुल जो तो हो मौसम को हाल जाके अनुसार हमारे किसान साथी खेती बाड़ी के काम कर सकते हैं। और अब कार्यक्रम में बिल्कुल समय ना है तो अपने भैया जसमिंदर
0: और प्रवीण कुमार को दो कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति कर लें
1: राम
0: दोनों भैया। राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं शास्त्र संगीत कार्यक्रम। राग है छाया, बांसुरी वादन है J.N. गोस्वामी का, तबले पर हैं मुन्ना खां।

इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। राग था छाया, बांसुरी वादन था GN गोस्वामी का, तबले पर थे मुन्ना खां। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। ये समय है कार्यक्रम विवरण का।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: सात बजकर 31 मिनट पर आज आप हमारे केंद्र से सुन सकेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। रात्रि 8 बजे होगा कार्यक्रम गीत गाता चल। रात्रि 9:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष पर विशेष कार्यक्रम रूपक। रात्रि 10 बजे कार्यक्रम होगा नात कव्वाली, कलाकार हैं हसनैन नियाजी व साथी। 10:30 पर कार्यक्रम होगा राग रंग, कलाकार हैं अवधेश कुमार गोस्वामी। 6:05 का दैनिक कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल सवेरे 6:05 पर। 6:30 पर कार्यक्रम होगा आज का चिंतन। 6:35 पर कार्यक्रम होगा स्वास्थ्य संदेश। 6:45 पर कार्यक्रम होगा श्री रामचरित मानस गान की भाग संख्या 292। 7:00 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम लोक रंग। 8:00 आज के शेष और कल सवेरे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र एआई कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने भी आज अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या भौतिक रूप से भरकर जल्द से जल्द जनगणना प्रक्रिया पूरी करने की अपील की।
2: देखिए, जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके। आज जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
1: इसी क्रम में डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी आज स्वगणना की प्रक्रिया

0: पूरी की। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में आज जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से जनगणना 2027 स्वगणना पर सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि स्वगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कल और 10 मई को किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगी, जिसमें कुल 4,64,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ प्रशांत कुमार ने आज 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्री पेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्ट पेड मोड में संचालित करने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्ट पेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहां एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2024 के आंकड़ों ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को दर्शाया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय क्राइम रेट 252.3 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट 180.2 रहा। कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश का देश में 18वां स्थान है। एक रिपोर्ट।
2: एनसीआरबी रिपोर्ट में हत्या के मामले में देश में यूपी का स्थान 29वां है, जबकि हत्या के प्रयास के मामलों में ये 26वें स्थान पर है। वहीं फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में राज्य पूरे देश में सबसे नीचे 36वें नंबर पर है। दुष्कर्म के मामले में यूपी देश में 24वें स्थान पर है, जो राज्य में बेहतर हुई कानून व्यवस्था को बताता है। जेलों में क्षमता और अनुशासन के मामले में भी यूपी का प्रशासन अन्य राज्यों से बेहतर है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि ये सुधार सतत और सुविचारित प्रयासों का प्रतिफल है। पिछले 9 वर्षों में आधुनिक पुलिस स्टेशन, सतर्क एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने पर समर्पित महिला हेल्प डेस्क, कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट और संगठित अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। बुलंदशहर में आज नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 2 दिनों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 10 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
3: 9 मई को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ छिटपुट वर्षा होने की संभावना है, बहुत लाइट रेल से छिटाकसी हो सकता है, बाकी उसके बाद मौसम साफ है। फिर से जैसा कि नया पश्चिमी विक्षोभ 10 से 11 तक

0: से एक्टिवेट हो रहा है, जिसके वजह से 12 तारीख से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल पार्ट में फिर से धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ेगी, हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
1: आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
2: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
3: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
2: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
4: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
5: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र है उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
2: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र एआई कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कुछ गीत भजन। कलाकार हैं रीता शर्मा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत में रीता शर्मा से कुछ गीत भजन। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गाता चल।

कार्यक्रम गीत गाता चल में हमारे पास पहला एसएमएस आया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दत्रेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मणिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपिया से दुर्गाराम साहू, गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बॉबी खान, शमा खान, मिक्की खान, बुशरा खान, आसिम खान, ज़िला अस्पताल के पास से गज्जन खान, शमा परवीन, शमशाद अली अज़म, गुलफशा शहनाज, बाबू अंसारी, रजिया गफ्फार, हबीब अहमद इदरीसी। मनकरा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, कनक, शुगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह। और साथ ही साथ हमें एसएमएस भेजा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। और साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहा है दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम।

गेट कासगंज से, एम असलम सैफ़ी, ज़ैबुन निशा बेगम, अकरम सैफ़ी, आबाद खान, और रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। तो आइए साथियों सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में कहो ना प्यार फिल्म से आप सभी की पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम गीत गाता चल में हमारे पास अगला मैसेज आया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। फरमाइश करने वाले हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, सजदा रानी, हिना कौसर। और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है सरगुजा मैनपेट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, अदीबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफ़र हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी, महसोली सीतमगढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, अमन अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, बच्चू शेख, चीना शेख, कोआत बिहार से शेख जफ़र हसन, नरगिस जफ़र, नूर महल महसूल से हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, अरहान बाबू, हमज़ा बाबू और मुजम्मिल बाबू। तो आइए साथियों सुनते हैं कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में कर्ज़ फिल्म से आप सभी की पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम में हमारे पास अगली फरमाइश आई है एसएमएस करने वाले हैं पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिहारा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन बहारुन्निसा असलम हुसैन एडवोकेट डॉक्टर महमूद हसन बीबीपुर से मकसूद हुसैन नाजिम अली मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पोहरकर नर्मदा पोहरकर सुनील पोहरकर साहिल पोहरकर कुमारी सुजाता पोहरकर पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी आलम अंसारी सईद मुख्तार अंसारी असद अंसारी भटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग अंजू नारंग और मोहित नारंग एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना मराठा भाऊ मराठा गणेश दादा मराठा कार्तिक भाऊ मराठा परी संजना मराठा मालती चौधरी स्वाति प्रियाग चौधरी ललिता नारायण खर्चे। तो आइए साथियों सुनते हैं सुनिधि चौहान और के की आवाज़ में खट्टा मीठा फिल्म से आप सभी की पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल अपने दोस्त रिजवान के साथ। हमारे पास अगली फरमाइश आई है इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूर जहां, डब्लू नूर जहां, सईद नूर जहां, वसीम नूर जहां, वलीउल्ला नूर जहां, राजनंदा गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और अदीबा तिवारी,

साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहा है अली का डबवाली से बसंत सिंह चन, राजकुमार सुनीता, कुलदीप गांधी, डोंगरगांव जिला राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभैये, राधिका गजभैये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभैये। और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे और खुदरी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें SMS की है महादेव घाट अम्बलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। तो आइए साथियों सुनते हैं KK की आवाज़ में काइट्स फिल्म से आप सभी की पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल अपने दोस्त रिजवान के साथ। हमारे पास अगला SMS आया है बेरडी से। फरमाइश करने वाले हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर। और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जेतेद बिरक और मीका बिरक। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफ़र हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौहणकर राही, श्रीमती सरिता गौहणकर, प्रिंस एकांश गौहणकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गौहणकर, प्रणीता गौहणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गौहणकर, श्वेता सुमित गौहणकर, कुमारी ध्वनि गौहणकर परी। और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। तो आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज़ में क्या सुपर कूल है हम फिल्म से आप सभी की पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल अपने दोस्त रिजवान के साथ। कार्यक्रम में हमारे पास अगली फरमाइश आई है, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां। और साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहा है भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाथी प्रियाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाव मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण खड़चे। और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबीहा निवादा गाजीपुर से, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से, अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर। जातुका किशनपुर से आलम दिल।

का शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कौसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज़ आलम, नाज परवीन, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा सालिया, शुएब खान, पोत्रा मुश्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। तो आइए साथियों सुनते हैं सोनू निगम की आवाज़ में लकी फिल्म से आप सभी की पसंद का ये गीत।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत गाता चल अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की, राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल

0: जुटने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बिना स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा

0: प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
2: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
3: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृहमंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकार ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया। देश

क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: put into bat, Delhi Capitals scored 142 runs, losing 8 wickets in the stipulated 20 overs. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Suvendu Adhikari to be the first BJP Chief Minister of West Bengal, swearing in tomorrow morning at Kolkata's Brigade Parade Ground. TVK Chief C. Joseph Vijay gets support from Congress, VCK, IUML and left parties to take oath as Tamil Nadu Chief Minister tomorrow. Supreme Court expresses concern over rising drug menace in Punjab, calls for fundamental shift in state's policy and nab major traffickers. India and Singapore agree to enhance information sharing in countering terrorism. And in archery, Simranjeet Kaur advances to semi-final of the women's recurve event at World Cup Stage 2 in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website, newsonair.gov.in and newsonair app. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी के वजीर आला होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मनुष्यात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मनुष्यात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज 2 में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। सीनियर बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के नए वजीर आला होंगे। रियासत में बीजेपी कानून साज पार्टी में आज कोलकाता में मुनाकिदा एक मीटिंग में उन्हें लीडर मुंतखब किया गया, जिसके साथ ही रियासत के पहले बीजेपी के वजीर आला बनने के लिए उनकी राह हमवार हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मीटिंग में जनाब अधिकारी के नाम की तजवीज रखी गई और चूंकि कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया, इसलिए उनके नाम को हतमी तौर पर मंजूर कर लिया गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: कल सुबह सरकार की हलफ बर्दारी की तकरीब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ मरकजी वजरा और बीजेपी के जेर इकतदार रियासतों से बहुत से वजीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। चूंकि ये तकरीब रविन्द्र जयंती के मौके पर मुनक्किद की जा रही है, इसलिए सकाफती परफॉर्मेंसेस भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: आज सुवेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी का कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। वो मगरबी बंगाल के अगले वजीर आला होंगे। अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवनीपुर में शिकस्त दी है। आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में कोलकाता में हुई एक मीटिंग में, जिसमें बीजेपी के सभी मुंतखब अराकीन असेंबली ने शिरकत की, अधिकारी को लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मगरबी बंगाल की आवाम ने तृणमूल कांग्रेस के जरिए पैदा करदा डर और खौफ के माहौल के खिलाफ अपना मैंडेट दिया है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हुकूमत तश्कील देने के बाद कमेटियां तश्कील दी जाएंगी जो आरजी कर और संदेश खली मामलात की छानबीन करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आजाती बदनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ भी छानबीन की जाएगी। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: तमिलनाडु में तमिजगा वेतरी कसगम टीवी के सी जोसेफ विजय को कल सुबह 11 बजे तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। इससे कबल आज टीवी के चीफ ने गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की और इत्तेहादी पार्टियों की हिमायत के दस्तावेजात पेश करके सरकार तश्कील देने का दावा पेश किया। 4 मई को असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद से ये उनकी गवर्नर के साथ तीसरी मीटिंग थी। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी।

0: है कि सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल ने टीवीके को अपनी हिमायत दी है। इसके साथ ही इत्तेहाद अब असेंबली में मतलूबा तादाद की हिमायत रखता है, जो अक्सरियत से ज्यादा है। टीवीके के 107 अरकान कानून साज असेंबली है, अरकान कानून साज असेंबली है कांग्रेस के 5, जबकि वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम ने आईयूएमएल के 2-2 अरकान कानून साज असेंबली हैं। टीवीके के सरबरा ने दावा किया कि अब उन्हें 120 अरकान कानून साज असेंबली की हिमायत हासिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज टीवीके पार्टी के लिए एक बहुत अहम दिन था, हालांकि वो अक्सरियत के साथ सरकार तश्कील देने के लिए मतलूबा तादाद हासिल करने में कामयाब रही। टीवीके की हिमायत करने वाले अफराद सड़कों के दोनों अतराफ बड़ी तादाद में ढोल ताशे बजाकर अपने मनपसंद लीडर को देखने के लिए मौजूद थे। फिल्म सरकार ब्लॉकबस्टर के हीरो हलफ लेने के बाद रियासत के वजीर आला बन जाएंगे। नामजद वजीर आला सी जोसेफ विजय लाल तिलक लगाए हुए थे, नीले रंग की जीन्स पहने हुए थे और उन्होंने बाएं हाथ पर लाल धागा बांधा हुआ था। उनका यह रूप इससे कबल के वजीर आला के मुकाबले में कतई मुख्तलिफ है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मनुष्यात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। रियासत के जरिए मनुष्यात की रोकथाम कैसे की जाए, इस सिलसिले में अदालत ने बुनियादी तब्दीली लाने पर जोर दिया और कहा कि इंसानी अमवात की सूरत हाल तश्वीशनाक है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने एक हालिया वाकये का हवाला दिया, जिसमें एक मां ने अपने सभी 5 बच्चों को मनुष्यात की लत का शिकार होने के सबब खो दिया। बेंच ने कहा कि मनुष्यात की लानत इस हद पर पहुंच गई है कि जहां मरकजी हुकूमत की मदाखलत जरूरी हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रियासत और मरकजी एजेंसियों से मनुष्यात की लानत के मुकम्मल खात्मे के वाहिद मकसद के साथ काम करने के लिए कहा। बेंच ने पंजाब पुलिस की यह कहते हुए नुक्ताचीनी की कि वो शोहरत के लिए छोटे जराइम के मुर्तकिब अफराद को पकड़ने पर तवज्जो मरकूज कर रही है, जबकि मनुष्यात की नाजायज तिजारत करने वाले बड़े मुजरिम आजाद घूम रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि मुल्क की बाख्तियारी और सलामती सरहदों की हिफाजत तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये मौशरे, माहौलियात और शहरियों की सलामती से भी वाबस्ता है। नई दिल्ली में भारतीय फौज के साथ पहाड़ी इलाकों में बचाव कार्रवाई से मुतालिक मुहिम तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के 10 साल मुकम्मल होने की एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देकर कहा कि एक बाख्तियार भारत वो है जहां सरहदें महफूज हों, समाजी बिरादरियां पुरएतमाद हों और आफात के वक्त हरेक की जिंदगी की हिफाजत यकीनी हो। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि हिमालय जैसे हसास और दूरदराज खित्तों में तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू महज बचाव कार्रवाई तक महदूद नहीं है, बल्कि मुल्क की मुसल्ला अफवाज मकामी बिरादरियों के भरोसे और कौमी पायदारी के लिए एक मजबूत सुतून की हैसियत रखता है।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है, आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है, आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
0: हुकूमत ने कहा है कि मुल्क भर में घरेलू एलपीजी की सप्लाई मुस्तहकम है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की जानिब से एलपीजी का जखीरा खत्म होने की कोई इत्तला नहीं है। नई दिल्ली में एक बैन वजारती मीटिंग में खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि हुकूमत की यह कोशिश है कि घरेलू सारिफिन को गैस की कोई किल्लत न पेश आए और मगरबी एशिया में बदलते हुए हालात के पेश नजर कीमतें मुस्तहकम रहें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों में 87 लाख गैस बुकिंग हुई, जिनमें से 57 लाख गैस सिलेंडर सारिफिन तक पहुंचा दिए गए। ये आकाशवाणी है। भारत और सिंगापुर ने अहम शराकतदारों के तौर पर दहशतगर्दी का मुकाबला करने में बाहमी तआवुन की अहमियत पर जोर दिया है। भारत और सिंगापुर के दरमियान दहशतगर्दी और जराइम से मुकाबला करने से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की 5वीं मीटिंग गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप ने सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह और हर शक्ल में दहशतगर्दी की मुकम्मल तौर पर और सख्ती के साथ मजम्मत की, नेज दहशतगर्दी के तहत सिफर बर्दाश्त के उसूल का एआदा किया। जेडब्ल्यूजी ने दहशतगर्दों और अक़वाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल 1267 पाबंदियों की कमेटी के जरिए करार दिए गए दहशतगर्दी के ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करने में तआवुन पर तबादला ख्याल किया। उसने सरहद पार के खतरों का बरवक्त और मौसर तौर पर जवाब देने के लिए कार्रवाई में इजाफा करने की गरज से मालूमात शेयरिंग को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत से भी इत्तेफाक किया। सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ की 75वीं साल

सालगिरह मनाने के लिए सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ के प्रभास पतन में इस महीने की 11 तारीख को सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए गुजरात के वजीर जीतूभाई वाघानी ने कहा कि वजीर आजम त्रिवेणी हेलीपैड से वीर हमीरजी गोहिल के मुजस्मे तक 1 किलोमीटर तवील मेगा रोड शो की क्यादत करेंगे। वजीर आजम मोदी सोमनाथ मंदिर में कुंभ अभिषेक, ध्वज पूजा और महापूजा भी करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इतवार के रोज नई दिल्ली में मुमकिना सैलाब और गर्मी की लहर की सूरत हाल से निमटने के लिए मुल्क की तैयारी से मुतालिक एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। ये आला सतही जायजा फाल हुक्मरानी, शहरियों पर मरकूज कुदरती आफात का बंदोबस्त और कुदरती आफात से मुकाबला करने वाले भारत की तामीर के तई हुकूमत के मुसम्मम अहद की अक्कासी करता है। मीटिंग के दौरान जनाब शाह मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की तैयारी, पेश की वार्निंग निजाम, वसाइल की फरोख और बैन एजेंसी तालमेल का जायजा लेंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई जान जाया ना हो और इमलाक को कम से कम नुकसान पहुंचे। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राममोहन नायडू ने इत्तला दी है कि एयर इंडिया की परवाज AL-171 के अलमनाक हादसे की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट आखिरी मराहिल में है और तवक्को है कि उसे 1 माह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। आज गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एयरक्राफ्ट सीजनिंग और फाइनेंसिंग समिट के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि तैयारा हादसे की तहकीकाती एजेंसी मुकम्मल और शफाफ तहकीकात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी के जरिए छानबीन किए जा रहे मामलों से मुतालिक 10 से 15 जेरे इल्तवा मुकदमात को निपटाने के लिए कम से कम एक खसूसी अदालत कायम की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि ये खसूसी अदालतें 1 माह के अंदर कायम की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अस्खुद नोटिस लेते हुए एक मुकदमे की समाअत के दौरान हिदायत जारी की कि इन खसूसी अदालतों को कोई और केस नहीं सौंपा जाएगा और मुकदमे की कार्रवाई यौमिया बुनियाद पर की जाएगी। मरकजी वजारत सेहत ने हंटा वायरस के मामलों के कम आलमी खतरे के जायजे के पेश नजर एहतियाती निगरानी के इकदाम फाल कर दिए हैं। जराए के मुताबिक वजारत सेहत क्रूज शिप MV होंडियस पर हंटा वायरस इन्फेक्शन के रिपोर्ट शुदा मामलों से मुतालिक बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। ये काम अमराज की रोकथाम से मुतालिक कौमी मरकजी NCDC इंटीग्रेटेड डिजीजेस सर्विलांस प्रोग्राम, सेहत की आलमी तंजीम WHO और सेहत के दीगर बैन अलाक्वामी सेहत हुकाम के ताउन से किया जा रहा है। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में जमीनी वसाइल के महकमे की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। डिजिटल इंडिया जमीनों के रिकॉर्ड की जदीदकारी के प्रोग्राम 3.0 की सूरत हाल का जायजा लेते हुए जनाब चौहान ने कहा कि जदीदकारी की काविशों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जमीन से मुतालिक खिदमात को शफाफ, मौसर और रुकावटों से पाक बनाकर शहरियों के साथ साथ महसूलाती हुकाम के लिए सहूलत का बाइस हों। उन्होंने वाजे किया कि मुजवजा अराजी के पैमाइश के इकदाम किता अराजी की फौरी और दुरुस्त कदर की तशखीस में सहूलत फराहम करेंगे जिससे बैंकों को कर्जों की मंजूरी के अवामिल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को महाराष्ट्र के झोंपड़पट्टी वाले इलाकों की बेहतरी, सफाई और बाजाबादकारी के एक्ट 1971 से मुतालिक कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए 4 हफ्ते के अंदर एक आला सतह की माहिरीन की कमेटी तश्कील देने की हिदायत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कानून की जमीनी मौसरियत का जायजा लेने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल आवरी करते हुए हाई कोर्ट की जानिब से इस सिलसिले में कार्रवाई के दौरान यह फैसला किया गया। जस्टिस GS कुलकर्णी और अद्वैत सेचना पर मुश्तमिल बेंच ने मुंबई में झोपड़पट्टी की बहाली और शहरी मनसूबाबंदी की इंतहाई नाकिस पेशरफ्त पर तनकीद की और कहा कि यह कानून 5 दहाइयों से ज्यादा नाफिजुल अमल है। खवातीन के कौमी कमीशन NCW ने संगीन जंसी जराइम के मामलों में तेज रफ्तार अदालती कार्रवाई, सख्त निगरानी और पैरोल पर पाबंदी की जरूरत पर जोर दिया है। कमीशन ने अपने एक बयान में खवातीन और बच्चों के खिलाफ संगीन जराइम में मुलव्वस मुलजमीन के लिए मौजूदा पैरोल फ्रेमवर्क पर गहरी तशवीश का इजहार किया। भारत की सिमरनजीत कौर आज शंघाई में खेले गए तीरंदाजी आलमी कप स्टेज 2 में खवातीन के रिकर्व इंफरादी मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत कौर ने क्वार्टर फाइनल में अपनी चीनी ताइपाई हरीफ फेंग यू जू को सीधे सेटों में 0 के मुकाबले 6-0 से शिकस्त देकर अपने पहले वर्ल्ड कप तमगे से सिर्फ 1 जीत की दूरी पर पहुंच गई हैं।

0: अब सेमीफाइनल में सिमरनजीत कौर का मुकाबला आलमी नंबर एक जनूबी कोरिया की किम जियोन से होगा। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सुवेंद्र अधिकारी मगरब बंगाल के पहले बीजेपी के वजीर आला होंगे। हलफ बरदारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज टू में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष पर विशेष कार्यक्रम रूपक। आलेख है डॉक्टर राहुल अवस्थी का, प्रस्तुति है असीम सक्सेना की।

ठिठुरता है बदन, सर पर चिलकती धूप जलती है, झमाझम में रपटते रास्ते पर साथ चलती है। भराभर हो कशाकश हो मगर ये बढ़ निकलती है, दबा हो बोझ से माहौल ये तब भी उछलती है।

बहुत मुश्किल है इसके बारे में जो कुछ है कह पाना, बहुत मुश्किल है कह पाना तो वो विस्तार सह पाना। बहुत मुश्किल है आसानी से उसका सार गह पाना, बहुत मुश्किल है श्रोताओं का इससे दूर रह पाना।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, हमारे प्रसारण न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं और कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का लाइव प्रीमियर आकाशवाणी रामपुर के यूट्यूब चैनल एआईआर रामपुर पर भी किया जा रहा है।
1: मेरी नजरों में शजरा यूं ना कुछ भी खास मेरा है, मगर जो दिल कहा करता है वो एहसास मेरा है। नयन में आस मेरी, कान पर विश्वास मेरा है। हजारों साल से मिलता रहा इतिहास मेरा है।

अंकुरा रही हूँ तो कहीं घन चाह छाई हूँ, कहीं चाहत में लाई हूँ, कहीं राहत में लाई हूँ। हजारों जहन में हूँ, तन में जीवन में समाई हूँ, मैं अपने आप चलकर ही किसी के पास

समय पढ़ती हूँ, तिथि पढ़ती हूँ, मैं तारीख पढ़ती हूँ, किसी को सीख देती हूँ, किसी की सीख पढ़ती हूँ, मैं सबसे अंधकी होकर भी सब में दीख पढ़ती हूँ, गलत दिखता है तो घुटते हलक से चीख पढ़ती हूँ।

कि मैं कहाँ एहसान करती हूँ, चरित्रों और आचरणों का शुभ निर्माण करती हूँ, जहाँ मैं कौन क्या कैसा कहाँ पहचान करती हूँ।

बसी रहती है जो मन में वो पावन पीर भी मैं हूँ, निहित रहता है नैनों में वो निर्मल नीर भी मैं हूँ, तनावों में दबावों में धरा सा धीर भी मैं हूँ, मगर हर हाल में चैतन्य की शमशीर भी मैं हूँ।

चिकित्सा स्वास्थ्य से वंचित को पुरसा हाल भी मैं हूँ, दुखी दीनों का दलितों का उभरता भाल भी मैं हूँ, समय के साथ नारी के कदम की ताल भी मैं हूँ, निरर्थक सूचनाओं के लिए पर ज्वाल भी मैं हूँ।

मैं जितना पिसती हूँ उससे भी ज्यादा छानी जाती हूँ। मैं मनमानी नहीं करती हूँ सो मैं मानी जाती हूँ। मैं दुनिया भर में सच्चाई के कारण जानी जाती हूँ। मैं दुनिया भर में अधिकृत तौर पर पहचानी जाती हूँ।

सिनेमा ने मेरे द्वारा ही जनमन को रिझाया है, मेरे द्वारा कलाकारों ने कितनों को लुभाया है, हजारों कारों बेकारों पे मेरा रंग छाया है। इधर FM नया अवतार।

जो चारण जागरण का वो सहज ही खो नहीं सकता, कसम खाए हंसाने की वो हरगिज रो नहीं सकता, मेरा अस्तित्व बढ़ती तीरगी में खो नहीं सकता, है जब तक साथ में श्रोता मुझे कुछ हो नहीं सकता।

नया है दौर, अब इसमें नया विस्तार मुझको दें। नए इस दौर दौरा में नया आकार मुझको दें। मेरे परिवार वाले सब परस्पर प्यार मुझको दें। सहज संवेदनाओं का सुघर संसार मुझको दें।

कसम खाओ कि अब इस देश में जयचंद ना होगा, किसी जाफर का भारत में सफल छल छंद ना होगा, मेरी सामर्थ्य का दीपक कभी भी मंद ना होगा, मेरा स्वर बंद ना होगा, मेरा स्वर बंद ना होगा।

जरा सा गुनगुनाकर ताप सब संताप हरती हूँ, विविधता भारती की आरती में आब ढरती हूँ। मेरा मजहब मनुष्यता है, दनुजता से न डरती हूँ। सभी पर प्रीति है मेरी, सभी से प्यार करती हूँ।

चमन की बात करती हूँ, अमन की बात करती हूँ, सृजन की बात करती हूँ, लगन की बात करती हूँ। मैं धड़कन हूँ वतन की तो वतन की बात करती हूँ, मैं जन की बात करती हूँ, मैं मन की बात करती हूँ।

चेतन हूँ अचेतन हूँ, न मैं निष्प्राण प्राणी हूँ। मैं सीमित हूँ असीमित हूँ, निमाणी हूँ प्रमाणी हूँ। मैं कल्याणी हूँ सज्जन को, मैं दुर्जन को कृपाणी हूँ। मुझे पहचान लो श्रोताओं, मैं आकाशवाणी हूँ। मैं आकाशवाणी हूँ।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पर विशेष कार्यक्रम रूपक। आलेख था डॉक्टर राहुल अवस्थी का, प्रस्तुति थी असीम सक्सेना की।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी

0: कूल वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं नात कव्वाली। कलाकार हैं हसनैन नियाजी, साथी हैं तस्लीमुद्दीन, तैयब नियाजी और यूसुफ नियाजी और फहीम नियाजी।

अभी आप सुन रहे थे ये नात कव्वाली कार्यक्रम। कलाकार थे हसनैन नियाजी, साथी थे तस्लीमुद्दीन, तैयब नियाजी, यूसुफ नियाजी और फहीम नियाजी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रंग। कलाकार हैं अवधेश कुमार गोस्वामी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग रंग, कलाकार थे अवधेश कुमार गोस्वामी।
1: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
2: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।
0: हम आकाश

0: बहुत आनंद था। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Senior BJP leader Shubhendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. Addressing media, Union Home Minister Amit Shah said, Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
3: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
4: इलेक्शन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड जस्ट अ फ्यू डेज अगो। अराउंड 8 प्रपोजल्स एंड सपोर्टिंग नॉमिनेशंस वर रिसीव्ड एंड ऑल ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ द सेम नेम। सफिशिएंट टाइम वॉज ऑल्सो गिवन फॉर एनी अदर नॉमिनेशन बट नो सेकेंड नेम वॉज प्रपोज्ड। देयरफॉर एज द सेंट्रल ऑब्जर्वर आई डिक्लेयर शुभेंदु अधिकारी एज द इलेक्टेड लीडर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव पार्टी।
3: विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
2: Mr. Shah expressed gratitude to the people for giving a strong verdict to the BJP despite numerous instances of violence and brutality.

आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की इस सभा के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। कल सवेरे 5:55 पर हमारी पहली सभा के कार्यक्रम मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ आरंभ होंगे।